107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की पंचमी तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। तदनुसार 26 जून 2026 सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

भक्ति एक ऐसा भाव जो मन को स्थिरता, हृदय को कोमलता और जीवन को सकारात्मक दृष्टि प्रदान करता है। जब शब्द श्रद्धा से भर जाते हैं और स्वर समर्पण से, तब संगीत केवल मनोरंजन नहीं रह जाता, वो आत्मा की भाषा बन जाता है।

और इसी भाषा इसी भाव से भरा कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर मैं सुस्मित आ चुका हूं आपके बीच 100.7 FM रेनबो पर। तो शुभारंभ भगवान श्री गणेश की आराधना से।

भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं, विश्वास और सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। श्रद्धा का दीपक जब मन में जलता है तो निराशा का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है।

भक्ति केवल मंदिरों, तीर्थों या प्रार्थना स्थलों तक सीमित नहीं है। ये हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में और दूसरों के प्रति हमारे प्रेम और करुणा में भी दिखाई देती है। जब मन निर्मल होता है तो साधारण से साधारण क्षण भी आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाता है।

हमारे ऋषि मुनियों ने मन को सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना है। जब यही मन अच्छे विचारों, सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा से भर जाता है तो जीवन का प्रत्येक कार्य सरल और सार्थक लगने लगता है। भक्ति का वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि हम अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान सकें।

तलाश बाहर करते हैं, वो हमारे भीतर ही मौजूद होता है। भक्ति हमें स्वयं से मिलने का अवसर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि आत्मविश्वास, धैर्य और प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।

भक्ति का सच्चा आनंद तब मिलता है जब मन बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर भीतर की शांति को महसूस करने लगे। श्रद्धा और विश्वास के साथ बिताया गया हर क्षण जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह भर देता है। जब मन प्रसन्न हो, विचार निर्मल हो और हृदय कृतज्ञता से भरा हो, तब हर दिन एक उत्सव जैसा प्रतीत होता है।

जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन विश्वास का साथ बना रहे तो हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है।

जीवन की भागदौड़ के बीच अपने लिए कुछ ऐसे पल अवश्य निकालिए जो मन को शांति दें, विचारों को सकारात्मकता दें और हृदय को संतोष दें। भक्ति का यही संदेश है, स्वयं से जुड़ना, प्रेम बांटना और जीवन को सार्थक बनाना। और अब ईश्वर से प्रार्थना कि वो अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। इसी कामना के साथ अब अपने दोस्त सुस्मित को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से इस अंतिम भक्ति में प्रस्तुति के साथ। और आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं और अब सुनिए FM समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में 8 नामजद व अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पहली FIR दर्ज कर ली गई है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर CM योगी द्वारा गठित SIT के प्रारंभिक प्रतिवेदन में कठोर संस्तुतियां की गई हैं। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई इस FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद गोरखपुर में नकहा रेलवे के स्टेशन के पास अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मित परिषदीय विद्यालयों के 1,00,000 छात्र छात्राओं को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता वाले केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने निर्मित किचन का अवलोकन तथा विद्यार्थियों को भोजन का वितरण किया। उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जनपद गोरखपुर में 1,00,000 बच्चे मिड डे मील में पौष्टिक आहार की सुविधा का लाभ प्राप्त करके सुपोषण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में कहा कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम, बाबा बैजोनाथ धाम सहित क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण केवल आस्था का सम्मान नहीं बल्कि उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने इन धरोहरों की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाबा तामेश्वरनाथ धाम को नई पहचान देने के लिए भव्य कॉरिडोर निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है। कॉरिडोर बनने से क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा और इसे काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम तथा मां विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। युवा पर्यटन क्लब के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। युवा पर्यटन क्लब का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पर्यटन राजदूतों के रूप में विकसित करना है। इन पर्यटन क्लबों की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब तक 75 जनपदों में 1500 से अधिक युवा पर्यटन क्लब में 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा गया है। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री

जयवीर सिंह ने दी। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कल अपने महोबा दौरे के दूसरे दिन जिले के अधिकारियों के साथ निराश्रित गोवंश संरक्षण, भूसा भंडारण, गोचर भूमि पर हरा चारा उत्पादन तथा पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए सभी गौ आश्रय स्थलों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई जगाती हुई जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे

दोस्तों बांध लीजिए अपने जज्बातों की पोटली और तैयार हो जाइए मेरे साथ एक संगीतमय यात्रा पर चलने के लिए, क्योंकि मैं सुस्मित आ चुका हूं प्रोग्राम सदाबहार गीत लेकर। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर की शुरुआत एक प्यार से गीत के साथ आपके नाम।

ये झूमती गाती हवा जो धीरे से कानों में कुछ कहती हुई लगती है, ऐसा लगता है जैसे आवाज दे रही हो उनको जो कब से मन में समाए हैं। ऐसे में मन के उत्सव में सराबोर एक गीत भी कर रहा है कुछ ऐसी ही बात। तो आइए सुनते हैं मिलकर ये प्यारा सा गीत।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कभी कभी बिना देखे कुछ चेहरे हमें रोज दिखाई देते हैं, बिना पुकारे कुछ नाम बार बार सुनाई देते हैं, और कुछ सवाल दिल के किसी कोने में धीरे से सरसराते हैं कि हर ख्वाब में आने वाले ये चेहरे क्या हकीकत में भी कहीं हैं। तो कुछ ऐसे ही सवालों की बात करता ये गीत आ रहा है आप तक, आप भी एंजॉय कीजिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दिल से दिल तक जाने वाला रास्ता कभी कभी शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसासों से तय होता है। और जब उन एहसासों में चुपचाप कोई शिकवा उतर आए तो इंसान बस इतना ही कह पाता है, हमारा इरादा तो कुछ भी ना था।

दोस्तों ऐसे ही खूबसूरत गीतों के साथ ये सफर जारी रहेगा, आगे भी आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर मैं सुस्मित हूँ आपके साथ। और समय हुआ है 7:37, आइए जुड़ते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ।

कुछ रिश्ते न समाज की इजाजत से, न वक्त की मोहर से और ना ही इस दुनिया के दस्तूर से बनते हैं। उनके लिए तो बस दिल की मंजूरी ही काफी होती है। और जब दो दिल एक दूजे को चुन लें तो फिर जमाना क्या, खुदा भी रुक जाए तो मोहब्बत ठहरती नहीं।

कभी किसी की मौजूदगी इतनी करीब होती है कि कुछ कहे बिना भी सब कुछ कहा सा लगता है। दिल की धड़कनें तेज चलने लगती हैं और कदम जैसे खुद ब खुद किसी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो चलिए उस पल में लौटते हैं जहां दो दिल पहली बार करीब आए थे।

दोस्तों, मन तो नहीं चाहता कि हम दूर हों, लेकिन अब समय का इशारा ये कह रहा है कि हमें लेनी होगी यहाँ पर इस प्रोग्राम से अनुमति। जी हाँ, तो आपसे इस वादे के साथ कि मैं सुस्मित आपसे मिलूंगा समाचारों के बाद गुड मॉर्निंग लखनऊ में। तो बस आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर आ रहा है ये ट्रैक।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव,

करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत

0: करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉइड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा।

0: दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत।
1: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
2: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
1: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
2: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
1: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
0: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
1: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
2: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: ताजा तरीन दिन में स्वागत है आप सबका, आपके अपने गुड मॉर्निंग लखनऊ में। जी हां, आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो लेकर बिल्कुल तैयार हूं मैं, आपकी आरजे होस्टिंग दोस्त रोली शुक्ला, और मेरे साथ है,
4: मैं हूं सुस्मित, और मैं तो सुबह से लगातार रोली मैं ये साथ निभा रहा हूँ अपने साथियों के साथ और आपके साथ, अब ये साथ रहेगा पूरे 10 बजे तक।
3: हाँ बिल्कुल, अब मैं भी आ चुकी हूँ अपने दोस्तों का साथ निभाने, तो हम दोनों ही शो में आपके साथ आ चुके हैं, तो आपसे रोज की तरह करेंगे ढेर सारी बातें, और हमारे पास हमारे पिटारे में है बहुत सारी जानकारियां भी, और इसके साथ साथ बड़े अच्छे अच्छे गाने भी।
4: बिल्कुल, तो ये सब कुछ रहने वाला है पूरे 10 बजे तक आपके साथ, और इसका माध्यम होगा गुड मॉर्निंग लखनऊ, तो आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ।
3: हाँ, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, यूं ही जुड़े रहिए सुबह की ये प्यारी सी जो चाय की प्याली आपके हाथ में है, इसकी चुस्की लेते हुए ये गाना एंजॉय करते हैं सुस्मित, और इसके बाद वापस आते हैं।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके. और ये चोरी चोरी चुपके चुपके करके ये जो घड़ी है ना, ये आगे बढ़ती जा रही है. क्यों सुस्मित?
1: और ये कभी नहीं रुकती.
0: और ये बढ़ती हुई घड़ी इशारा कर रही है किस ओर?
1: जी, ये कर रही है इशारा

0: कि एक जरूरी बात जो हम रोजाना पहुंचाते हैं आप तक इस मंच से, वो बात आप तक पहुंचा दी जाए।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र, मॉर्निंग मंत्र। तो सुस्मित, आज का मॉर्निंग मंत्र क्या कहता
0: है? जी, मॉर्निंग मंत्र का इशारा, और मॉर्निंग मंत्र एक ऐसी बात कह रहा है जो कहीं ना कहीं आप सबसे जुड़ी हुई है। आप सबसे कह रहा हूँ रोली, आप सबसे।
1: हाँ बिल्कुल।
0: जितनी भी महिलाएं, स्पेशली उनसे, महिलाओं को गहने का बहुत शौक होता है, ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, और कोई ज्वेलरी मिल जाए।
1: ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैंने तो पुरुषों को भी देखा है ना, ज्वेलरी का बहुत शौक होता है।
0: लेकिन मोस्टली महिलाओं के लिए ये बात
1: नहीं, अब तो पुरुष भी इस लाइन में आगे लगने के मतलब एकदम आगे लगने की तैयारी में है।
0: ओके, चलिए उनको भी शामिल कर लेते हैं।
1: हाँ, ये जो पांच उंगलियां हैं, उन पांच उंगलियों में रिंग्स होती है।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए पकड़ लिया,
1: देखिए पकड़ लिया। और कहते हैं कि जब सही समय पर सही चीज एकदम पिक कर ली जाए और उसे पहचान लिया जाए, तो वो जो स्मार्टनेस होती है ना, वो गजब ही होती है। फिलहाल आज का जो मॉर्निंग मंत्र है, वो हमसे ये कहता है कि आपकी मुस्कान, हाँ हाँ आपकी, जी हाँ बिल्कुल आपकी ही मुस्कान, आपकी मुस्कान आपका सबसे बड़ा गहना है, इसे पहनकर ही अपने दिन की शुरुआत करें।
0: तो साहब, इधर तो ये मुस्कान आ चुकी है इन बातों को करते हुए, आपके चेहरे पर भी ये जो प्यारी सी मुस्कान आई है हमारी बात सुन के, बस यही मुस्कान चाहिए, और इसी मुस्कान को अपने जीवन में बनाए रखिए, अपने होंठों पे सजाए रखिए, निश्चित जानिए बड़ा मजा आएगा।
1: और यूं ही हंसते मुस्कुराते सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिसमें ये सिलसिला शुरू हो चुका है।
0: बिल्कुल एंजॉय कीजिए।

0: मुद्दा आज का।
1: और रोज की तरह आज गुड मॉर्निंग लखनऊ के इस मंच पर आज भी है हमारे पास आपके लिए एक मुद्दा,
0: एक ऐसी बात जिससे आप सीधे सीधे जुड़ते हैं और अपनी बात, अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए हम भी पहुंचा देते हैं आप तक वो बात जिससे आप जुड़ सकते हैं। और वो बात क्या है
1: भाई, आज भी जो कहते हैं ना कि हर दिन अपने आप में स्पेशल होता है सुषमित,
0: बिल्कुल,
1: और आज का भी दिन अपने आप में कई सारी बातों को, कई सारी जानकारियों को और कई सारे अहम मुद्दों को अपने अंदर समेटे हुए
0: है। लेकिन उसमें से एक बात ऐसी है जो बहुत जरूरी है और उसके लिए हमारा जागरूक होना, हमारा सजग होना, हमारा अलर्ट होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो आज के इस विशेष दिन पर हमने सोचा कि क्यों ना आज के विशेष दिन के अनुसार ही आज का मुद्दा भी लिया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस है और इसके चलते हमने सोचा है कि आपसे पूछा जाए भाई, आपके अनुसार युवाओं को नशे से दूर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, परिवार की, शिक्षा की, मित्रों की या स्वयं व्यक्ति की जागरूकता की।
0: बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा युवा साथी जो है वो इस नशे की गिरफ्त में है और ऐसे में हम कहते हैं, हम बहुत कुछ सजेशन दे देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो भूमिका किसकी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, कौन इसमें ज़्यादा इफेक्टिव रूप से काम कर सकता है, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमने मुद्दा आप तक पहुंचा दिया है, हमारा विषय आप तक पहुंच चुका है, अब आपकी बातों का हमें इंतजार है। आप अपनी बातें हम तक पहुंचाइए और जुड़ जाइए 100.7 FM रेनबो से। और फिलहाल आपको करना होगा हमें मेल, तो नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com। इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं इस मंच से।
1: बिल्कुल, तो हम कर रहे हैं आपकी मेल्स का इंतजार और फिलहाल काफी मेल्स हमारे हम तक पहुंच गई हैं उसमें, जिसमें कि पुष्पांजलि और सदाबहार गीतों के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं। फिलहाल हम मेल्स को और ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, तब तक आप सुनिए ये ट्रैक।

0: वाह वाह, कुछ गाने ऐसे होते हैं सुस्मित की बस उन्हें सुनकर खुद भी गुनगुनाने का मन करने लगता है ना।
1: बिल्कुल, और मजा आ जाता है ऐसे गीतों को सुनकर के।
0: और स्पेशली अगर आपने रेनबो ट्यूनिंग करके रखा हुआ है तो आपको सात रंगों जैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के गाने आपको सुनाई देते हैं, तो आप गुनगुना भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।
1: और साथ ही साथ ये जो दिलचस्प ये सफर है गीतों का, ये लगातार चलता रहता है, उसमें ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिलते हैं जिन्हें बड़ी चाहत से हम सुनना चाहते हैं।
0: तो आपको भी लगता है कि आप गुनगुना सकते हैं तो थोड़ा सा ट्राई करिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सिंगर बन सकते हैं तो यही आज का दिन और यही है ये पल जिसमें कि आप इसे शुरू कर सकते हैं। हाँ,
1: क्या
0: आप
1: बात?
0: कुछ गुनगुनाने वाले तो नहीं है?
1: नहीं, मैं तो मुझे लग रहा था आप कुछ गुनगुनाने वाले
0: हैं। नहीं, आपको देख के लगा कि आप गुनगुनाने वाले हैं?
1: मैं तो बस गुनगुना ही रहा हूँ, अभी आप जैसे अगला गाना प्ले करेंगे मैं तुरंत फिर गुनगुनाने लगा।
0: हाँ, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से इनका गुनगुनाना हमने बंद कराया है क्योंकि हमने कहा अब बोलने का समय है तो गुनगुनाना अभी स्टॉप करते हैं। गाना इतना अच्छा था। अच्छा, अब आगे हम क्या लेने वाले अपने
1: कुछ जरूरी बातें जो हमारे साथियों के लिए बड़ी काम की साबित हो सकती हैं, बड़ी जरूरी हो सकती हैं, तो उन बातों की तरफ इस वक्त ले चलते हैं।
0: अच्छा, आपने काम की बात कही तो मुझे लगा कि चलिए सबसे पहले ये बात शेयर करते हैं। कौन सी बात?
1: क्या बात
0: भाई? 1 जुलाई को डाक अदालत आयोजित होगी, कैसे, इसके बारे में क्या जानकारी है? लखनऊ मंडल के उपभोक्ताओं की डाक और पेंशन संबंधी शिकायतों को तुरंत निपटाने के लिए 1 जुलाई को सुबह 11 बजे न्यू हैदराबाद स्थित प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालय में डाक अदालत का आयोजन किया।

0: जाएगा।
1: ओके, तो ये काम की बात थी और इसके साथ ही साथ एक और काम की बात, और एक काम की बात के साथ साथ बड़े खुशी की बात भी साबित हो सकती है,
0: वो क्या?
1: आपके लिए भी रोली हो सकती है।
0: अच्छा,
1: अगर कहीं घूमने फिरने का प्लान हो और अभी तक आप नहीं जा पाई, मुझे पता है।
0: हाँ, ये तो है,
1: है ना? तो अगर आप कहीं घूमना फिरना चाहती हैं तो एक बड़ी अच्छी एक ट्रिप प्लान कर सकती हैं।
0: अच्छा।
1: और इसमें मदद करेगा IRCTC, क्योंकि ये जो है लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने 3 ज्योतिर्लिंग के साथ शिरडी दर्शन का एक पैकेज शुरू किया है, और 16 से 21 जुलाई तक चलने वाला ये जो 5 रात 6 दिन का टूर है, ये नासिक, शिरडी, संभाजीनगर का कवर कराएगा, और इन जगहों पर आप जा सकेंगे, वहाँ एंजॉय कर सकेंगे। और इस पैकेज में फ्लाइट, होटल, भोजन और घूमने की सुविधा शामिल है, तो अगर ऐसा कुछ प्लान है तो आप कर सकती हैं इसको।
0: अच्छा, ट्रेन की बात से एक और ट्रेन वाली बात सामने आ रही है, क्या है कि बंगाल के खड़गपुर जंक्शन के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन 27 जून को आलमनगर और उतरेठिया से होगा।
1: यानी ये जो ट्रेन है ये एक स्पेशल ट्रेन है जो लखनऊ के आलमनगर से और उतरेठिया से ये ट्रेन जाएगी, तो ये एक ट्रेन है, अगर इस रूट पर आप जाना चाहते हैं, बंगाल की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बढ़िया साधन हो सकता है।
0: और इसके अलावा एक और अच्छी सी बात है आपके लिए, और वो ये है कि IIT कानपुर ने सितंबर 2026 सत्र के ऑनलाइन PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जो अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो अब 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है।
1: और इसके साथ ही साथ एक बढ़िया बात ये कि एक रिजल्ट आ चुका है, और ये रिजल्ट जारी किया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों पर भर्ती के लिए जो इसका अंतिम रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया है, तो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जहां ये रिजल्ट आया है वहीं 3 भर्ती परीक्षाएं हैं जो कि आयोग की तरफ से होनी है, और इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो बस इसका रास्ता एक ही है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से ये डिटेल चेक कर लीजिए और आगे की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए।
0: तो ये तो थी कुछ जानकारियां जो आप तक पहुंचाई हमने, और भी बहुत बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन क्यों उससे पहले ये ट्रैक सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल,

0: बर्थडे,
1: क्या बात है, क्या बात है। और आपका ये खूबसूरत अंदाज हमारे साथियों को बहुत पसंद आता है।
0: क्या बात है, सच बताइए। सुबह सुबह मैं खुश हो गई।
1: हाँ हाँ हाँ। और हमारे साथी भी खुश हो गए जिनका बर्थडे है आज, वो तो बहुत ही खुश हो गए क्योंकि आपने उनको गा के इतने प्यार से, इतने मस्ती भरे अंदाज में उनको विश किया।
0: और ऐसे ही हम सबके दोस्त भी होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, स्पेशली ऐसे डेज का इंतजार करते हैं जब की बर्थडे हो या कुछ अच्छा सा ओकेजन हो और जिस पर उन्हें खूब मस्ती, खूब धमाल और खूब सारा डांस और साथ ही साथ गाने का मौका मिले और साथ साथ पार्टी मांगने का मौका मिले।
1: बिल्कुल साहब, दिल की खुशी का मामला है तो इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
0: तो ये तो बर्थडे की बात रही और साथ ही साथ बर्थडे किनके साथ शेयर करते हैं ये तो हम आपसे शेयर करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा आपसे ये भी कहते हैं कि अगर आज है आपकी मैरिज एनिवर्सरी यानी वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आज का ये जो जीवन बंधन आपका हुआ था वो ऐसे ही हर दिन एक नई मंजिल छूता जाए।
1: जी हाँ, धीरे धीरे ये जो रिश्ता है वो और मजबूत होता जाए, इसमें और खुशियां घुलती जाएं और आप दोनों ही खूब मजे में अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए।
0: तो दोस्तों, आज किनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं, अब बारी है इसकी।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहला नाम इसमें आपको बताते हैं, आज जयंती है भारत के वीर सपूत रामा राघोबा राणे जी की। 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित राघोबा राणे बॉम्बे इंजीनियर्स से जुड़े हुए थे और इन्हें राजौरी को फिर से फतेह करने के संबंध में याद किया जाता है।
0: और आपको बता दें कि जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पंथ के प्रसिद्ध मुनि तरुण सागर मुनि जी की आज जयंती है और उनके कड़वे प्रवचन समाज सुधार और नैतिकता के लिए बेहद प्रसिद्ध थे।
1: इसके अलावा भारतीय फील्ड हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का आज बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी की प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाने में जिन खिलाड़ियों ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई उनमें से एक नाम मनप्रीत सिंह का भी है।
0: और साथ ही आज जयंती है शास्त्रीय गायिका और नर्तकी गौहर जानकी, वे दक्षिण एशिया की पहली गायिका थी जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे। उनके गानों की बदौलत ही भारत में ग्रामोफोन को लोकप्रियता हासिल हुई।
1: क्या बात है। और इसके साथ ही साथ क्रिकेट की फील्ड से भी एक नाम यहाँ पर जुड़ता है, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे भी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं।
0: इसके अलावा 2012 में फिल्म इश्क ज़ादे से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर का भी आज जन्मदिन है। अर्जुन कपूर ने औरंगजेब, गुंडे, टू स्टेट्स, फाइंडिंग फैनी, तेवर की एंड का हाफ गर्लफ्रेंड और मुबारका जैसी कई सारी फिल्में की हैं जिनमें आपने उन्हें देखा है और उनकी जो स्माइल है स्पेशली वो बहुत ही प्यारी है।
1: तो चलिए, उनकी स्माइल की बात चली है, अर्जुन कपूर की बात चली है, तो यहाँ पर एक ट्रैक टू स्टेट्स से, उन्हीं की मूवी से एंजॉय करते हैं और मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: और दोस्तों 8:53 गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी है। यहाँ पर बात कुछ और भी मैं करना चाहता हूँ, और मैं क्यों, हम दोनों ही लोग करना चाहते हैं, और एक ऐसे नाम की तरफ आपको ले चलना चाहते हैं जिनका आज के दिन से जुड़ाव है, क्योंकि उनकी है आज पुण्यतिथि।
1: जी हाँ दोस्ताना, अग्निपथ, गुमराह और डुप्लीकेट जैसी सफल फिल्मों के निर्माता यश जौहर की आज पुण्यतिथि है।
0: 6 सितंबर 1929 को लाहौर में जन्मे जौहर साहब ने

0: सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट्स से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और वो अभिनेता देव आनंद की फिल्म गाइड के निर्माण में भी सहायक रहे।
1: 1976 में यश ने अपनी महत्वाकांक्षा को नया आयाम दिया और धर्मा प्रोडक्शंस की स्थापना की
0: और उसके बाद तो जो कमाल है वो आप लगातार देख रहे हैं। यश जौहर साहब ने फिर इसके बाद जब अपना ये प्रोडक्शन एस्टेब्लिश किया तो उसके साथ कुछ मूवीज आई और उसके बाद उनकी जो ये असली विरासत थी तब चमकी जब करण जौहर यानी उनके बेटे ने धर्मा प्रोडक्शन की कमान संभाली
1: और करण

0: किया, तो उसके साथ कुछ मूवीज आई और उसके बाद उनकी जो ये असली विरासत थी तब चमकी जब करण जौहर यानी उनके बेटे ने धर्मा प्रोडक्शन की कमान संभाली।
1: और करण की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है ब्लॉकबस्टर रही, जो कि 1998 में आई, जिसमें शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी ने लीड रोल किया। यश ने अपने बेटे के साथ कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी फिल्मों में साथ काम किया।
0: कल होना हो की बात आपने की रोली, यश की ये आखिरी फिल्म थी जिसने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी और ये मूवी लोग बहुत पसंद करते थे तब भी अब भी। और बड़ा दिलचस्प इस मूवी को देखें तो गीत संगीत पूरा, इसकी जो स्क्रिप्ट थी, जो टॉपिक था वो बहुत पसंद किया था लोगों ने। बहरहाल 26 जून यानी आज ही के दिन सन 2004 में यश जौहर का मुंबई में कैंसर और सीने के संक्रमण के चलते निधन हो गया। तो वो बेशक आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी फिल्में हमें हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी।
1: तो हमारे तरफ से उन्हें नमन और श्रद्धांजलि।
0: और इसके साथ ही साथ 8:55 हुए हैं, थोड़ी देर में होंगे समाचार और समाचार के बाद भी गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे यानी रोली और सुस्मित के साथ।

0: नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गड़बड़ी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने 8 आरोपियों पर नामजद और कुछ अन्य अज्ञात पर FIR दर्ज कर ली है। लखनऊ से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने आज इस खबर को अपनी हेडलाइन बनाया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर पर लिखा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 पर FIR। दैनिक जागरण इस पर लिखता है, चढ़ावा चोरी में 20 दिन बाद FIR, 8 गिरफ्तार। नवभारत टाइम्स इस पर लिखता है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में पहली FIR, 8 लोग नामजद। और अमर उजाला ने इस खबर पर शीर्षक दिया, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के 20वें दिन FIR, 8 गिरफ्तार। समाचार पत्र अमृत विचार इस पर लिखता है, चढ़ावा लूट में 8 पर गबन धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज। चढ़ावा चोरी में जांच की आज किसी बड़े तक ना पहुंचने की आशंका सच साबित हुई। इस खबर को भी समाचार पत्र अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर आज नहीं। गुरुवार को प्रदेश भाजपा की नई टीम घोषित कर दी गई। इस खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने इस खबर को अपनी दूसरी लीड बनाया, जिस पर अखबार ने लिखा, यूपी बीजेपी की नई टीम में OBC पर फोकस। अमर उजाला ने लिखा, यूपी बीजेपी कार्यकारिणी में नए लोगों को अवसर, पिछड़ों व दलितों पर दांव। नवभारत टाइम्स ने लिखा, 27 का ध्यान, OBC को ज्यादा मान। दैनिक जागरण ने लिखा, भाजपा ने प्रदेश इकाई के आधे से ज्यादा पदाधिकारी बदले।
1: स्वतंत्र भारत इस पर लिखता है, यूपी में 64 भाजपा पदाधिकारियों की नई टीम घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। इस खबर को समाचार पत्र अमृत विचार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस पर अखबार में शीर्षक दिया, लोकतंत्र का गला घोटने वाली कांग्रेस कर रही गुमराह योगी। स्वतंत्र भारत ने इस खबर पर शीर्षक दिया, आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय, योगी। नवभारत टाइम्स ने लिखा, आपातकाल की 51वीं बरसी पर CM ने किया ऐलान, लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, योगी। अमेरिका ईरान के बीच समझौते के तहत हॉर्मुज जलमार्ग खुलने का असर भारत में दिखने लगा है। इस खबर को समाचार पत्र अमर उजाला ने प्रमुखता से स्थान दिया। अखबार ने इस खबर पर शीर्षक दिया, केंद्र ने वाणिज्यिक LPG की आपूर्ति पर लगी पाबंदियां हटाई। दैनिक जागरण ने खबर पर लिखा, कमर्शियल सिलेंडर से पाबंदियां खत्म। नवभारत टाइम्स इस पर लिखता है, कमर्शियल LPG से जंग वाली पाबंदियां हटी। अमृत विचार ने लिखा, सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर से हटाई सभी पाबंदियां। समाचार पत्र हिंदुस्तान ने लिखा, LPG आपूर्ति से जुड़े प्रतिबंध वापस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से लखनऊ में प्रदेश का पहला क्लीन संयंत्र केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस खबर पर समाचार पत्र हिंदुस्तान ने लिखा, ऐलान, लखनऊ में बनेगा यूपी का पहला क्लीन प्लांट सेंटर। राज्य सरकार ने अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया है। इस खबर पर अखबार लिखता है, यूपी में सभी बड़े भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट जरूरी। नवभारत टाइम्स ने इस खबर पर लिखा, अब हर जिले में बनेगी टास्क फोर्स। इसी के साथ ही बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

0: एक बार फिर से इस प्यारी सी म्यूजिक के साथ हम आ गए हैं आपके अपने फेवरेट गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में।
1: बिल्कुल, और बहुत से साथी अभी भी जुड़े हैं हमसे रोली, उनको भी हम करते हैं वेलकम उनका, और साथ ही साथ उनको कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को, और हमारे साथ जुड़ जाइए, इस मन से जुड़ जाइए, बहुत सारी बातें हैं आप सभी तक पहुंचाने के लिए।
0: तो फिलहाल ये सारी बातें तो आप तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन अभी ये ट्रैक एंजॉय करते हैं, बने रहिए हमारे साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। आज आपके साथ है इस प्रोग्राम में आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला,
1: और मैं हूं सुस्मित।

0: नमस्कार, 10 मिनट गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर जो है धड़कन लखनऊ की। और इस समय आपके साथ बने हुए कौन? आपके दो दोस्त, मैं आपकी आरजे हुसैन दोस्त रोली शुक्ला
1: और मैं सुस्मित, और साथ ही साथ बने हैं आप भी तो हमारे साथ।
0: हाँ।
1: आप हमारे साथ हैं तो फिर आपकी बातें क्यों दूर रहे?
0: और आपकी बातें, भाई वाह क्या बात है। सबसे पहली बात तो ये जो प्यार से आप इतने सारे पोस्टर्स बनाकर भेजते हैं, इतने सारे कलर्स से सजा कर ये पोस्टर्स आप हम तक भेजते हैं और अपनी सुबह का इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल बात है। उसके लिए थैंक यू सो मच।
1: बिल्कुल, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ जुड़ जाते हैं उस बात से जिससे आप भी जुड़ रहे हैं। हमने आपसे पूछा था कि आपके अनुसार जो हमारे युवा हैं उनको नशे से दूर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? परिवार की, शिक्षा की, मित्रों की, या फिर स्वयं व्यक्ति की जागरूकता की? आप सभी जुड़ रहे हैं अपनी बातों के साथ ही साथ। कुछ लोगों ने मुद्दे से जुड़ी बात की है, कुछ लोगों ने कुछ और बातें बताई हैं। तो चलिए बारी बारी से जुड़ते हैं आपकी बातों से और देखते हैं कि किसने क्या कहा है। तो सबसे पहला मेल किसका है इस वक्त रोली?
0: सबसे पहला मेल निधि चौरसिया का है, लिखती है, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे, स्पेशली आपसे कह रही हैं।
1: ओके, गुड मॉर्निंग आपको भी निधि।
0: और हमारे पास अगला जो मैसेज है रामराज का है, वो लिखते हैं कि सदाबहार गीत जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, मधुर, चरण, प्रजापति, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। जी हाँ बिल्कुल, आपका ये जो प्यार भरी आपकी बातें हम तो पहुंच गई हैं और ये लिखते हैं आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, सुपर हिट है, धन्यवाद।
1: थैंक यू। और इसके साथ ही साथ देखिए घनश्याम सिंह जी ने भी अपना मेल भेजा है नारायण नगर फैजाबाद रोड लखनऊ से। और आपको भी सुप्रभात का है रोली, मुझे भी सुप्रभात का है, सभी सुनने वालों को भी सुप्रभात का है,
0: प्यारी सी मॉर्निंग। और इसके अलावा हमारे पास वारिस अली खान जी का मैसेज आया है, लिखते हैं आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त सुस्मित को खान परिवार का प्यार भरा सलाम।
1: आपको भी हमारा सलाम।
0: लिखते हैं अर्ज है, हकीकत की भीड़ में कुछ गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं, आजकल हम अपनों में कुछ अपने ढूंढ रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: लिखते हैं पुष्पांजलि, बहुत अच्छा हुआ, भजन अच्छे थे, मन श्रद्धा से भर गया, आपने सदाबहार गीत भी बहुत अच्छा किया, सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया। थैंक यू
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ देखिये तेज बहादुर यादव जी और ममता यादव जी ने अपना मेल भेजा है शर्की जिला रायबरेली से। और वैसे अभी ये फिलहाल गुरुग्राम हरियाणा से हमें सुन रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने सभी को राम राम कहा है और गुड मॉर्निंग विश किया है, प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तेज बहादुर जी।
0: हमारे पास दिलावर खान का मैसेज आया है, लिखते हैं कि आदरणीय जी आदाब, ये रघुवीर नगर दिल्ली से है और इन्होंने तीन लोगों के नाम लिए हैं और साथ ही कहा है कि वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।
1: इसके अलावा देखिए घनश्याम जी की बात अधूरी रह गई थी, इन्होंने जो हमारा मुद्दा है उससे जुड़ते हुए कहा है कि जो युवा हैं उनको नशे से दूर रखने में सबसे ज्यादा सहायक परिवार होता है और इसमें परिवार को सजग रहना बहुत जरूरी है। अगर परिवार सजग है तो जो हमारा युवा है वो गलत संगत में नहीं जा सकता।
0: क्या बात है। हमारे पास संगीता जी का मैसेज आया है, लिखते हैं गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग आपको।
0: थैंक्स फॉर वेरी ब्यूटीफुल भजन्स एंड सॉन्ग्स टुडे इन फर्स्ट हाफ, स्पेशली इन गुड मॉर्निंग लखनऊ। थैंक यू सो मच संगीता जी। लिखती है

0: डिफरेंट प्लेलिस्ट हो रहे. थैंक यू.
1: क्या बात. चलिए आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है ये जान के हमें बहुत अच्छा लगता है.
0: मतलब आपने एंजॉय किया ये सबसे ज्यादा प्यारी बात है. और हमारे पास महेंद्र दीपन जी का मैसेज आया है. हमारे रेगुलर लिसनर हैं और बड़े अच्छे अच्छे मेल्स हम तक पहुंचाते हैं. लिखते हैं सुषमा सर जी, रोली मैम जी, गुड मॉर्निंग, सादर प्रणाम.
1: गुड मॉर्निंग.
0: हमारी तरफ से भी सादर प्रणाम आपको. लिखते हैं मैं महेंद्र दीपन, गांव रूड़, जिला नागौर, राजस्थान से न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लाइव आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं. और ये लिखते हैं कि आज के मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रखने में सबसे बड़ा हाथ परिवार के माहौल और खुद युवा के लक्ष्य का होता है. अगर माता पिता बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहें और युवा अपने सपनों और मेहनत में व्यस्त रहें तो उनका ध्यान कभी भी गलत संगति की तरफ जाएगा ही नहीं. बस उन्हें सही मार्गदर्शन और प्यार की जरूरत है. आप दोनों का प्रोग्राम हमेशा की तरह लाजवाब है. आपका नियमित श्रोता महेंद्र दीपन.
1: थैंक यू दीपन जी. और आप लोग ऐसे इतने प्यार से जुड़ते हैं और इतनी दूर दूर से हम तक मेल पहुंचाते हैं. निश्चित रूप से ये जान के बहुत अच्छा लगता है. ये प्यार ऐसे ही बनाए रखे. चलते चलते एक मेल यहाँ पर और शामिल कर लेते हैं. रोली जगमोहन मिश्रा जी का मेल मेरे सामने है. सभी को शुभ प्रभात कहा है. आपको भी शुभ प्रभात जगमोहन जी. मुद्दे से जुड़ते हुए इनका कहना है, नशा एक ऐसा जहर है जिससे सामाजिक पारिवारिक ताना बाना चूर चूर हो जाता है. परिवार का विकास समृद्धि रुक जाती है या यूं कहें कि जीवन बर्बाद हो जाता है. और इन्होंने एक घटना शेयर की है. कहते हैं कि मैं उन दिनों बिहार के बेगूसराय में था. सुबह का वक्त था, मैं अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था. कुछ ही दूर चला, देखा एक बच्ची माँ से लिपटी हुई बहुत जोर जोर से चीख रही थी, रो रही थी. मेरी बाइक रुक गई. दो चार लोग और भी थे. मैंने पूछा हुआ क्या. माँ बेटी दोनों चुप थी. बेटी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोल रही थी, अंकल पापा हमारा बैग लेकर चले गए. मुझे समझते देर न लगी कि उसका स्कूल बैग था. फिर उसने बताया कि अब वो बैग मुझे नहीं मिलेगा, पापा उसे बेच देंगे. आगे वो कुछ नहीं बोली, माँ के आंचल में सिमट गई. लेकिन मैं समझ गया कि उसके पापा नशे के आदी थे और बैग बेचने के लिए बेटी से लेकर भाग गए थे. मैंने उन दोनों को धीरज बंधाया, अपना कार्ड दिया और बाद में संपर्क किया अपने कुछ सहयोगियों के साथ. उस व्यक्ति को अपने स्टोर में रोजगार दिलाया और दो तीन महीने की काउंसलिंग के बाद उसको लगभग नॉर्मल पोजिशन में ला दिया. तो सुनने वालों से ये यही कहना चाहते हैं आगे कि नशा किसी भी तरह का हो, ये वो जहर है जो आपको ही नहीं पूरे परिवार को निगल जाता है और आपकी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा को तार तार कर देता है. सब कुछ बर्बाद हो जाता है. इसलिए प्लीज इससे दूरी बनाएं, स्वस्थ जीवन जिएं, यही अपेक्षा करता हूं.
0: बिल्कुल सही बात है. किसी भी चीज की लत हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए. हमें अपनी जिंदगी को अपने आप को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैलेंस रखना चाहिए.
1: तो बहुत से साथी और भी हैं जिन्होंने अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं, इस मंच तक पहुंची हैं. तो निश्चित रूप से आप सभी सुनने वालों तक भी उनकी बातें पहुंचेंगी. फिलहाल आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं म्यूजिक के साथ और मिलते हैं इस गीत के बाद.

0: नमस्कार 20 मिनट और रोली हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं आज के दिन से जुड़ी हुई नशे से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं और इसमें देखिए तो हमारे जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी गिरफ्त में होते हैं और युवाओं की जो ऊर्जा है उनकी प्रतिभा और उनके सपने अगर हम देखें तो ये किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें ऐसा वातावरण मिले जहां वो अपने लक्ष्यों रुचियों और अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें।
1: लेकिन उनकी इसी ताकत को सुस्मित तोड़ता है नशा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। नशा केवल व्यक्ति के शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी सोच, उसके रिश्तों और उसके भविष्य को भी प्रभावित करता है। कई बार क्षणिक आकर्षण या साथियों के दबाव में लिया गया एक गलत निर्णय जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है।
0: अब ऐसे में होता क्या है, ऐसे में अगर हम जागरूक हों और हमारा आत्म संयम मजबूत हो और सही मार्गदर्शन हो तो इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस जो आज है वो हमें यही संदेश देता है कि स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और जागरूक समाज ही एक बेहतर भविष्य की आधारशिला है।
1: बिल्कुल, तो आइए हम सभी मिलकर नशे के प्रति जागरूकता फैलाते हैं और स्वस्थ जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लेते हैं,
0: क्योंकि जीवन अनमोल है और इसकी सबसे बड़ी शक्ति है स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार और स्वस्थ समाज। तो आप भी अपनाइए इस स्वस्थ जीवन शैली को और साथ ही साथ रहिए नशे से दूर और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन
1: लखनऊ की। और फिलहाल हम चलते हैं एक बड़े ही प्यारे से ट्रैक की तरफ और ट्रैक के बाद वापस आते हैं क्योंकि अभी तो जानकारियां बहुत सारी आप तक शेयर करनी बाकी है।

0: वाह वाह वाह,
1: क्या बात है, क्या गुनगुनाया आपने।
0: हाँ हाँ, और ये और भी ज्यादा अच्छा तब लगे जब थोड़ी गर्मी कम हो, है ना।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, ये मौसम की बात आई है तो मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम बेसब्र हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जो हमसे जुड़ते हैं और हमें मौसम का क्या ताजा अपडेट है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी हमारे FM रेनबो पर आपका, और गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग
2: जी। गुड मॉर्निंग।
1: तो क्या रहने वाला है मौसम का हाल?
2: जी, मौसम की बात करें तो आज और कल थोड़ा सा गर्मी का सबब बना रहेगा।
1: जी।
2: कल शाम से या कहे तो संडे से सारा मौसम खुशनुमा होगा, बादलों की आवाजाही के साथ थोड़ा छिटपुट वर्षा का भी दौर शुरू होगा। तो कुल मिला के कहें तो जो अभी कल के बाद थोड़ा आने वाले दिनों में गर्मी से हमको

0: निजात मिलेगी और बीच बीच में बारिश का सिलसिला बंद रहेगा।
1: सर कल कुछ थोड़े तो बहुत बादल देखने को मिले थे, ऐसा लगा कि शायद बारिश हो जाए लेकिन नहीं हुई।
0: जी, थोड़ा सा अब यहाँ से थोड़ा जो मानसूनल फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और कुल मिला के कहे तो जो इतने दिनों से जो गर्मी का जो सिलसिला था उसमें थोड़ा ब्रेक आएगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा।
1: ये आपने बहुत ही औसम खबर दी है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इस समय।
2: और रोली आपकी इस बात से बहुत खुश है।
1: हाँ, और हमारी खुशी रेडियो के जरिए बहुत सारे लोगों तक जा रही है और आपकी बात सुन करके लोग थोड़े से खुश हो गए होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस अपडेट के लिए, थैंक यू सो मच।
0: ओके, धन्यवाद।
2: तो मित्रों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने बताया कि साहब खुश हो जाइए, थोड़ा इंतजार है और उसके बाद मौसम में आई बहार है।
1: क्या बात है,
2: क्या बात।
1: और मौसम में जो बहार है वो बड़े हौले होले आ रही है, है ना। तो ये जो हौले हौले सी हवा चलती है आप उसे देख कर महसूस करिए खुश हो जाते हैं,
2: है ना। बिल्कुल सही बात।
1: तो बस इसी तरह से हौले हौले एंजॉय करते रहिए। गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन
2: लखनऊ की।

0: क्या बात है आपने हौले हौले चलने की बात कही थी रोली
1: हाँ।
0: और देखिए हौले हौले चलने की बात मुझे लगता है शायद कोई और भी कहने वाला है।
1: अच्छा तो अब हमारे पास कौन है जो ये हौले हौले से अपनी बात हमको बता रहा है?
0: जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैफिक एसआई विकास सिंह जी, और हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं बड़ी एनर्जेटिक आवाज के साथ और बताते हैं हमें ट्रैफिक में क्या कुछ है खास। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है विकास जी 100.7 FM रेनबो पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो ऐसे में ज्यादा ट्रैफिक नहीं है शहर में। सर आज जो है मुहर्रम माह चल रहा है, तो मुहर्रम माह के अंतर्गत 10वीं मुहर्रम है ये, और 10वीं मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय द्वारा आशुरा का जुलूस निकाला जाता है सर, तो ये जो है लगभग सुबह से ये 10 बजे से शुरू रहता है। नाजिम साहब इमामबाड़ा थाना क्षेत्र जो हमारे चौक में पड़ता है, वहां से ये प्रारंभ होकर के जुलूस बाजार खाला होते हुए लगभग 2:30 बजे ये बड़ा जुलूस चलता है, 2:30 बजे ताल कटोरा थाना पहुंचता है और वहां पर समाप्त होता है। तो इस दौरान जो हमारा वो मार्ग है ये इमामबाड़ा से लेकर के बाजार खाला तक, ये मार्ग यातायात हेतु जो है प्रतिबंधित रहता है। इस दौरान मैं श्रोताओं से यही अनुरोध करूंगा कि यदि आप चौक क्षेत्र में इस रूट का प्रयोग करना चाह रहे थे तो कृपया आप प्रयोग न करें। यदि आप टुड़ियागंज तिराहा से जा रहे थे तो नखास और लाल माधव और तिराहे की तरफ आप नहीं जा सकेंगे, बल्कि ये यातायात हम गिरधारी इंटर कॉलेज आदतगंज होकर के भेज रहे थे। वहीं अगर कमला नेहरू जो क्रॉस चौराहा है, मेडिकल क्रॉस चौराहा, वहां से भी हम नखास टुड़ियागंज की तरफ यातायात प्रतिबंधित है, यहां से आप मेडिकल कॉलेज चौक होकर के आप अपने गंतव्य को जा सकेंगे। तो आप अगर आपको कहीं जाना है तो मेडिकल कॉलेज वाला रास्ता यूज कीजिए, सादतगंज वाला यूज कीजिए, चौक क्षेत्र के इस एरिया का यूज करने से बचे। यदि अति आवश्यक है, कहीं इमरजेंसी है और आप जो है स्टक हुए हैं, तो आप हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 94-44-51-55। हम सदैव आपके सुगम यातायात हेतु तत्पर हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी अपडेट हम तक पहुंचाई, हमारे साथियों तक पहुंचाई, ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।
2: धन्यवाद सर।
0: तो मित्रों ये थे हमारे साथ ट्रैफिक एसआई विकास सिंह जी, जिन्होंने हमें ट्रैफिक के बारे में ताज़ा जानकारी दी और बताया कि क्या कुछ करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हम यहाँ पर आपसे इस बात में अपनी बात जोड़ते हुए जरूर कहेंगे कि कहीं पर आइए कहीं पर भी जाइए, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करिए।
1: ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से आपकी भी सुरक्षा होगी और आपके अपनों की, और सड़क पर जो लोग चल रहे हैं उन सब की। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, रोली शुक्ला और
7: सुस्मित के साथ। और हमारे साथ बहुत से साथी हैं जिनकी बातें लगातार हम तक जुड़ती जा रही हैं और उन साथियों की बातों से हम भी जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारा इशारा है मेल्स की तरफ जो हमें बड़े प्यार से हमारे साथियों ने भेजे हैं। हमने बात की है, आज जो हमारा मुद्दा हमने रखा है आपके बीच

0: में वो बात ये है कि जो युवा हैं उनको नशे से दूर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, परिवार की, शिक्षा की, मित्रों की, या फिर स्वयं व्यक्ति की जागरूकता की हो रोली? इस बारे में हमारे साथी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जुड़ते हैं।
1: हमारे पास रजनीश पासवान जी का मैसेज आया, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग बोथ आरजीज, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अंदर इस प्रकार की कोई लत नहीं है, थैंक गॉड।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी चीज है।
1: और साथी लिखते हैं, सुस्मित सर का पुष्पांजलि और सदाबहार नगमे प्रोग्राम में मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया।
0: थैंक यू सो मच, और ये प्यार ऐसे बनाए रखिए। बहरहाल अगला मेल है राममोहन गुप्ता जी का, लखीमपुर से इन्होंने मेल भेजा है और कहते हैं, आधुनिक और एडवांस दिखने की चाहत लगा बढ़ा रही है युवाओं में नशे की लत। आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती, पार्टियों मीटिंग्स के नाम पर भीड़ जुटती। कई बार तो होता है ऐसा ही जानबूझकर संगी साथी को ले जाते हैं इनमें खींचकर। ऐसे में परिवार, समाज, साथियों के दायित्व संग स्वयं की सोच और नियंत्रण बनते मित्र। मित्र यही अच्छे बुरे का सही भान है कराते, स्वयं पर कंट्रोल करने संग सही राह दिखाते। सबसे बड़ी बात, टीवी शो, सीरीज व सिनेमा पर रोग प्रदर्शन बन सकते हैं सहयोगी। हाँ, बहुत सुंदर बात। मेन चीज जो आप इन पंक्तियों में जो अपनी जो एक भाव आप रख रहे हैं, जो बात कहना चाहते हैं, वो बात बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से हमें इस बात को समझना होगा।
1: हमारे पास वकील अहमद का मैसेज आया, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, आप दोनों की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू। लिखते हैं, नशा शरीर और घर को बर्बाद करता है, हम सबको नशा नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और देखिए ये मेल है मुनेश कुमार राज जी का, लखीमपुर से ही, और गुड मॉर्निंग कहते हुए इन्होंने कहा है, हर कार्यक्रम बेमिसाल सुनते सुनते हो गए कई साल, नशा नाश का दूसरा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। और मुद्दे पर इनका कहना है कि आज के दौर में लोग नशे की लत के लिए उधार भी दे देते हैं, लेकिन अगर आप किसी समस्या से परेशान होकर किसी से उधार पैसे मांगे तो वही लोग कई तरह की बहानेबाजी करने लगते हैं। एक बात और ये कहते हैं कि नशे की लत की तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा रास्ता बाल मजदूरी है। अपने बच्चों को बाल मजदूरी पर बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि बुरी संगत में पड़कर उन्हें नशे की लत लग सकती है। तो साहब ये बिल्कुल सही बात है, इन बातों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है और ख़ुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है, जो उन्होंने आगे कहा है। हमें जितना भरोसा खुद पर है उतना भरोसा नशे के मामले में दूसरों पर नहीं करना चाहिए। नशा करना ही है तो देश में पहले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अपने अंदर जुनून का नशा करो, नशा करना ही है तो भगवान की भक्ति का नशा करो। क्या बात है,
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास ब्रजेश सिंह दीपू टेवुआ कैसरगंज बहराइच से मैसेज आया है, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सुस्मित सर जी, गुड मॉर्निंग, क्यूट प्यारी रोली दीदी, थैंक यू सो मच, आपको भी गुड मॉर्निंग।
0: और देखिए नागेश कुमार जी ने कहाँ से मेल भेजा ये तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने सभी को गुड मॉर्निंग कहा है। निधि चौरसिया जी ने भी अपना मेल बालागंज लखनऊ से भेजते हुए सभी को गुड मॉर्निंग कहा है, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और अरुण कुमार जी का मेल ये आया है घमोइया हरदोई से, और इन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि युवाओं को स्वयं इस बात के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद माता पिता और हमारे तमाम संबंधित लोग उनकी रोज की गतिविधि को नोट करते रहें और जैसी ज़रूरत पड़े वैसी उनकी मदद करें।
1: क्या बात है।
0: तो इसी कड़ी में अगला नाम किसका है रोली?
1: अगला नाम है मोनू सेठ जी का, और इनका मेल आया है हमारे पास, और ये भी इन्होंने कुछ अच्छा सा श्लोक लिख करके भेजा है, थैंक यू सो मच। आर्यन जी का मैसेज आया है, और आर्यन वर्मा आपको भी गुड मॉर्निंग।
0: साथ ही साथ वकील अहमद जी ने भी अपना मेल भेजा है सीतापुर से, गुड मॉर्निंग कहा है सभी को, और कहते हैं, नशा शरीर और घर को बर्बाद करता है, हम सबको नशा नहीं करना चाहिए।
1: और सुस्मित एक गाना जो कि बिल्कुल तैयार है, तो एंजॉय कर लें ये गाना।
0: बिल्कुल, मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NACC द्वारा जनहित में जारी।
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: नमस्कार, 52 मिनट और एक ऐसा दिन जो आज के दिन से जुड़ा हुआ है और बड़ा खास दिन है, और वो खास दिन इसलिए भी है क्योंकि साहब गर्मी में ये जो है ना हमें बड़ी राहत देता है, अगर ये
6: ठंडक का एहसास देता है।
5: बिल्कुल सही कहा रूली,
6: इन शॉर्ट कहें तो ठंडक का एहसास देता है। आज है विश्व रेफ्रिजरेशन दिवस।
5: ऐसे में सोचिए कि गर्मी के दिनों में जो हमें ठंडा पानी मिलता है, ताज़े फल सब्जियां मिलती हैं, सुरक्षित दवाइयां और आरामदायक वातावरण ये जो मिलता है ना, ये कैसे होता है? और इसके पीछे दरअसल एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेक्निक है, वही है रेफ्रिजरेशन, यानी जो शीतलन करने वाली तकनीक है।
6: जो अक्सर आप अपना फ्रिज खोल के वो जो ठंडी ठंडी हवा लेने की कोशिश करते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, या फिर आपको आम खाना है और आपने सोचा कि जल्दी से खाना है, चलो इसे फ्रीजर में डाल देते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा, या पानी जल्दी ठंडा करना है, चलो इसे फ्रीजर में डाल देते हैं, या किसी भी तरीके का जिसे कहते हैं शीतलन तकनीक होती है, जिस किसी भी चीज़ को ठंडा करने की जो तकनीक होती है, आज वो दिवस मनाया जाता है।
5: जी हाँ, और ये जो डे है, अब इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल हमारा जो दैनिक जीवन है, डेली जो हमारी लाइफ है, उसमें ये रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और कोल्ड चेन तकनीकों के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने से लेकर अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं और टीकों के संरक्षण तक ये जो तकनीक है वो

0: आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है।
1: और ये जो टेक्निक है सुस्मित, इसे कहते हैं ना कि हर दिन में हम जब अपना दिन शुरू करते हैं या अपना दिन खत्म करते हैं, पूरे दिन ओवरऑल बहुत सारी चीजों में हम डिपेंड होते हैं इस तकनीक पर। आज जब दुनिया ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ रही है, तब ऐसी शीतलन प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है सुस्मित, जो ऊर्जा दक्ष होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी हो।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो दिवस है, ये हमें उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान को भी याद करने का मौका देता है, अवसर देता है, जिनके प्रयासों से ये तकनीक आज करोड़ों लोगों के जीवन को बहुत ही बेहतर, सुरक्षित, स्वस्थ और सुविधाजनक बना रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डे है और इस दिवस पर विज्ञान और तकनीक के महत्वपूर्ण क्षेत्र के महत्व को समझते हुए ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग का हम संकल्प लें। और साथ ही साथ बस
1: आपको क्या लगता है, आप दिन भर में कितनी सारी चीजों के लिए इस टेक्निक पर निर्भर करते हैं?
0: साहब बहुत, इस समय गर्मी में तो मतलब हाँ, काउंट करना मुश्किल है
1: क्योंकि हम हर चीज इस समय अक्सर कोशिश करते हैं कि भाई हम ठंडी ही चीजों का

0: दिवस पर विज्ञान और तकनीक के महत्वपूर्ण क्षेत्र के महत्व को समझते हुए ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग का हम संकल्प लें और साथ ही साथ बस
1: आपको क्या लगता है आप दिन भर में कितनी सारी चीजों के लिए इस टेक्निक पर निर्भर करते हैं?
0: साहब बहुत, इस समय गर्मी में तो मतलब हाँ, काउंट करना मुश्किल है
1: क्योंकि हम हर चीज इस समय अक्सर कोशिश करते हैं कि भाई हम ठंडी ही चीजों का सेवन करें।
0: बिल्कुल, पानी पीना है तो फ्रिज, कुछ और लेना है तो ठंडा ही चाहिए, और तमाम चीजों में मतलब ये जो टेक्निक है वो इस समय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: एंड नॉट इवन समर्स, सुस्मित हमारी ओवरऑल मतलब जो 12 महीने होते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस टेक्निक पर निर्भर करते हैं। फिलहाल अब देखिए ना घड़ी की तरफ, ये क्या इशारा कर रही है, ये क्या
0: कह रही है? कर रही है कि रोली बहुत खुश हैं, अगले प्रोग्राम में ये आपके साथ रहेंगे और मुझे अब चलना होगा, तो मैं थोड़ा सा चलते हुए यहाँ पर आपसे दूर होते हुए थोड़ा उदास, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे।
1: तो सुस्मित के इस समय जाने का समय है, प्रोग्राम से टाटा बाय-बाय कहने का समय है, और फिलहाल रोली आपके साथ तो बनी रहने वाली है, तो रोली कहीं नहीं जा रही है, सो आपको भी हमारे साथ बने रहना है, हमारे साथ और भी प्रोग्राम्स को एंजॉय करना है 12 बजे तक।
0: और चलते चलते एक बात यही कहूंगा, आज का दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नशा निरोधक दिवस, याद रखिये ये नशा हमारे लिए कितना घातक है, एक छोटी सी ही बात आप इतनी सी समझ लीजिए तो पूरा जीवन आपका बेहतर हो जाएगा। बहुत से साथियों ने इस पर अपनी बातें पहुंचाई और वो सारी बातें आप अगर सुन के समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जीवन बहुत सुखी और बढ़िया हो जाएगा। तो इसी बात के साथ ही साथ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपना जीवन बढ़िया स्वस्थ और खुशहाल रखिए और मुझे दीजिए अनुमति।
1: तो इन्हीं तमाम जानकारियों और बातों के साथ, कारगर बातों के साथ गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और एक इस प्यारे से ट्रैक के बाद न्यूज ब्रेक, और उसके उस पर आपके लिए होगी ढेर सारी म्यूजिक मेलोडियस ट्रैक्स से भरी हुई एक्सप्रेस, तो उसमें सवार होने के लिए आप कितना एक्साइटेड है ना। तो बस बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए कुल 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति दिया जाना प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए शुरू किए गए पीएम आवास ग्रामीण के नए चरण का हिस्सा है, जिनके जरिए राज्य के लाखों गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्का घर उपलब्ध कराने का रास्ता खुला है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्लीपर बसों, स्कूल बसों, स्टेज कैरेज बसों और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसों में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता और कार्यशीलता सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि वाहनों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे किसी भी आकस्मिक अग्नि दुर्घटना की स्थिति में प्रारंभिक स्तर पर आग पर नियंत्रण स्थापित कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश में लघु पशुपालन क्षेत्र जैसे भेड़, बकरी एवं सुकर पालन को वैज्ञानिक संगठित एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश में पहली बार यूपी स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ। प्रदेश सरकार पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विशेष प्राथमिकता दे रही है। पशुधन विभाग द्वारा लघु पशुधन पशुपालकों के विकास के लिए बकरी पालन की योजना संचालित है, जो कि 90% अनुदानित है। और अंत में, आज 10वीं मुहर्रम है। इस दिन को आशुरा के नाम से भी जाना जाता है। इमाम हुसैन को आज ही के दिन कर्बला के मैदान में उनके साथियों के साथ शहीद किया गया था। लखनऊ का मुहर्रम और आशुरा जग प्रसिद्ध है। आज लोग ताजियों को विभिन्न कर्बला में ले जाकर के दफन कर रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य धर्म के लोग भी ताजियादारी करते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
3: भाई अब मैच का क्या होगा?
2: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
4: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
5: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
4: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-444-444।
6: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: और एक बार फिर से मैं रोली शुक्ला आ चुकी हूँ आप सबके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जी हाँ, वही सुपर हिट्स।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

0: चेंजेस।
1: और दोस्तों इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर वाइंड अप करने का टाइम है। जी हाँ, सुपर हिट सॉन्ग्स यहीं तक था आज, और नेक्स्ट प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में, मैं आपके साथ रहूंगी, सो कहीं भी मत जाइए, रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें। क्लीन प्लांट सेंटर यहां लगाएंगे, जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उन्हें अच्छे पौधे मिल सके। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। और अंत में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। अमरोहा की जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अलका चौधरी ने बताया कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट तथा आवेदकों के अभिभावक की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र हेतु वार्षिक आय सीमा ₹1,00,000 तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, अभ्यर्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 12 बजे। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

11:04 हो चुके हैं और एक बार फिर से आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला आ चुकी है आप सबके साथ संदेश आपकी गीत हमारे लेकर मैं बिल्कुल तैयार हूँ एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आपकी मेल्स का कर रही हूँ बेसब्री से इंतजार और साथ ही साथ अगर आपको हमारे साथ फोन पर बात करनी है जी हाँ बिल्कुल हमारे फोन नंबर आपके लिए है 0522 ये लखनऊ का कोड है और नंबर है 2238845 और दूसरा नंबर है 0522 आप कोड लगाएगा 4530206 तो बस अब आपकी फोन कॉल्स और आपके मैसेजेस के लिए मैं कर रही हूँ इंतजार और ये ट्रैक आप तक भेज रही हूँ एंजॉय करिए

आर्यन वर्मा ने हमें मैसेज किया है, मेल भेजा है, मोनू सेठ ने हमें मेल भेजा है, लिखते देश में विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच मादक पदार्थों की लत एक गंभीर समस्या है और इसका प्रभाव केवल नशा करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि परिवार, समुदाय, पूरे समाज पर पड़ता है। तो खुद का जीवन अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि इन बातों पर रोक लगाई जाए और कृपा करके नशे से दूर रहा जाए। थैंक यू सो मच मोनू जी, आपने हमें ये मेल किया और मोनू जी की तरह बड़े सारे मेल्स हमारे पास आ चुके हैं, तो बस गाने एंजॉय करते हैं और साथ साथ मेल्स भी पढ़ते रहेंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हाँ भाई हाँ, सेल्फी ले लेते हैं। और अगर टाइम है आपके पास थोड़ा सा और कामों से थोड़ा सा आपने ऑफ ले रखा है, तो भाई चलिए सेल्फी ले लेते हैं। हमारे पास वकील अहमद का मैसेज आया, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू टू, लिखते हैं आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। अच्छा, थैंक यू सो मच, और आपका मैसेज हमें अच्छा लगता है, आपका प्यार हमें अच्छा लगता है। ये लिखते हैं संदेश ये कि 10 की मुहर्रम है, ताज़िया ले जाएंगे, किसी लोग कोई विवाद ना करें। हाँ बिल्कुल। और साथ ही लिखते हैं कि ऐसा कहाँ मिलेगा महीना, और साथ ही साथ ये सबको मुबारकबाद देते हैं। भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही हमारे पास मेल आया है नागेश कुमार जी का, और नागेश कुमार जी ने अपनी बात कही है, विशेषकर किसानों और आम लोगों के लिए जो पौधों की देखभाल है, खेती की नई तकनीक, मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन, खाद और उर्वरक के सही उपयोग, और फल और सब्जियों की खेती पर इन्होंने कहा है कि

बिल्कुल भाई, और वैसे भी आज दिन है फ्राइडे और उसके बाद सैटरडे फिर संडे। भाई कुछ लोग जो है ना बस इंतजार में रहते हैं कि कब सैटरडे आएगा, कब संडे आएगा और कब कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे। और कुछ लोग तो मतलब कुछ लोगों ने तो प्लान बना भी लिए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्लान्स कर भी लिए होंगे। और ऐसे में भाई आसमान में उड़ने का तो समय होता है। फिलहाल आपकी मेल्स का इंतजार कर रही हूँ, fmakashwanilakhnow@gmail.com इस पर आप अपनी मेल भेज सकते हैं, संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम में। और हमारे पास ये कौन आया, चलिए देखते हैं ये कौन आया, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद आते हैं किसका मेल हमारे पास आया।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL Gold TMT सरिया 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हमारे पास मैसेज आया है किसका, महेंद्र दीपन जी का, और ये क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि आदरणीय रोली मैम जी, हाय हाउ आर यू, ये लिखते हैं कि लखनऊ के सभी प्यारे से श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार, और ये साथ ही लिखते हैं कि मैं इस समय लाइव आपका पसंदीदा प्रोग्राम संदेश आपकी गीत हमारे सुन रहा हूँ। मैम आपका प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह आज भी बहुत लाजवाब और दिल को छू लेने वाला है, थैंक यू सो मच महेंद्र जी। और ये लिखते हैं कि मैम इस खूबसूरत प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी लिसनर्स को एक बहुत ज़रूरी और ज़िम्मेदार संदेश पहुंचाना चाहता हूं, और वो क्या है भाई, वो ये है कि ये लिखते हैं कि क्या यातायात के नियम ज़रूर फॉलो करें, सुरक्षित सफ़र हो आपका, सुरक्षित परिवार हो आपका, और सड़कों पर चलने के लिए यातायात के नियम केवल नियम नहीं बल्कि हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे परिवार को मिलाने के लिए होते हैं, और नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। सुरक्षा उपकरण ज़रूरी हैं जिसमें कि बाइक चलाते समय हेलमेट और फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, और जल्दबाजी से बचना चाहिए। याद रखें हमारी सुरक्षा में ही हमारे पूरे परिवार की खुशियां छुपी हैं, और हमारी सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए गए हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो महेंद्र जी हमेशा की तरह आप अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा, और हमारे पास यूं ही अपने मेल्स भेजते रहिएगा, और बड़ा ही खूबसूरत सा पोस्टर आपने डिज़ाइन करके भेजा है, थैंक यू सो मच इसके लिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हमारे पास बबीता राव का मेल आया है और ये कहाँ से मेला है, बेली कलां गुसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से। और ये लिखती है, मैम जी मुझे आपकी वॉइस और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। और ये लिखती है, आज मेरा बहुत ही छोटा सा संदेश है, दो पहिए के दो नियम, सावधानी एवं संयम, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, पुलिस के या चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। कृपया जितने भी लोग गाड़ी से चलते हैं वो लोग हेलमेट लगाकर ही गाड़ी चलाएं, हाथ में पहनकर नहीं। और साथ ही साथ इन्होंने बड़ा प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता भी भेजा है, कलरफुल। और लिखती है, थैंक यू सो मच डियर मैम फॉर इंक्लूडिंग माय ईमेल, थैंक यू सो मच टू यू टू। और हमारे पास किसका मैसेज आया है, विजय पाल यादव का मैसेज आया है खीरी से, और ये लिखते ललनुआ खीरी से, और ये लिखते हैं, आदरणीय दीदी जी सादर प्रणाम, आपको भी हमारा प्रणाम। और ये लिखते हैं, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रशंसनीय है, थैंक यू सो मच। और ये लिखते हैं कि आज का संदेश है कि शादी बारात का समय चल रहा है, ऐसे मौके पर अपनी सेहत का ध्यान रखें, चाट पकौड़ी के चक्कर में कम पड़ें, हल्का खाना खाएं और खाना बेकार बिल्कुल ना करें, जितना खाएं उतना ही थाली मिले। बिल्कुल सही कहा आपने विजय पाल यादव जी। और इन्होंने ये जो मेल भेजा है, ये रहते कहाँ है, ये ग्राम वो पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से इन्होंने हमें, ये वहाँ रहते हैं और मेल भेजा है, थैंक यू सो मच। आपने अपना प्यार हम तक भेजा और आपने अपने व्यूज रखे एक अच्छी बात पर, एक अच्छी चीज पर, आपने सबको अच्छी बात सिखाई कि शादी में किस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से कमा कर लगाया गया धन इसमें तब जाकर के कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है अपने घर में, है ना, तो इस बात का ध्यान हमें विशेष तैयार रखना चाहिए।

हमारे पास नजीम जी का मैसेज आया है और ये लिखते हैं कि मुहर्रम आज है और था, आपको भी इसी तरह से अपने सारे त्यौहार मनाते रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में खुश रहना ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास मुनेश कुमार राज का मैसेज आया है, लिखती हैं कि आरजी जी को राम राम, आपको भी, ये कहते हैं हर कार्यक्रम बेमिसाल और इससे मिलते हैं अच्छे अच्छे विचार। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये लिखते हैं आज का संदेश हमारा ये है कि कुछ नशा करने वाले लोग बच्चों की भी लत लगा देते हैं और ये जो है बहुत ही भयावह मंजर को बुलावा देता है। सिगरेट या किसी भी तरह का नशीला मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए और ना ही बच्चों को देना चाहिए। और इस किस्म के लोग जो कि रास्ते में ऐसा करते दिखते हैं, उनको भी मना करना चाहिए। और हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, अपने लोग हैं, इन सब चीज़ों को देख कर कहीं ना कहीं अपने अंदर उस चीज़ को धारण करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे समाज में मिसाल अच्छी नहीं होगी तो हमारा समाज की जो जड़ है वो कैसे नरिश होगी अच्छी चीज़ों से। हाँ, तो ऑब्वियसली बड़े लोग जो हमें सिखाते हैं या हमें बताते हैं वो सही सिखाते हैं, साथ में वो लोग भी जो कि कुछ एक्शंस करके दिखाते हैं वो भी कुछ अच्छी बातें करें, कुछ अच्छे काम करें, सो दैट छोटे बच्चे उन्हें देखकर कुछ सीख सकें, कुछ बेहतर बन सकें, कुछ अच्छी मिसाल कायम हो सके। 11:46 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे। और आपके साथ कौन है इस समय? आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला है इस समय आपके साथ। थोड़े से समय और शेष बचा है जब मैं आपके साथ रहूंगी, सो जितना भी समय है उसे एंजॉय करते हैं।

और जब पूरा दिन साथ में रहता है तो ऑब्वियसली वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो बंदू भी होता है, वो सखा भी होता है, और वो आपका हर राज को जानने वाला राजदार भी होता है। क्या कहते हैं आप? हमारे पास मैसेज आया है, किसका? हमारे पास मैसेज आया तनु कश्यप का, और ये लिखती है, क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, प्लीज उनका वाला सॉन्ग बजा दीजिए। सो क्यूट। आप को मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है इसमें आपका पसंदीदा गाना नहीं बजता है, ये तो आपके दूसरे शो में होता है, लेकिन आपकी जो फ्रेंड है उसका नाम है आस्था सिंह, तो मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आस्था सिंह को हैप्पी बर्थडे। तो तनु जी, आप खुश हो गई ना? आपकी पसंद का सॉन्ग तो नहीं, लेकिन आपके सखा आपके बंधु को मैंने हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है। यही तो कह रही थी मैं कि जब आपका कोई बहुत बेस्ट वाला फ्रेंड और वो साथ रहे हमेशा, तो वो आपका बेस्ट बडी बन जाता है। हमारे पास मयंक शुक्ला का मैसेज आया है, और मयंक शुक्ला कहते हैं कि भाई मेरा गाना प्ले कर दिया, और एक लंबी सी कतार में लिखा है प्लीज़। तो मैं आपको बता दूं कि आपके संदेश इसमें शामिल किए जाते हैं, और आपका पसंदीदा गाना प्ले नहीं किया जाता, लेकिन हमारे जो गाने जो हम प्ले करते हैं वो भी तो आपको बहुत पसंद आते हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी का मैसेज आया, लिखते हैं, मैम जी सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूं। संदेश ये है कि जैसे लोग शादियों में लिफाफा भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हॉस्पिटल जाते हैं मिलने के लिए तो मदद के लिए उसी तरह से करना चाहिए, उन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। और साथ ही लिखते हैं कि सभी जो लिसनर्स हैं उनको इनकी तरफ से नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज भेजा हमें और आपका मैसेज हमने शामिल किया। और वैसे अब आपको बता दें कि बहुत कम समय बचा है, लेकिन एक बड़ा प्यारा सा ट्रैक है, अच्छा से पॉपअप करके आ रहा है सामने, और ये कह रहा है कि भाई प्ले कर दिया। तो एक प्रिटी लेडी है जो कि ऑन स्टेज डांस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए इस प्रिटी लेडी को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा कर उसके बाद वापस आते हैं।

0: के बसकूं तारा हूं मैं तेरा झूठ।
1: और ये जो प्रति गर्ल है जो अभी अभी आई है, देखते हैं इनका नाम क्या है भला। हेलो
2: हेलो, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो नाम क्या है भला?
2: नाम तो मैं नहीं बताने वाली।
1: मैं बता देती हूँ नाम क्या है भला। इनका नाम है क्या क्या क्या?
2: चंद्रकला।
1: हाँ, ये बात हुई ना। तो दोस्तों, अब समय किसका है? समय है चंद्रकला का। सब चंद्रकला रहने वाली हैं आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में। और रोली शुक्ला आपसे कहती है टेक केयर, टाटा बाय बाय। मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी दिन किसी और शो में। तब तक के लिए अपने चेहरे पर, अपने होठों पर ये मुस्कुराहट यूं ही बनाए रखिएगा और साथ ही साथ 100.7 FM रेनबो सुनते रहिएगा। टेक केयर, बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में आज 8 नामजद व अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पहली FIR दर्ज कर ली गई है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर सीएम योगी द्वारा गठित SIT के प्रारंभिक प्रतिवेदन में कठोर संस्तुतियां की गई हैं। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई इस FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में कहा कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम, बाबा बैजूनाथ धाम सहित क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण केवल आस्था का सम्मान नहीं बल्कि उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने इन धरोहरों की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बाबा तामेश्वरनाथ धाम को नई पहचान देने के लिए भव्य कॉरिडोर निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है। कॉरिडोर बनने से क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा।

और इस काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम तथा मां विंध्यवासिनी धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना अंतर्गत पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अमरोहा की जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अलका चौधरी ने बताया कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट तथा आवेदकों के अभिभावक की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र हेतु वार्षिक आय सीमा 1,00,000 होनी चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। अभ्यर्थी बेरोजगार हो, किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, बल्कि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: 12:03 हो गए हैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम है आपको. मैं चंद्रकला आपकी दोस्त आपके साथ जुड़ गई हूँ और ये प्रोग्राम ये आपका प्रोग्राम है. ये समय जो है वो शत्रुपा का है और ये सेगमेंट है स्वयं सिद्धा. और आगाज कर चुके हैं हम आज प्रोग्राम स्वयं सिद्धा का, शत्रुपा का. ये एक खास मंच है जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने अपने साहस, मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया, नए मुकाम हासिल किए और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया. बस एक खुशी की बात आज आपके साथ साझा करने वाली हूँ और आज स्वयं सिद्धा क्योंकि डेडिकेटेड है हमारी उन महिलाओं को जिन्होंने अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल किया, अपनी पहचान बनाई अपने दम पर. और हम ट्रिब्यूट भी करते हैं, उदाहरण भी देते हैं और साथ में खुद सीख भी लेते हैं. और आज गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि हमारे साथ एक ऐसी ही प्रेरणादायी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने योग को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनाया है. योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली, अनेक खिलाड़ियों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने वाली और अपने कार्यों के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर मालविका वाजपेयी जी आज हमारे बीच हैं. तो अब उनकी आवाज भी सुनी ली जाए. और डॉक्टर मालविका जी, शत्रुपा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है.
1: नमस्कार चंद्रकला जी.
0: नमस्कार मालविका जी, और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. और इतनी खुशी हमें है कि आज आप अपनी इंस्पायरिंग सी लाइफ की स्टोरी, आपका जो स्ट्रगल है और आपकी सक्सेस स्टोरी है, ये सारे अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ, हमारे साथ साझा करने जा रही हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से. चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि मालविका जी की ही पसंद का एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजा जाए. और ये गीत सुनने के बाद हम आएंगे और मालविका जी से क्वेश्चंस का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे. और शुरू करने के साथ साथ हमारे हौसलों की, आपके हौसलों की, सफलता की एक नए मुकाम की अलग सी बात होगी. तो ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: टोलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: गिव मी सम सनशाइन, ये आपने क्या सोचा कि इस गाने को सबसे पहले प्ले करें? आपको बहुत पसंद है कि मतलब आपको इसकी वाइब अच्छी लगती है?
1: ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मैंने सॉन्ग सुनना शुरू किया था, और देखिए सन इज़ द पावर ऑफ एनर्जी राइट, मतलब और मुझे लगा जस्ट गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन. मुझे ऐसा लगा ना कि लाइक इसमें ये कि अगर आप कभी फेल भी हो जाते हो
0: जी,
1: तो हम हार नहीं मान रहे हैं और हम आगे बढ़ने के लिए ये गाना मुझे बोल रहा है कि जब मुझे दूसरा मौका भी मिलेगा तो मैं दोबारा से नया मतलब स्टार्टिंग से मैं ग्रो करके दिखाऊंगा. तो हालांकि कभी फेलियर नहीं देखा लाइफ में ऐसा, लेकिन ये प्रेरित करता था अंदर से. तो अक्सर मैं गुनगुनाती रहती थी, सुनती रहती थी इसको. बट मेरे स्पोर्ट्स फील्ड ने मुझे इसने बहुत हेल्प किया. मैं वॉलीबॉल प्लेयर रही हूँ. जब मैंने स्मैश मारना सीखा तो एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ. बट जो म्यूज़िक होते हैं
0: जी,
1: म्यूज़िक इज़ लाइक अ मेडिटेशन
0: जी.
1: जब हम उसे सुनते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारा ब्रेन इतनी उसको, उसकी वाइब्स को इतनी जल्दी अब्सॉर्ब करता है कि शायद किसी की बातें और प्रेरणा हमें जितनी जल्दी नहीं समझ में आती, म्यूज़िक इतना हेल्पफुल होता है.
0: क्या बात है, मतलब ये है कि अगर अच्छा म्यूज़िक सुने तो अच्छी सराउंडिंग्स, अच्छी वाइब्स मिलेंगी. क्या बात है. तो डॉक्टर मालविका, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी योग की ये जो यात्रा है, ये शुरू कैसे हुई? क्या बचपन से ही आपकी योग के प्रति रुचि थी, या ज़िंदगी के किसी खास एक्सपीरियंस ने आपको इस दिशा में प्रेरित किया? आपकी मतलब ओवरऑल जो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी योग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली?
1: मेरे फादर प्रिंसिपल थे
0: जी.
1: मेरी मदर पहले आईटीआई में काम करती थी, और इससे पहले मतलब वो इंजीनियरिंग उन्होंने करी है. तो लखनऊ में अपट्रान लिमिटेड में उन्होंने काम किया उससे पहले
0: जी.
1: और फिर हमारी परवरिश करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी. और एक मिडिल क्लास फैमिली में हम बहुत अच्छे से हमने अपने आप को ग्रो किया, सब कुछ ठीक था. बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैंने एजुकेशन लेनी शुरू करी
0: जी,
1: उसके साथ में मैंने ग्रेजुएशन लेवल पर जाके स्पोर्ट्स चुना, और जब मैंने वहाँ खेलना शुरू किया तो मेहनत भी बहुत थी. और मैंने ये पाया कि सबसे पहले जो मेरे कोच ने मुझे बोला कि अगर आप स्पोर्ट्स करते हो देन 1 ईयर आपको पूरा एथलेटिक्स करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाए
0: जी.
1: और 3 ईयर्स तक मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी, और उस दौरान मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला
0: जी.
1: फिर एक दिन क्या हुआ, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब हमारी प्रैक्टिस छूट चुकी थी पूरी, हम तैयारी अपनी इसकी कर रहे थे
0: जी.
1: अपनी पीजी की. देन एक दिन वॉलीबॉल खेलते हुए विदाउट वार्म अप मैंने किया, तो मुझे कमर में एक स्ट्रेन आ गया, मेरी बैक में वो बहुत ज़्यादा था
0: जी.
1: और वो इतना ज़्यादा था कि अगर मैं उठती थी तो मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़े होने के बाद अगर लेटती थी तो वो तो भी उठना मुश्किल होता था, या गाड़ी कभी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलती थी तो बहुत तेज से पेन आता था. तो मेरे एक नोन पर्सन थे, मामा जी थे मेरे, उन्होंने बोला कि तुम भुजंगासन करो तो तुम्हारा ये पेन ठीक हो जाएगा
0: जी.
1: मुझे मजाक लगा और मुझे बहुत गुस्सा भी आया उनके ऊपर.
0: अच्छा.
1: बट रिस्पेक्ट करने के लिए मैंने उस आसन को 2 दिन तक किया
0: जी.
1: अब यकीन मानिए वो दोबारा कभी वो बैक पेन नहीं हुआ.
0: वाह.
1: तब मुझे लगा कि ये तो मिराकुलस है, और फिर मैं योग की तरफ मुड़ गई. फिर मैंने वेट किया जल्दी से मेरी पीजी कंप्लीट हो और मुझे जाकर के अब योग से अपना एजुकेशन लेना है. और फिर तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसी करियर में जाना है, यहीं पर ग्रो करना है
0: जी.
1: और वहीं से मेरी योगा जर्नी स्टार्ट हुई.
0: क्या बात है, मतलब कई बार हम वो फिल्मी स्टोरी सुनते हैं ना, लोगों की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है. तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम जिस दिशा में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हमें यही चाहिए, ज़रूरी नहीं है मिल ही जाए. ऐसा ज़रूरी है कि आप निरंतर चलते रहिए अपनी यात्रा में, और कोई मोड ऐसा आए जहाँ पर आपको ऐसा मौका मिले, आपको ऐसी इंस्पिरेशन अचानक मिले, ऐसा भी होता है. हमें तो बहुत ही खूबसूरत लगी इनकी बात, और ज़िंदगी का ये जो टर्निंग पॉइंट है ये भी बहुत अच्छा लगा. और ये जो गाना है अगला, ये भी इन्हीं की पसंद का आपके रेडियो सेट पर आ रहा है. और ये जो गाना है ये सक्सेस स्टोरी, ताकत और एम्पावरमेंट को प्रदर्शित करता है. मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है. आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं अगले सवालों के साथ.

बिल्कुल, और इसी पटाखा गुड्डी की तरह ही आगे बढ़ते रहना, शानदार तरीके से चमकते रहना, और इस बड़े विशाल आसमान में अपनी एक अलग सी जगह बनाना, मतलब एक तारे की तरह हमेशा टिमटिमाते रहना, ये जो सफलता है ना, ये कुछ ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने रास्ते के कांटों को खुद हटाते हैं और खुद आगे बढ़ते जाते हैं और खुद डिसाइड करते हैं कि क्या चाहिए मुझे। डॉक्टर मालविका जो हमारे साथ हैं, एक प्रख्यात योग विशेषज्ञ हैं, योग प्रशिक्षक हैं, खेल प्रशासक हैं, लेखिका हैं, योग प्रचारक हैं, वो योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल के संस्थापक और मुख्य संपादक भी हैं। उनकी योग यात्रा श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं और योगाचार्य बी के

0: अयंगर के सिद्धांतों से प्रेरित है। उन्होंने शारीरिक शिक्षा में, योग विज्ञान में विशेष अध्ययन किया है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से योग विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है और अष्टांग योग, हठ योग, अयंगर योग, विन्यास योग, राजयोग, प्राणायाम, योग चिकित्सा और साउंड हीलिंग मेडिटेशन जैसी विभिन्न योग पद्धतियों में विशेषता रखती हैं। और ये भी सच बात है कि विश्व भर में इस समय योग की आवश्यकता और महत्व को समझा जा रहा है। तो डॉक्टर मालविका, आपसे आपकी इन अचीवमेंट्स के साथ जो अगला क्वेश्चन है वो ये, हमारे सारे श्रोता बड़ी ही मन से सुन रहे हैं आपको, खासकर महिला श्रोताएं हमारी, जीवन में वो कौन सा क्षण था, कौन सा मोमेंट था ऐसा जब आपने तय कर लिया कि आपका लक्ष्य करियर जो बनना है वो क्या बनेगा? जैसे आपने इससे पहले बताया कि योग ही मुझे अब करना है, लेकिन करियर में एक जो कमाने का जरिया हो, पहचान का जरिया हो, क्या योग को अपना पेशा बनाने का निर्णय आपने उसी मोमेंट पे शुरू कर दिया था जो आपने पिछली बार बताया था इससे पहले, या फिर सफ़र आपको धीरे धीरे उस योग पेशे को बनाने के लिए आगे लेता चला गया? मतलब एक पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हुआ कि
1: जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी तब उसके बाद जैसे मुझे इंजरी हुई और फिर मैं योगा एजुकेशन के लिए हरिद्वार गई
0: जी,
1: तो उस समय पे क्या था कि ना पैसे घर पे नॉर्मल लाइक इनफ तो नहीं मिलते थे बहुत
0: जी।
1: तो यहीं पर मुझे स्टडी करते ही करते नवयुग रेडियंस स्कूल है वहाँ से एक ऑफ़र आया जॉब के लिए
0: जी।
1: तो मुझे उनकी 2 ब्रांचेस के लिए 17,500 रुपीज़ पे करते थे
0: जी,
1: एंड 12 क्लासेस होती थी, एक ब्रांच में 12 क्लासेस होती थी दूसरी ब्रांच में, एंड इट इज़ अराउंड 45 मिनट्स।
0: ओके,
1: तो मुझे लगता था यार ये जो टीचर्स हैं बाकी के पूरे पूरे दिन घंटों काम करते हैं, तब इनको जाके 20-25-30,000 रुपये पूरे महीने के मिलते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और मैं तो 1 घंटे चली आती हूँ, मुझे इतने पैसे मिलते हैं। तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि इस करियर में पैसे तो बहुत अच्छे हैं
0: जी,
1: अपनी इंपॉर्टेंस पता चली। फिर स्टडी करते करते ही फिर मेरा रुझान हुआ इसकी थेरेपीज़ की तरफ
0: जी।
1: फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि थेरेपीज़ में जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं या बाकी लोग हैं उस पर जो काम कर रहे हैं वो भी एक अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। फिर जब मैंने अयंगर स्टाइल ऑफ योगा जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, देन आई कम टू नो कि एक करियर भी अच्छे से बना सकते हैं और उसके साथ में ही मैं बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी दे सकती हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ। लाइक मेरा एक फ्रेंड था, उसको बैक में पेन था, स्लिप डिस्क हो चुकी थी
0: जी,
1: तो उसकी मैंने उस समय हेल्प करी विद सम आसनास।
0: अच्छा,
1: जो कि 8 महीने से बेड पे था,
0: 8 महीने से
1: उसको पेन बहुत था या सारी चीज़ें थी। तो मैंने फील किया कि जब 8 महीने से उसको प्रॉब्लम हो रही है और इतने दिनों तक वो जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, उसके पैसे नहीं आ रहे हैं या चीज़ें, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो लोगों को हो रही है वो इस वजह से हो रही थी बिकॉज ऑफ पोस्टल प्रॉब्लम
0: जी।
1: तो वो रिकवर हुई, देन आई अंडरस्टैंड कि यहाँ से हम एक ये भी कर सकते हैं, एक मैं सोशल वर्क भी कर सकती हूँ
0: जी
1: और अपने पैसे भी अच्छे अर्न कर सकती हूँ। फिर करियर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आता गया, देन मैंने थेरेपी सीखी, फिर मैं योगासना स्पोर्ट्स प्लेयर बनी और जब मैंने वहाँ से शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि बच्चों को भी मुझे खिलाना है। और आज देखिए इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है पूरे विश्व में
0: जी,
1: और 2020 में मुझे मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था, तो उसके पहले फिर उसके बाद कोरोना आ चुका था तो मैं वहाँ नहीं गई थी
0: जी,
1: एज अ गेस्ट लेक्चर उन्होंने मुझे बुलाया था। तो ये भी समझ में आ गया था कि ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन आपको योग से मिल सकती है
0: जी।
1: तो फिर एक प्रेरणा मुझे मिलती गई और मैं धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ती गई और आज भी मैं सीख रही हूँ
0: जी। तो मतलब आपकी जो ये यात्रा हुई वो इस योग को पेशा बनाने की अचानक से नहीं शुरू हुई, जबकि धीरे धीरे आप उसके साथ चलती गई उस टर्निंग पॉइंट के बाद, और एक समय आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि हाँ इसमें जो है आगे चला जा सकता है। यह खूबसूरत सा गाना आपकी रेडियो सेट पर, मालविका जी से ऐसे ही बातचीत चलती जाएगी। आप गाने सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए और ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। मैं आपकी दोस्त चंद्रकला हूँ आपके साथ।

0: 12:31 हो गए हैं और आज हमारे साथ डॉक्टर मालविका वाजपेयी हैं और एक इंस्पायरिंग शख्सियत आपके लिए स्टूडियो में आई हैं और योग को उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बनाया बल्कि ज़िंदगी जीने का माध्यम बनाया है, अपना करियर बनाया है और आज वो एक सफल मुकाम पर हैं। तो अगर उनके बारे में आगे बात की जाए तो डॉक्टर मालविका ने विशेष आवश्यकता वाले यानी कि स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी योग के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने पैरा योगासन के विकास के लिए योगासन स्पोर्ट्स के आर्टिफिशियल के प्रशिक्षण प्रदान किया है और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को योगासन का प्रशिक्षण दिया है, खेल जीवन और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया है। योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल के माध्यम से डॉक्टर मालविका ने अब तक 3,00,000 से अधिक लोगों को योग से जोड़ लिया है और योग के क्षेत्र में अनेक सफल विश्व कीर्तिमानों का आयोजन और स्थापना कर चुकी हैं। और डॉक्टर मालविका के प्रयासों से देश विदेश में योग को जनजीवन तक और आम लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, नई पहचान मिल रही है और आज ये किरदार हमारे सामने है, हमारे स्टूडियो में है और आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए है। तो अगला क्वेश्चन डॉक्टर मालविका ये है कि आप योग के फील्ड में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, लोग आपको बहुत जानते हैं, इस सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको किन त्यागों का, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? शुरुआती दिनों में ऐसे कौन से एक्सपीरियंस रहे आपके, ऐसी घटनाएँ कौन सी रहीं कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में घट कर आकर आपको एहसास दिलाया, महसूस करवाया कि आप जहाँ जा रहे हैं ना वही सही रास्ता है?
1: जब मैंने योगासन स्टार्ट किया था दैट टाइम, तो ठीक है, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे योगा में एजुकेशन करनी है तो भी उनको एक्सेप्ट नहीं था जी, वो मुझे बहुत मनाना पड़ा जी। ऊपर से फिर बाहर जाके तो वो दूसरा एक और चैलेंज था
0: जी।
1: हाँ, वहाँ पे उनकी एक्सेप्टेंस मिली, थोड़ा सा टाइम बाद मिली लेकिन मिल गई। वो हमेशा, क्योंकि बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे फादर
0: जी।
1: और दूसरी बात ये हुई कि जब मैंने योगा शुरू किया तब वहाँ पर ये था कि एज अ फीमेल जब मैं सोसाइटी में आई हूँ सिखाने या करने तो वहाँ पे ठीक था, एवरीथिंग वॉज ओके, कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ तक तो सब सही चला। लेकिन जब से मैंने योगासन स्पोर्ट्स की तरफ मूव किया
0: जी,
1: उस टाइम पे क्वेश्चन अराइज होने शुरू हो गए कि ये तो खेल नहीं है, यहाँ तो टाइम ख़राब कर रहे हो
0: जी,
1: और अब आप अपने टाइम को सोशल जो सर्विसेज में लगा रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स थे
0: जी,
1: उन्होंने, जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो आपके बहुत यार होते हैं, लाइक ठीक है, दोस्त होते हैं, तो मेरे दो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया उस समय और मेरे अच्छे के लिए किया, उनको लगता था इसमें कोई फ्यूचर और कोई इसमें स्कोप नहीं है, कि यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, यू शुड गेट प्रिपेयर फॉर द PCS IAS, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम टाइम ख़राब कर रहे हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। मैं उनसे बिल्कुल अलग चली गई। अब वहाँ पे जो चीज़ें आई तो मैंने सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ा, और मैंने फ्रेंड्स को इसलिए छोड़ा, ऐसा नहीं कि मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने इसलिए उनको छोड़ा क्योंकि जब मैं उनसे बात करती थी वो हमेशा डिमोटिवेट करते थे, मैंने ऐसा फील किया, और हमेशा हमें सही डिसीजन लेने चाहिए
0: जी।
1: आज भी वो दोनों दोस्त मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, बातें हमारी होती हैं।
0: अच्छा, वही मैं सोच रही थी, सॉरी बीच में रोक रही हूँ, ये कि आपने उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया कि अब वापस ले ले लिया?
1: छोड़ दिया है मैंने, छोड़ दिया का मतलब अब वो मेरे दोस्त तो हैं।
0: अच्छा।
1: बट क्योंकि जब योग में आप आते हो ना आप डिटैच हो जाते हो।
0: अच्छा।
1: अटैचमेंट से आप कम हो जाते हो, तो
0: अच्छा,
1: आज
0: मतलब
1: भी जब हम मिलते हैं
0: में है।
1: हाँ, कांटेक्ट में, आज भी जब मिलते हैं तो बहुत जोर से हम गले मिलते हैं
0: जी,
1: बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक कहते लगाव थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि उनकी तरफ से मेरे लिए गुस्सा है, सारी चीज़ें हैं, आज वो भी देखते तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो छोड़ना ज़रूरी था कि अगर मैं उनको पकड़ के बैठती, उनका ये था कि रात को अगर 12 बजे कॉल करें तो सारे दोस्त कॉल पे आएंगे 12-1 बजे
0: जी।
1: तो जो युवा पीढ़ी है ना हमारी, कहीं ना कहीं पर टाइम भी वेस्ट करती है, मुझे लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सुबह मुझे उठ के जल्दी अपनी चीज़ों में लगना है और काम करना है। फिर मैंने ये कंपेयर शुरू किया कि फ्रेंडशिप में मेरे जो 3-4 घंटे जा रहे हैं
0: जी,
1: वो अगर मैं अपने काम को दे दूंगी तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर मैं वो नहीं देती तो मैं अपनी चीज़ों में बहुत स्लो होती। और मैंने उनको बता दिया कि देखो मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी आपका, ऐसी ऐसी बात है, अब मैं अपने काम कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ
0: जी।
1: ताने मारने शुरू कर दिए कि नहीं तू तो ऐसे करती है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। देखिए, दोस्त रहेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, जो आपके असली दोस्त हैं वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे
0: जी।
1: देन उसके बाद जो सोसाइटी में ये चीज़ मिली कि हमें बाकी लोगों ने बोलना शुरू किया, बाकी स्पोर्ट्स ने मुझे, कि ये कोई खेल नहीं है। 2019 में ये

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: दौर भी आया कि जब योगासन स्पोर्ट्स को मान्यता मिली,
1: जी
0: और वो बहुत ही बड़ी जीत थी हम सभी के लिए। नेशनल गेम्स में लखनऊ से मैं उत्तर प्रदेश की तीनों टाइम 36, 37, 38 नेशनल गेम्स में मैं कोच रही हूँ।
1: जी
0: पहली बार हम बिना मेडल के लौटे, दूसरी
1: जी
0: बार हम गोल्ड मेडल लेके लौटे, और तीसरी बार में हमने ट्रॉफी ली और जो सर्वाधिक मेडल लिए
1: जी
0: किसी भी खेल में यूपी के लिए,
1: जी
0: तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और आज लखनऊ से ही अभी रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट रूप किशोर यादव, एट द एज ऑफ 47, BSF का जवान है वो,
1: जी
0: उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीता है।
1: क्या बात है, इससे बड़ी और अचीवमेंट क्या हो सकती है।
0: यस,
1: जी
0: तो जब हमने स्टार्ट किया था 2017-18 से, वो पेड़ वहाँ से लगा था,
1: जी
0: और अब ये लगता है कि अब ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आगे जा रही। एशियन गेम्स में बच्चे मेडल लेकर आए,
1: जी
0: यूपी में 4 स्टूडेंट हैं हमारे जो आगे जा करके इंडिया के लिए मेडल जीत कर लाए हैं, और इवन लोगों को जॉब भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है, तो एक जो सपना देखा था वो साकार हुआ।
1: बिल्कुल, ये मेरा आपसे एक सवाल भी मैंने रखा था अपने पास कि योग और ये जो जिस क्षेत्र में आपने इतनी उपलब्धियां पाई हैं और आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आपके स्टूडेंट्स इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो मतलब उसके समय मैंने ये क्वेश्चन था कि हर सफल महिला की यात्रा में चुनौतियां होती हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष रहे होंगे और जो आपने पाया उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ा होगा, आगे बढ़ना होगा, इस तरीके के पर बहुत सारे सवाल हमारे क्लियर हो गए हैं वैसे तो, जो मैं पूछने वाली थी। और भी हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, और भी बातें हैं आपसे जो करनी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लें, छोटा सा एक खूबसूरत सा गाना सुने और उसको सुनने के बाद तुरंत वापस आते हैं और उन सवालों को फिर आपसे पूछते हैं।

0: 12:41 हो गए हैं और प्रोग्राम स्वयं सिद्धा शत्रुपा का सेगमेंट है, उसमें आज डॉक्टर मालविका हमारे साथ हैं और जिस मुकाम तक ये पहुंची है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। योग के क्षेत्र में मालविका जी के कार्यों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही पहचान मिली है। योग और खेलों के क्षेत्र में उनका जो उत्कृष्ट योगदान है उसके लिए उन्हें राज्यपाल सम्मान, योग रत्न सम्मान, योग एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल गौरव अवार्ड, मानद डॉक्टरेट सहित कई सारे नेशनल इंटरनेशनल सम्मान मिले हैं। डॉक्टर मालविका वाजपेयी का जीवन योग, स्वास्थ्य, अनुशासन, खेल, उत्कृष्टता और सेवा का प्रेरणादायी एग्जाम्पल है। निरंतर योग को जन जन तक पहुंचाने, योगासन स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वस्थ, जागरूक, सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से वो काम कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर मालविका, आपसे सवाल है कि जब आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, जब आपको बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित किया गया तो आपके मन में क्या विचार आए उस समय? आपको अपनी मेहनत याद आई या आपने क्या सोचा? और इसके अलावा आपकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है वैसे तो, लेकिन आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी उपलब्धि है इनमें से जो आपके दिल के सबसे करीब है, जिसे आप सबसे खास मानती हैं?
1: देखिए, जब आपके काम को पहचान मिलती है तो एक सुकून मिलता है कि हाँ, जो मैंने किया है उसको एक पहचान मिली है। लेकिन हाँ, उसके साथ ही ये था कि यहाँ पे रुकना नहीं है और इसके आगे बहुत जाना है। जैसे मान लीजिए आपकी मैंने बुक बनाई, उसके साथ में उसके जो उसके अचीवमेंट्स हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में जब आए तो वो मेरे लिए बड़ा दिन था। बट उसके साथ ये लगा कि नहीं, अभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आना है, अभी कहीं और आना है। या आप सोचिए कि मैं समटाइम्स वर्ल्ड का मैप देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी शायद मैं इधर भी ग्रो कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ। तो मेंटल लेवल पे ये क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ या ऑटोमेटिकली होता है कि अभी शायद मैं अभी कहीं नहीं पहुँची हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते और इच्छा ये नहीं है कि वो मुझे जाने। हाँ, इच्छा ये है कि मैं जो काम करूँ वो ग्लोबली कनेक्ट होकर के करूँ और आगे बढ़ती रहूँ और वो पहचान मिलती रहे
0: जी।
1: वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसके लिए होकर बैठ जाऊँगी तो फिर वो हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: और जब मेरे स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन मिलती है या अवार्ड्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो आंखों में आंसू आते हैं, उसकी प्रैक्टिस याद आती है, उसकी मेहनत याद आती है। और कभी कभी तो ये लगता है कि वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा होता है
0: जी,
1: कि बच्चा है नेशनल मेडल में मेडल लेकर आया, तो ये समझ में आता है कि भाई इतने सारे स्टेट से फाइट करके मेडल लेकर आना बहुत मुश्किल है। आप योग में ये मानिए कि इंटरनेशनल मेडल उठाना उतना मुश्किल नहीं है जितना नेशनल मेडल उठाना है
0: जी।
1: नेशनल हमारे यहाँ योग क्योंकि हमारे यहाँ जन्मा है
0: जी,
1: और बाकी स्टेट्स में ही लड़ना ना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके आगे तो आप फिर अपनी जर्नी इजी कर लोगे
0: जी,
1: मगर इंटरनेशनली से ज़्यादा मुश्किल आपका नेशनल है।
0: अच्छा।
1: और वहाँ पर जब आप पहुँचते हो और बच्चे की मेहनत देखते हो और डेडिकेशन, अनुशासन अपने आप आ जाता है, क्योंकि आप वही चीज़ हम अपने स्टूडेंट से ही पास ऑन कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, वो योग कर रहा है
0: जी। तो मतलब मुझे ये समझ आया कि जितनी भी अचीवमेंट्स आपकी हैं उनमें सबसे ज़्यादा गर्व आपको तब होता है जब आपके सिखाए हुए स्टूडेंट्स कहीं पर मेडल ले रहे होते हैं। सबसे
1: yes.
0: भावुक करने वाला, सबसे प्राउड वाला मोमेंट वो होता है। बिल्कुल, बेशक ही होगा ही, और इतनी खुशी की बात और इतनी ज़रूरी बात, इतना गर्व का पल होगा, बेशक होगा, हम सब समझ सकते हैं। ये वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग है और सोचने वाली बात यह है कि आपने अपने से दोगुनी उम्र के लोगों को भी उस मुकाम तक पहुंचते देखा है, आपके स्टूडेंट्स रहे हैं। और इसी बात के साथ और इसी खुशी में खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर मालविका जी की ही पसंद का हम पहुंचाते हैं। आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं और कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी है, जो हमारी भी यात्रा में, हमारी भी जर्नी में हमें समझ आएंगी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: 12:49 हो गए हैं और इतने इंटरेस्टिंग सेगमेंट में और इतने खूबसूरत इंटरव्यू में समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा, समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन मालविका जी से ये पूछते हैं कि मालविका जी, योग और योगासन स्पोर्ट्स में क्या अंतर है? और उसके साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि खेलों में जो चोट लग जाती है बॉडी में, कई बार बहुत डैमेज भी होता है, टिश्यू डैमेज होता है, उससे उबरने में योग कितना इफेक्टिव है?
1: देखिए, जब आप योग की बात करते हैं तो योग इज़ अ ह्यूज वर्ड, आपस अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। भारतीय षट दर्शन का एक अंग है और योग वेद और उपनिषदों से आया है और बहुत ही प्रिमिटिव है। सो योग में हमारा एक तो आपका जो है पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अगर आप सोचेंगे ये 8 अंग है, तो इसमें जो हमारा डेली रूटीन से लेकर के ऋतुचर्या दिनचर्या और सांस लेने का तरीका, साथ में हमारा जो कंट्रोल हमारे ओवर द सेंसरी होता है और धारणा समाधि मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनफैक्ट इसी के साथ में हमारा आयुर्वेद भी आता है, क्योंकि योग और आयुर्वेदा हमेशा साथ साथ चलते हैं
0: जी।
1: तो ये तो हमारा हो गया योग, लेकिन जब हम योग आसन खेल की बात करते हैं तो हम इसमें योग का जो तीसरा अंग है जो है आसन, उसको लेकर चलते हैं। पतंजलि महर्षि जी के अनुसार स्थिरम सुखम आसनम, उन्होंने बताई है इसकी डेफिनेशन, कि जब किसी स्थिति में या मुद्रा में जब हम सुखपूर्वक बैठते हैं तो ये आसन है। अब आप इसी से डिफाइन कर लीजिए कि योगासन में

0: जो क्लिष्ट मुद्राएं होती हैं या जो टफ आसन होते हैं या ऐसे आसन जो हमारी बॉडी के अलाइनमेंट को बहुत अच्छे से शार्पली उसको दिखाएं। तो योग हमेशा मैक्सिमम आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट बेस होता है, जिसमें कि एक आसन जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारी जो स्टेबिलिटी है
1: जी
0: वो कैसी है और उसका अलाइनमेंट कैसा है और उस आसन को लगाने के बाद में हम स्थिरम सुखम है या नहीं है, कि हमारी स्थिति स्थिर है और सुखपूर्वक है कि नहीं। ये तो यही चीज़ योगासन स्पोर्ट्स को के लिए मैटर करती है। योगासन स्पोर्ट्स में 5 टाइप ऑफ इवेंट होते हैं, जिसमें कि आपका ट्रेडिशनल इवेंट, जो जिस ट्रेडिशनल इवेंट में जो बेसिकली हम जो आसन लगाते हैं जिन आसनों को हम दैनिक रूप में देखते हैं वो आसन है। इसी आसनों को करते हुए आर्टिस्टिक सिंगल, रिदमिक पेयर, आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप, तो इसमें ये नृत्य के साथ में जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नृत्य हैं लाइक भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी,
1: कथक है,
0: कथक, तो इनके साथ में हम कैसे सामंजस्य, सपोज करिए कि आपने एक आसन लगाया और आप डांस करते हुए आए और फिर आपने दूसरा आसन अटेम्प्ट किया,
1: जी
0: आपका माइंड और बॉडी तो म्यूजिक में है
1: जी,
0: बट आपको स्थिर और सुख भी सुखम भी होना है और उसके साथ तुरंत इंस्टेंटली आपको मुद्रा चेंज करनी है, उस मुद्रा को 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार यूट्यूब पे आर्टिस्टिक योगा ज़रूर सर्च करना
1: जी,
0: तो आपको इसका मतलब पता चलेगा। और इसी तरीके से हमारा योगासन स्पोर्ट्स है और योगासन स्पोर्ट्स करने के लिए भी पहले आपको योग से ही शुरू करना पड़ेगा, और जिसका पहला जो हमारा सूत्र है अति योग अनुशासनम,
1: जी
0: वहीं से।
1: दूसरा जो आप से ये था कि खेलों में जो चोटें लग जाती हैं उसकी रिकवरी में योगा हेल्प करता है और कितना इफेक्टिव होता है?
0: खेलों में जो हमें चोटें लगती हैं बेसिकली उसमें स्प्रेन, स्ट्रेन और मल्टी लिगामेंट टियर और फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा होते हैं, तो उनकी रिकवरी करने में, रिहैप करने में हेल्प करता है और रिहैप थोड़ा सा जल्दी करेगा तुलना में बाकी चीज़ों के। वैसे तो राइस थेरेपी और सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर हम बात करेंगे खेल की तो सबसे पहले तो योग हमें चोट लगने से ही बचाएगा। जो खिलाड़ी योग कर रहा है उसको इजीली चोटें नहीं लगेंगी और उसी के साथ में अगर आपको चोटें लग चुकी हैं तो उनको रिकवरी में, सपोज करिए जैसे मुझे ही जो इंजरी आई थी वो इट्स अ काइंड ऑफ ऑल्सो आपकी बैक में प्रॉब्लम थी बट वो स्पोर्ट्स इंजरी का ही पार्ट था, जिसमें कि हम आमतौर पे देखते हैं कि कोई कई खिलाड़ी फील्ड पे खेल रहे हैं उन्हें स्ट्रेच आ गया, स्ट्रेन आ गया, तो उनको हम थोड़ा जल्दी रिकवर कर सकते हैं और पूरी तरीके से गायब कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 4 महीने बाद वो पेन फिर से आएगा।
1: अच्छा,
0: तो योगा में जो है वो स्टेबल है क्योंकि हमने बॉडी के पूरे मैकेनिज्म पे काम किया। एक मैकेनिज्म जो आपकी बॉडी का है जिसको हम बायो मैकेनिक्स कहते हैं
1: जी,
0: उसके थ्रू जब उस पर काम होता है तो एक वर्क आपका एक डीप लेवल पे होता है और आपके टिश्यूज़ को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है, मसल की रिकवरी जल्दी करता है। और योग के साथ में जब प्राणायाम किया जाता है तो प्राणायाम हमें मानसिक तौर पे भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ अभी एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं लगातार कि आप इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं और आज हमारे प्रोग्राम में आकर कई महिला श्रोताओं को आप इंस्पायर कर रही हैं, कई सारे महिला पुरुष जो भी हमें सुन रहे हैं श्रोता इस समय, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा खास महिलाओं के लिए है, तो क्वेश्चन आपसे लिए आपसे ये है कि आपके हिसाब से किसी भी महिला की वास्तविक पावर क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है? और दूसरी उसी के साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि आज की युवा महिलाएं, बेटियां आपका संदेश सुनना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहेंगे उनको जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं लेकिन परिस्थितियों से घबराती हैं।
0: एक महिला अपने आप में दुर्गा का रूप होती है
1: जी,
0: उसमें 9 देवियों के जो गुण हैं वो विद्यमान हैं
1: जी,
0: जिसमें कि उसके अंदर ममता भी है, त्याग भी है, सेवा सत्कार भी है और प्रेम भी है, साथ में आत्मविश्वास भी है। और वो समय आने पे वो पार्वती जी का भी रूप ले सकती है और ज़रूरत पड़ने पे काली भी बन सकती है
1: जी।
0: अगर मैं बोलूँ तो उस लिहाज से जिस तरह से मैंने आपको ग्रो किया, अपने आप को ग्रो किया, तो उसमें जो एक मेन रोल था वो मेरे आत्मविश्वास का था और एक ही फील्ड को चुनकर उसके साथ लग जाने का था। हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए, हमारी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए और हमें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और हमें काम वो करना चाहिए जिस काम में हम कॉन्फिडेंट हैं या हमें ऐसा लगता है कि इसमें हम अपने करियर को भी बना सकेंगे। साथ ही अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आपको सशक्त करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में बहुत ही सशक्त हैं। और मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप सभी अपने आप को पहचान

0: और सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर, क्योंकि जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं जो इग्नोर करती हैं, वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिए, क्योंकि बेसिकली मैंने देखा है जो यंग गर्ल्स हैं उनमें पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो भी रीज़न है उनकी लाइफस्टाइल। और
1: इस बारे में भी आप बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय कम है, इस बारे में भी आप हमें बता दीजिए कि जो यंग गर्ल्स हैं इनमें जो पीसीओडी पीसीओएस है, ये सब योगा से क्योरेबल है क्या? क्या लड़कियाँ योग की तरफ लौटें तो क्या उनको फ़ायदा इससे होगा?

0: है, इस बारे में भी आप हमें बता दीजिए कि जो यंग गर्ल्स हैं इनमें जो PCOD PCOS है, ये सब योगा से क्योरेबल है क्या? क्या लड़कियां योग की तरफ लौटें तो क्या उनको फ़ायदा इससे होगा?
1: देखिए, जो ह्यूमन बॉडी बनी है ना, तो बेसिकली पहले लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, आफ्टर 20 शादी हो जाती है 20 तक, बट अभी क्या है, गर्ल्स 30 के बाद शादी करते हैं
0: जी।
1: तो उसमें क्या है, जो हमारे एक वॉम्ब है ना, वो एक बच्चे को कैरी करने के लिए बना है। अब वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, सो दैट आपकी मसल्स एट द टाइम धीरे धीरे धीरे धीरे लूज़ होती जाती हैं, और जब हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो फिर ख़राब होने लगता है। और सिस्टम हमारा क्यों बिगड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है। पहले महिलाएं बाहर काम नहीं करती थी, आज की महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, और उसकी वजह से जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हुआ है, और बॉडी ने बॉडी क्लॉक चेंज करी है। तो अगर उसको मेंटेन करेंगे तो PCOD PCOS जैसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और योग अभ्यास में अगर हम सेतुबंधासन, भद्रासन, गोमुखासन इनका अभ्यास करेंगे तो आपको इससे जल्दी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। साथ ही आपकी जितनी भी कमर खोलने वाली एक्सरसाइजेस हैं, जो कि आपने पेल्विक एरिया को जो कि स्ट्रेच करे, साथ में चक्की चालासन, तो ये प्रॉब्लम 100% ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म भी हुई है।
0: और क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, और देखिए 12 से 1 बजने को है, और हमने इतनी अच्छी चर्चा की, इतनी हेल्दी चर्चा थी, आपकी इंस्पायरिंग जर्नी लोगों के साथ साझा की, अंत में आपसे यही कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए, और हमारे लाखों श्रोताओं ने आपको सुना है किसी न किसी माध्यम से, किसी ने इंटरनेट पे सुना होगा आपको ऑनलाइन, और किसी ने ऐप के माध्यम से, किसी ने FM या रेडियो पर सुना होगा। तो इसी के साथ आपको धन्यवाद कहते हैं, और बस जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप देते जाइए डॉक्टर मालविका।
1: हम सभी अपने हेल्थ का ध्यान रखें
0: जी।
1: इसके साथ ही अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी आँखों का खास ख्याल रखें। गर्मी बहुत हो चुकी है, पानी प्रॉपर पीते रहें, और रात में सोने से पहले थोड़ा सा एक गीला कपड़ा आप ठंडे पानी में रख के उसको अपनी आँखों के ऊपर रखिए फॉर 2 मिनट्स। तो इससे आपकी आँखों का टेम्परेचर रिलीज होगा, जिससे सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मालविका हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमारे श्रोताओं से मिलने के लिए। फिर आपसे कभी और बात होगी, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे FM परिवार की तरफ से आपके लिए हैं कि आप यूं ही निरंतर प्रगति करते रहें, और ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित भी करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहें।
1: धन्यवाद चंद्रकला जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर मालविका वाजपेयी, और अभी तक आप जो ये पूरी वार्ता सुन रहे थे, ये हमने आज स्वयं सिद्धा में खास डॉक्टर मालविका को बुलाया था, इनसे बातचीत थी, और इसके बाद न्यूज़ ब्रेक के उस पार अगला प्रोग्राम होठों पे तेरी बात शुरू होगा। तब तक आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 456 करोड़ रुपए की लागत से 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैंने 19 जून को अयोध्या दौरे पर कहा, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, अयोध्या हम सबके आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करें, श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखें। मैंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही होगी। एसआईटी रिपोर्ट आ चुकी है और कार्यवाही भी आरंभ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के नवनियुक्त पदाधिकारियों की पहली परिचय बैठक आज दोपहर 3 बजे लखनऊ में आयोजित कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और राज्य संगठन महामंत्री की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। ये बैठक कल 25 जून 2026 को भाजपा की बड़ी संगठनात्मक बदलाव के बाद हो रही है। पार्टी ने 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्रियों, 19 सचिवों की नियुक्ति की है और सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला है। भाजपा सूत्रों के अनुसार ये बैठक नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियों से अवगत कराने और आगामी रणनीति पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फर्रुखाबाद जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत

अंतर्गत जिला आजीविका मिशन क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, फैमिली आईडी लक्ष्य की 100% पूर्ति, लखपति दीदी पहल को बढ़ावा देने, विकास खंड स्तर पर प्रेरणा कैंटीन की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार का अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:03 हुए हैं और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ, और ये है धड़कन लखनऊ की. बिल्कुल धड़कन लखनऊ की है, और प्रोग्राम का जो समय है वो हो चुका है, और वो जो प्रोग्राम है वो आपका अपना प्रोग्राम है होठों पे तेरी बात. और आज आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ. बस आज प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में एक छोटा सा सिंपल सा मुद्दा है जिसके बारे में आप अपने मेल से लिख भेज सकते हैं, और वो छोटा सा मुद्दा ये है कि जिंदगी की भागदौड़ में आप सुकून के पल किसको मानते हैं. मतलब आपकी नज़र में आज की भागती दौड़ती जिंदगी में फुर्सत का पल, आपके लिए सबसे सुकून भरा पल कौन सा होता है. हम भी जानना चाहते हैं, जैसे कई लोगों के पास फुर्सत और सुकून के पल बिल्कुल नहीं होते लेकिन वो निकालते हैं, बनाते हैं. जैसे मैं भी आपसे अपने सुकून के जो पल हैं वो साझा करूंगी, लेकिन मेरे लिए कोई भी सुकून के पल नहीं है. सुकून का पल मुझे लगता है कि बनाना पड़ता है. और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके मेल्स के साथ पढ़ी जाएंगी, की जाएंगी, और गाने होंगे खूबसूरत. फिर से मैं आपको बताऊं, आज प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में आपको सिर्फ इतना इस बारे में लिख भेजना है कि आपकी इस भागती दौड़ती जिंदगी में, लक्ष्यों से भरी जिंदगी में, खूबसूरत सुकून भरा पल कौन सा होता है, या अपना सुकून आप कैसे ढूंढते हैं. लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी fmakashwani@gmail.com पर. हमें है आपकी मेल्स का इंतजार, और तब तक के लिए आपके रेडियो सेट पर यह खूबसूरत सा गाना.

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया के बरहज और रुद्रपुर असेंबली हलकों में 456 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की और अवामी बहबूद की ये मुहिम हर ख़ानदान की ज़िंदगी में नई उम्मीदों, नए मौक़े और नई खुशहाली की बुनियाद बनेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ज़रई रोड मैप, ज़राअत के शोबे में मरकज़ी और रियासती मुख्तलिफ़ स्कीमों के निफाज और देही तरक्की के प्रोग्रामों का मुश्तरक जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने मरबूत काश्तकारी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों को मेयारी पौधे फराहम करने के लिए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर कायम किया जाएगा।
1: प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो दो साल, तीन साल या चार साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज

0: और अच्छी रोपड़ सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
1: मरकजी वजीर ने कहा कि एक खुशहाल उत्तर प्रदेश तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने चने, दाल और सरसों की सरकारी खरीदारी की मुद्दत में तौसी की भी मंजूरी दी। वजीर आला ने इसके लिए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे रियासत के ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनी पैदावार कम अज कम इमदादी कीमत पर फरोख्त करने का मौका मिलेगा और उनके मफादात के बेहतर तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। मीटिंग के दौरान अलनीनो के असरात से निमटने के हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 149 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत के हर ज़िले की तरक्की हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने असलाफ की विरासत को महफूज रखा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
1: स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर अयोध्या में राम मंदिर के चंदा फंड में मुबैना गबन के मामले में 18 नामजद और दीगर नामालूम मुलजमीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के रुकन कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। मुलजमीन के खिलाफ गबन, धोखाधही और मुजरमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदा फंड के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम सामने आने के बाद रियासती हुकूमत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को SIT तश्कील दी थी। SIT मामले की तफसीली जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल नए मुकर्रर करदा रियासती ओहदेदारों की फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में 8 जनरल सेक्रेटरीज, 19 नायब सदूर और 19 वज़रा शामिल हैं। मजीद बरां मगरबी, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के इलाके कई सुदूर के साथ साथ मुख्तलिफ महाजों के सुदूर का भी ऐलान किया गया है। BJP के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने तमाम तबकात और इलाकों को जहन में रखते हुए ओहदेदारों का तकर्रुर किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम 9 तैनात ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। आज 10 मुहर्रमुल हराम है, इस दिन को आशूरा भी कहा जाता है। इसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को अपने साथियों समेत मैदान करबला में शहीद किया गया था। आज रियासत भर में लोग मुख्तलिफ करबला में ताज़िये लेकर उनकी तदफीन कर रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दीगर मजाहब के लोग भी ताज़ियेदारी करते हैं। ताज़ियों को आज लखनऊ के मुख्तलिफ करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तालकटोरा करबला, महानगर करबला, ऐशबाग, तेलीबाग और आलमबाग के मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक की ये पाबंदी ताजिए के जुलूस के अख्तिताम तक नाफिज रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

1:20 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, और एक जो मेल हमारे पास आया है वो है रामराज जी का, और रामराज जी ने हमें मेल किया है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजभानु, रामचरण शंकर और मनीष, नीरज, मधु, इन सब का नाम लिखा है, और इन्होंने लिखा है, सबसे पहले हमारी तरफ से चंद्रकला बिटिया को प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद, और हम दिन भर काम में बिजी रहते हैं फिर भी सब काम छोड़कर रेडियो ज़रूर सुनते हैं। जब आप रेडियो आपका कोई भी शो सुन लेते हैं तो दिल का सुकून मिल जाता है। रामराज जी के सुकून की बात

वीडियो है और बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी, और बहुत बहुत मोहब्बत से आप हमें मेल करते हैं, और साथ में आपने लिखा है कि रेडियो का जब भी आप कोई प्रोग्राम सुनते हैं एफएम का तो दिल को सुकून मिलता है, तो बस सुकून मिलना चाहिए जिसमें मिलता है वो बात है, और दिन भर आप काम करते हैं और काम करते करते रेडियो सुनने में सुकून मिलता है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। महेंद्र देपन जी का मेल आया है हमें, इन्होंने लिखा है, मैं महेंद्र देपन गांव रूण जिला नागौर राजस्थान से न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर लाइव प्रोग्राम होठों पे तेरी बात सुन रहा हूँ। आज के सवाल पर मेरा सीधा सा जवाब है, दिन भर की कड़ी मेहनत और भाग दौड़ के बाद शाम और दोपहर को सुकून से एफएम रेनबो ऑन करके बैठना, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में 90s के पुराने गाने सुनना और पास बैठे बच्चों और परिवारों की सलामती का साथ, बस यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। और साथ में आपने बहुत ही खूबसूरत बादलों से भरी हुई तस्वीर भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हम तक अपनी मेल पहुँचाने के लिए, और ऐसे ही आपकी मेल्स का सिलसिला चलता रहेगा, खूबसूरत मेल्स आपकी हम तक आते रहेंगे। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि प्रोग्राम होठों पे तेरी बात चल रहा है और आपने ट्यून इन किया है 100.7 एफएम रेनबो। प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में आज हमने जो मुद्दा लिया है वो ये है कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में, स्ट्रेस भरी जिंदगी में, आपका सुकून भरा पल कौन सा होता है, अपना सुकून आप कैसे खोजते हैं। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर है, आप इसे सुनिए, बस तुरंत वापस आते हैं आपकी मेल्स के साथ।

विनीत कुमार जी का मेल हमारे पास आया है, रूमी गौतम ग्राम अर्थापुर। अच्छा, रूमी गौतम आपने लिखा है नाम विनीत कुमार के हैंडल से। रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आया है। होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम करने वाली बहन जी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भैया, हमारे यहाँ तो बहुत तेज धूप हो रही है, तो बच्चों को बहुत गर्मी लग रही है, और इन्होंने लिखा हाथ वाला पंखा चला रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे गाने बजा रही हैं, धन्यवाद आपका। तो रूमी गौतम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपको हमारे बजाए हुए गाने पसंद आ रहे हैं, बस आप ही के लिए तो हम गाने प्ले करते हैं। और दूसरी बात ये कि हाथ वाला पंखा चलाकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मैं यहाँ से देखकर, मतलब मन की आंखों से देखकर इमेजिन कर पा रही हूँ किसी पेड़ की छांव में कितना खूबसूरत होगा वो नज़ारा। गर्मी है लेकिन फिर भी एक सुकून भरे पल में जो ठंडक होती है मन के अंदर, वो अलग सी होती है। बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। सतीश अनेजा जी ने मेल किया है और आपने हमें अच्छा लिखा है, नमस्कार चंद्रकला जी, खूबसूरत प्रोग्राम में आपका अभिनंदन, काफ़ी दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी, अच्छा लगा। और इन्होंने लिखा है, जब हम दिनचर्या के कामों से निपटकर शाम को मंथन करते हैं कि आज हमने कौन कौन से अच्छे काम किए, कितनी मोहब्बतें बांटी और बटोरी, तो यकीनन बहुत सुकून मिलता है। और अब हमारी प्यारी बहन चंद्रकला हमारा संदेश पढ़ेगी, तब भी चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आएगी, और ये मुस्कुराने वाली जो ज़िंदगी है, ये मुस्कान हमारी ज़िंदगी सार्थक करती है, परमात्मा भी अपना अनुग्रह बरसाता है। अनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ आप करते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी मेल से। आपने लिखा है कि दिन भर कितनी मोहब्बतें बांटी और बटोरी, तो ये मुझे बड़ा पसंद आया कि मतलब इंसानियत यही है, हम ज़िंदगी में जितने मुकाम हासिल कर लें, लेकिन अगर हमने किसी का दुख दर्द नहीं देखा, उसे खुशी नहीं दी, उसे एक प्यारी सी मुस्कान नहीं दी, मोहब्बत नहीं दी, तो फिर क्या सार्थकता इस जीवन की। बहुत अच्छा आप काम करते हैं, ईश्वर आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ, जो आप चाहें वो मिले आपको। राधे श्याम जी की मेल है हमारे पास कासगंज से। इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून चंद्रकला जी, कैसे हैं? मैं कितना भी क्यों ना बिजी हूँ, लेकिन मॉर्निंग में एक घंटे वॉक करता हूँ, फुर्सत में FM रेनबो ट्यून करके इंजॉय करता हूँ। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स। राधे श्याम जी, आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, और मुझे लगता है मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, मुझे भी सुबह उठकर वॉक पर जाना चाहिए एक घंटा, मैं ऐसा सोच रही हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात है, इवन जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं, कि स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, हमारे सारी संपत्ति से ज़्यादा ज़रूरी हमारा स्वास्थ्य है, इसको मानते हैं, इसको जानते हैं, और एक घंटे वॉक करना, अपने आप को देना सुकून में, बहुत ही खूबसूरत बात है। मुझे तो बड़ी पसंद आई आपकी ये बात, और खूब स्वस्थ रहें आप। और अगली जो मेल हम पढ़ेंगे, उसके लिए हम जो है ना, वो एक खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, और ये खूबसूरत सा गाना हम आप तक पहुँचाएँगे, बस इसको सुनिए, तुरंत वापस आते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

1:43 हो गए हैं। अगली मेल हमारे पास आई है रामेश्वर जी की और इन्होंने लिखा है, सादर प्रणाम, हम प्रोग्राम बारंबार सुन रहे हैं, आप जब कार्यक्रम में आती हैं तो 4 चांद लगा देती हैं। ऐसा क्यों, मतलब मेरे आते ही 4 चांद क्यों लगते हैं? हम आपकी जितनी तारीफ करें उतना कम है, आप लाजवाब प्रस्तुति। अच्छा, मतलब आपके पास शब्द भी नहीं है, आपने इतनी तारीफ लिखी है। लेकिन रामेश्वर जी, हमने तो आपसे पूछा था मुद्दे के बारे में ये कि आपका सुकून भरा पल कौन सा होता है, वो भी हमें लिख भेजिए। पर आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत आपको अच्छा लगा प्रोग्राम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी रावत जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून चंद्रकला मैम, इन्होंने लिखा है, कैसी हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, 12 बजे से लगातार सुन रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया रोशनी, इसका मतलब आप 12 बजे से स्वयं सिद्धा भी हमारा सुन रही होंगी। और इन्होंने लिखा है, रोशनी रावत ग्राम बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव चंडीगढ़ में ये रहती है, वहाँ से प्रोग्राम सुन रही हैं। उन्होंने लिखा है, जब बात सुकून की होती है तब मैं और मेरी अनकही बातें करते हैं, साथ में FM रेनबो 100.7 धड़कन लखनऊ की होते हैं, भागती सी जिंदगी थके हुए हम, 2 पल की बात कर ले खुद से हम, सुकून कहीं और नहीं हमारे आसपास ही होता है, हमारे अंदर होता है, बस नज़रिया हमारा कैसा है ये डिपेंड करता है। रोशनी जी, ये आपने बड़ी बात लिखी है, सुकून हमारे अंदर होता है, हम इधर उधर बाकी चीज़ों में उसको तलाश करते रहते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। अरुण कुमार जी का मेल हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा है, चंद्रकला जी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, इन्होंने लिखा, आज इतने मधुर गीत सुनाकर आपने दोपहर में गर्मी का असर कम कर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। रही बात फुर्सत की, तो ये पल निकलने पड़ते हैं, अच्छा ये पल निकालने पड़ते हैं, और मैं ये पल निकाल ही लेता हूँ। सुबह शाम वर्कआउट ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के मज़े भी तो लेने हैं, फिट रहना है। क्या बात है अरुण जी, बहुत बहुत सैल्यूट है आपको। सुबह और शाम दोनों समय वर्कआउट के लिए आप समय निकालते हैं, अपनी शरीर और अपनी सेहत को समय देते हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका जीवन बहुत ही सुखमयी होगा भाई आने वाले समय में।

1:55 मिनट हो गए हैं और समय का पता ही नहीं चला। सुधाकर जाधव जी का मेल हमारे पास आया है। काम करते करते हुए सुनते हैं आपका प्रोग्राम और आपकी प्रोग्राम में मैसेज सब शामिल होता है तो हम सब खेत में काम करते हुए खुश होते हैं। प्रोग्राम सुनते सुनते थकान दूर हो जाती है। सुधाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली मेल जो है वो प्रवीण जी की हमारे पास है। सुकून भरा पल सुबह का होता है जब सूर्योदय होता है, मौसम सुहावना होता है तब भी। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। शैलेश कुमार जी का मेल है टाइगर पूर्णिमा रूपपुर चंदेला से, गुड आफ्टरनून लिखा है। और इन्होंने लिखा है सुकून के पल तो हर रोज़ रहते हैं जब मैं घर पर अकेले रहती हूँ, शांतिपूर्वक एफएम रेनबो सुनती हूँ। मेरी फेवरेट एंकर आती है जब मेरे ज़्यादा सुकून के पल रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि आवाज़ इनको हमारी बहुत अच्छी लगती है। आपसे शिकायत भी है कि हॉटमेल कार्यक्रम में आपने कभी सॉन्ग सुनाया नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप शिकायत ठीक है, जायज़ है आपकी शिकायत, हो सकता है मिस हो गया हो कभी। और इन्होंने लिखा है कि इन्हें 26 साल हो गए हैं एफएम सुनते। और इन्होंने लिखा है अगली जो मेल है वो है

मुग्नेश कुमार राज जी की, इन्होंने लिखा है, सुकून भरे पल वो हैं जब चारों तरफ शांति का माहौल हो, कोई वाद विवाद ना हो, मन शांत रहे, दिल खुश रहे और अपनों के साथ बैठकर चैन की सांस ले सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोनू सेठ जी ने लिखा है, फुर्सत या खाली समय जीवन को संतुलित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यस्त दिनचर्या में फुर्सत के पल मानसिक शांति आत्मचिंतन का अवसर देते हैं। 2 घंटे रोज क्रिकेट खेलता हूँ और इतना मेरे लिए बहुत है, बाकी मोबाइल पर समय देना बंद कर दिया है। और उत्तम कुमार भगत जी की मेल है, इन्होंने अच्छा लगता है लिखा है प्रोग्राम सुनना। और ऐसे ही ढेर सारी मेल्स हमारे पास हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम की मेल्स भी हम तक आनी शुरू हो चुकी हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अगले प्रोग्राम की तरफ को चला जाए और न्यूज़ ब्रेक के उस पार आपका अपना प्रोग्राम हॉटमेल शुरू होगा। न्यूज़ ब्रेक के बाद हॉटमेल शुरू होगा, तब तक ये खूबसूरत सा गाना भी आप सुनिए, ट्यून इन करके रखिए। और इसी के साथ प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को यहीं करते हैं वाइंड अप।

का अपना प्रोग्राम हॉटमेल शुरू होगा। न्यूज ब्रेक के बाद हॉटमेल शुरू होगा, तब तक ये खूबसूरत सा गाना भी आप सुनिए, ट्यून इन करके रखिए, और इसी के साथ प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को यहीं करते हैं वाइंड अप।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को एक महान साहित्यकार बताया, जिनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। इस वर्ष के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र के प्रेरणा को सबसे चिरस्थायी स्रोतों में से एक बना दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इसके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन अधिनियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होगी। नए शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी

0: करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

2:04 हो गए हैं और प्रोग्राम हॉट मेल शुरू हो चुका है और मेल्स का जो सिलसिला है, जो झड़ी है मेल्स की, वो शुरू हो चुकी है और ढेर सारे मेल्स हमारे पास आ चुके हैं और इन ढेर सारे मेल्स तक पहुंचने के लिए हमें प्रीवियस पेज जो है वो खोलना पड़ेगा क्योंकि ढेर सारी मतलब कई सारी मेल्स हमारे पास आ गई हैं। और जो पहली मेल हमारे पास है वो DK के हैंडल से आई है और इन्होंने लिखा है उत्तम नगर दिल्ली से, अच्छा होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म और गीत इन्होंने गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। दातार सिंह जी की मेल हमारे पास है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। दिग्दर्शन गौड़ जी की मेल हमारे पास है मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया, दर्शन, इन सब का नाम शामिल किया है। सिद्धार्थ गोंडाने जी का मेल है हमारे पास कार्यक्रम प्रसारक महोदय, इन्होंने नमस्कार लिखा है, गाने की फरमाइश की है, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से लिखा है, महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय और प्रसिद्धि हीरामन सिद्धि का नाम लिखा है। ताज मोहम्मद का जो मेल है हमारे पास है, ताज मोहम्मद जी का मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है हमें आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, आदरणीय प्रसारक जी हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए, इन्होंने ये लिखा है। अगली जो मेल हमारे पास है संजय मार्कंडे जी की, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश, अच्छा ममता बमारकंडे, अच्छा माफ़ कीजिएगा बमारकंडे, आपने कुछ गड़बड़ी की है शायद लिखने में, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू, इन सब का नाम शामिल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील खेरा जी का मेल हमारे पास है और मुल्लापुर दाखा से आपने मेल किया है, राजेश, बिट्टू, संजीव, गोटाना जैन का नाम शामिल किया है। भैया मोनू सेठ का मेल आया है, इस इन्होंने लिखा है अगर इस प्रोग्राम में आज गाना नहीं प्ले किया तो इस प्रोग्राम में मेल नहीं करूँगा, आपकी इच्छा मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और ढेर सारी मेल्स हमारे पास हैं, इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश और गाने की फरमाइश के साथ खालिसपुर ऊंच गांव भेल अमेठी से इन्होंने लिखा है और इन्होंने लिखा है गांव के त्यौहार मतलब हरियाली प्रकृति, बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी हमें मेल करने के लिए, आपकी फरमाइश हमने देख ली है। राजकुमार डूडी जी का मेल हमारे पास है ग्राम फ्रांसी हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी और पुष्पेंद्र जी का नाम शामिल है और कोई भी गीत लिखने के लिए इन्होंने लिखा है और गाने की फरमाइश की है साथ में। शाहरुन नूर अंसारी जी का मेल हमारे पास है

और शाहरुख नूर अंसारी जी ने लिखा है, ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से, शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम, डीजे प्रधान, इन सब का नाम शामिल किया है। अनिल वर्मा का मेल हमारे पास है और गाने की फरमाइश के साथ सदर बाजार कुरावली से मेल किया है। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार, सोनम वर्मा का नाम शामिल किया है। तनुजा देवांगन का मेल हमारे पास है, पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से मेल किया है। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लाखनलाल, सावित्री बाई, इन सब का नाम शामिल किया है। और अगली जो मेल है वो हितेंद्र दास जी की है, हितेंद्र जी की, और गाने की फरमाइश के साथ आपने आसाम से मेल किया है। हितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और आपकी पसंद का ये जो गाना है, आपकी फरमाइश का जो गाना है, आपकी रेडियो सेट पर है, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं आपकी फरमाइशों का सिलसिला, मेल्स का सिलसिला लेकर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: दो बजकर के 14 मिनट हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल, और FM हॉटमेल प्रोग्राम में आपके जो मेल्स हैं वो ढेर सारे चलते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। और अगली जो मेल हमारे पास है वो है अकरम हुसैन प्रिंस की, और अकरम हुसैन प्रिंस जी ने हमें मेल की है। कहाँ से आपने हमें लिखी है? कलेर बिहार से मेल की है। ओ, सीतामढ़ी से भी आपने कुछ लोगों के नाम शामिल किए हैं। अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता, पूनम, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और जो अगली मेल हमारे पास है, अगली मेल मतलब बबलेश पवार जी की मेल है, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, और गाने की फरमाइश के साथ आपने पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से मेल किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। सतीश अनेजा जी का मेल आया है और इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी, चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन के सभी गुलाब आज आपके लिए स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश अनेजा जी, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, और चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा जी और बिमला अनेजा का नाम शामिल किया है। मोनू सेठ, आपका तो गाना पढ़ा जा चुका है। और मेहर अरोड़ा जी का मेल हमारे पास है, पदमपुर ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से मेल आया है। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, इन सब का नाम शामिल किया है। सुधाकर जाधव जी का मेल हमारे पास है, कालेगांव जाफराबाद से, और सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सरवद, सानवी, हर्षिता, इन सब का नाम शामिल किया है। हीरामन शेंडे जी का मेल हमारे पास है, और गाने की फरमाइश के साथ आपने अमरावती से मेल किया है, किशोर नगर से। और अगली जो मेल हमारे पास है वो है हरजिंदर छिंदा जी की मेल हमारे पास है, रिस्पेक्टेड होस्ट जी, प्यार भरा आदाब इन्होंने लिखा है, और साथ में लिखा है, आपका हर पल खुशियों से भरा हो, किसी भी सदाबहार गीत में शामिल करें, लिखा है गांव नथाना पंजाब से आपने मेल किया है। हरजिंदर छिंदा, जसवीर जैसी, सीता और गीता का नाम शामिल किया है। और नितेश देवांगन जी का मेल हमारे पास है, और नितेश जी ने हमें लिखा है पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूनाराम, कृष्णा देवांगन का नाम शामिल किया है। और अगली मेल जो हमारे पास है वह सुनील पाठक जी की है, इन्होंने लिखा है अनारकली बाजार जगराओं से पंजाब से मेल किया है। सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गाविया और सुच्चा सिंह का नाम शामिल किया है। अगली मेल जो हमारे पास है वो है ओम बगड़िया जी की। ओम

बगड़िया जी ने मेल हमें किया है, बहुत पुरानी आपकी मेल है, आपने पुरानी मेल जो है वो टैग करके भेजी है, आप नया लिख कर भेजें। अगली जो मेल हमारे पास है वो कमलकांत गुप्ता जी की है, इन्होंने लिखा है किसी भी गीत में शामिल करें, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम और मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, आदिति, राधे, दीपक, इन सब का नाम शामिल किया है। नबी हसन जी का मेल हमारे पास है, गाने की फरमाइश की है और मारहरा दरवाज़ा एटा से आपने मेल किया है। नवी हसन, शहनाज, नवेद, सुहेल, रसीद, अनम, यशफ, इन सब का नाम शामिल किया है। तुलसी मस्कीन जी का मेल हमारे पास है, होस्ट मैडम को नमस्ते, किसी भी सॉन्ग में संदेश ले लें, इन्होंने लिखा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता, केशु रिधान, इन सब का नाम शामिल किया है। और बोधराज खोरवाल जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने उत्तम नगर दिल्ली से लिखा है, बोधराज, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश जी का मेल, अच्छा नाम शामिल किया है। इसके अलावा शाहजी बोडके जी का मेल हमारे पास है, शाहजी बोडके जी ने हमें हिंगोली महाराष्ट्र से मेल किया है, शाहजी बोडके, श्रीमती नंदा, हनुमान बोडके, उत्तम जमदाड़े जी का नाम शामिल किया है। और टीडी मल्होत्रा जी की मेल हमारे पास है, सेक्टर 67 चंडीगढ़ से आपने मेल किया है, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का नाम शामिल किया है। और इन्हीं बातों के साथ जो अगली मेल हमारे पास है वो किसकी है ये देख लिया जाए। अगली मेल हमारे पास वकील अहमद जी की है, इन्होंने लिखा है आवाज़ अच्छी लगती है, हॉटमेल अच्छा लगता है कोई, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, सीतापुर से साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी, पिंकी, महक का नाम शामिल किया है।

2:24 हो गए हैं, प्रोग्राम हॉटमेल चल रहा है, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ, आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। हॉटमेल में आपकी मेल्स आते हैं और मेल्स के जरिए आप हमें फरमाइशें करते हैं गानों की, और आपकी जो मेल्स हैं वो इतनी सारी आ चुकी हैं कि पढ़ते पढ़ते हम लगभग आधा घंटा कर चुके हैं पूरा। रोजी डेकेस्ट्रो का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून, और जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने लिखा है जॉन रोजी पर्ल विलिस डेकेस्ट्रो का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। और अगली जो मेल हमारे पास है, कमलकांत गुप्ता जी आपकी मेल शामिल हो चुकी है, अशोक कुमार जी की मेल हमारे पास है, अशोक राज, और इन्होंने लिखा है रायपुर ओदारा मितौली लखीमपुर खीरी से, और आवाज़ की तारीफ के साथ साथ आपने गाने की फरमाइश की है, और कुछ नाम इन्होंने लिखे हैं अजय राज, प्रदीप राज, आशीष राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश वर्मा जी का मेल हमारे पास है और गाने की फरमाइश के साथ आपने रिंगनी छत्तीसगढ़ से मेल की है, और इसी तरीके से ढेर सारे मेल्स हमारे पास हैं। और जो अगली मेल हमारे पास है वो आपने नाम अच्छा कैथल हरियाणा से लिखा है जयवी ठाकुर अनिल शर्मा, और इन्होंने लिखा है बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। कमल पांडे जी का मेल हमारे पास है, कमल शंकर पांडे ग्राम महोलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से, इन्होंने कार्यक्रम पसंद आ रहा है लिखा है, गाने की फरमाइश की है, और रमाकांत और सुरेश जायसवाल ओम प्रकाश इन सब का नाम शामिल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। अगला एक मेल हमारे पास है और वो मेल अगली हमारे पास है साई गायकवाड़ जी की, इन्होंने लिखा है प्यार भरा नमस्कार, हॉटमेल बहुत बढ़िया चल रहा है, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है और साथ में ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। और जो अगली मेल हमारे पास है, अगली मेल वो है आलोक कुमार खरे जी की, आलोक कुमार खरे जी, अरुण खरे, संजय खरे, अनिल खरे, अरुण खरे, मंसूर नगर शाहबाद पेहानी हरदोई से मेल किया है आपने, गाने की फरमाइश की है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेल करने के लिए। बिट्टू गगनेजा की मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है हमें जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा और विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा का नाम शामिल किया है।

अगली मेल जो हमारे पास है वो है कीर्तनपुरी गोस्वामी जी की, और इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, और ढेर सारे नाम शामिल किए हैं। अगली मेल हमारे पास है, अगली जो मेल हमारे पास है वो है पंकज शर्मा जी की, इन्होंने लिखा है फिल्म और गाने की फरमाइश की है, मॉडल टाउन करनाल से आपने मेल हमें की है और बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। दीपेश वर्मा जी की मेल हमारे पास है गाने की फरमाइश के साथ, ग्राम पीपर लोड छत्तीसगढ़ सरगांव से आपने मेल किया है। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश, इन सब का नाम शामिल किया है। सुदर्शन शाह जी का मेल हमारे पास है, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से आपका मेल आया है, गाने की फरमाइश के साथ आपने सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन, राजेंद्र जी शाह, इन सब का नाम शामिल किया है। धर्मेंद्र जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है धर्मेंद्र कुमार प्रजापति, शुभम कुमार, महक, मीना एंड प्रजापति परिवार, ग्राम मिर्कापुर पोस्ट दरियाबाद जिला बाराबंकी से मेल किया है, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, बहुत खूबसूरत गाना। और इसके बाद जो अगली मेल हमारे पास है गगनदीप ठांडी की है, इन्होंने हमें मेल जो किया है वो किया है टोरोवाल नवा शहर पंजाब से, और गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका ठांडी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वमिका वाणी, इन सब का नाम शामिल किया है। इसके बाद यासीन अंजान जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने पुरखलूस आदाब कबूल करें लिखा है, आपको भी आदाब, और इन्होंने लिखा है गिरिडीह झारखंड से, यासीन ओके मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत सादिया, इनका नाम शामिल किया है। सत्येंद्र चंसौलिया जी, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का मेल हमारे पास आया है, ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, इन सब का नाम शामिल किया है, किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। और अगला जो मेल हमारे पास है वो है पिंकू सोनी टिकैत नगर से, और गाने की फरमाइश की है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश वर्मा जी का मेल हमारे पास है, और राजेश जी ने लिखा अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाएं, गोल्डन रेडियो श्रोता संगराज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। मसरूर हसन जी का मेल हमारे पास आया है, आदाब लिखा है, आपको भी आदाब, और गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, इन सब का नाम शामिल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइशों के लिए। आपकी फरमाइशों को कि पूरा होने का ये जो दौर है ये चलता रहेगा, लेकिन ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आने को है बेताब, आपकी ही फरमाइश थी।

2:35 हो गए हैं और इस समय प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और आपने ट्यून किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। अगली जो मेल है हमारे पास वो है स्वर्ण सिंह जी की, और स्वर्ण सिंह जी ने हमें जो मेल किया है वो किया है गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से। स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, इन सब का नाम शामिल किया है और साथ में लिखा है कोई सा भी गीत सुना दें। अगली जो मेल हमारे पास है अनिल कुमार गुहाणकर जी की, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आपने मेल किया है, गाने की फरमाइश की है अभिजीत, सरिता, प्रणीता, लाडला टुक टुक और इन सब का नाम शामिल किया है। और जो अगली मेल हमारे पास है वो है आर कुमार जी की, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती, इन सब का नाम शामिल किया है। नरेश जी की मेल हमारे पास है, नरेश जी ने लिखा है खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, कोयल, डुग्गू, इन सब का नाम शामिल किया है, गाने की फरमाइश की है। सोमदत्त का मेल हमारे पास आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, इन सब का नाम शामिल किया है। मिठल जाधव का मेल हमारे पास है, इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ ऑरेंज सिटी नागपुर से मेल किया है, विठल जाधव, अनुसुया जाधव, पवन राजे जाधव जी का नाम शामिल किया है। ओके, और जो अगली मेल हमारे पास है पंजाब रामटेके जी की मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ सिद्धि

बागेश्वर नगर यवतमाल महाराष्ट्र से पंजाब रामटेके यशोधरा रामटेके श्रव्या रामटेके का नाम शामिल किया है। महेंद्र प्रसाद मोदी जी का मेल हमारे पास है, गाने की फरमाइश की है। रामगढ़ कैंट से आपका मेल आया है, महेंद्र मोदी और ठाकुर साहेब का नाम शामिल किया है। राजकमल यादव का मेल हमारे पास है, राजकमल यादव ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी। इन्होंने मेरा हाल पूछा है, मैं बहुत अच्छी हूँ राजकमल जी, आप कैसे हैं। इन्होंने लिखा है, अच्छा, आपकी गाने की फरमाइश की है और साथ ही आपने अपनी वाइफ संगीता यादव, अंशिका, अर्चना, यूनील और इन सब का नाम शामिल किया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। अगली जो मेल हमारे पास है वो मेल है, अगली मेल हमारे पास है दिलीप कुमार जी की। और दिलीप कुमार जी हमें लिखते हैं मेल कहाँ से, दिलीप कुमार जी आप हमें लिखते हैं मेल भागलपुरा बिहार मुंदी चौक से। दिलीप कुमार सोनी कमल किशोर शाह का नाम हम इन्होंने लिखा है, शामिल किया है। अगली मेल उदय भानपाल जी की है। इन्होंने किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मेल किया है। और श्रोता उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश, दिव्यांश और बघेल परिवार का नाम लिखा है। और अगली जो मेल हमारे पास है, हीरामणि वर्मा जी की मेल शामिल हो चुकी है हमारे पहले ही। शैलेश कुमार जी की मेल हमारे पास है और शैलेश जी आपकी मेल भी शामिल हो चुकी है। फागु राम यादव जी की मेल हमारे पास है, गाने की फरमाइश की है आपने और संबलपुर कांकेर से फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का नाम शामिल किया है। कौशिक वाधवाना जी का मेल हमारे पास है और कौशिक जी ने हमें मेल किया है राजकोट गुजरात से। कौशिक, अस्मिता, मम्मी पापा, महेश वाधवाना परिवार और इन्होंने लिखा है, हेलो चंद्रकला जी, केम छो। कौशिक जी हम तो मजा माँ, आप बताइए। गुड आफ्टरनून लिखा है और गाने की फरमाइश की है। और जब आप केम छो पूछ लेते हैं तो बड़ा मज़ा आ जाता है। और अगली जो मेल हमारे पास है वो नवी हसन जी की है। और नवी हसन जी आपने, आपकी दो मेल्स और दिख रही हैं जो कि गलत बात है, आपकी मेल पढ़ी जा चुकी है। अगली मेल हमारे पास जो है वो अब्दुल गफ्फार की है और इन्होंने हमें मेल किया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक और मोहम्मद उमर राजेंद्र कटारे, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। मोहम्मद कमर का मेल हमारे पास है और प्यार भरा नमस्कार, आदावर्ज हो, आदाब आपको। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। जितेंद्र नामदेव जी का मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है, कैसी हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। और इन्होंने गीत सुनाने की फरमाइश की है। जितेंद्र, बबलू, अंजू, खनक, आरोही, नामदेव, सौम्या, इन सब का नाम शामिल किया है। दारा सिंह का मेल हमारे पास है चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। संजय डिंगिया जी का मेल हमारे पास है बागपत उत्तर प्रदेश से। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेल के लिए और आपको क्योंकि प्रोग्राम पसंद आ रहा है उस सब के लिए। ये खूबसूरत सा गाना आपकी पसंद पर, दाग द फायर से आपने रिक्वेस्ट की थी, आप ही की फरमाइश का ये गाना आपके रेडियो सेट पर।

2:44 हो गए हैं और जो अगली मेल हमारे पास है वो अगली मेल की तरफ बढ़ते हैं. और अगली मेल हमारे पास है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा की और इन्होंने हमें मेल किया है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकामण मध्य प्रदेश से मेल किया है. और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, इन सब का नाम शामिल किया है. आशीष जी का भी नाम शामिल किया है. और जो अगली मेल हमारे पास है वो आई है पवन कुमार जी की. इन्होंने लिखा है, पवन कुमार सिंहपुर सिधौली सीतापुर से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सॉन्ग बढ़िया बज रहे हैं, किसी भी सॉन्ग में शामिल करें. पवन कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन बहुत अच्छा हो. अगली जो मेल हमारे पास आई है वो मेल हमारे पास आई है रणधीर गुप्ता जी की और इन्होंने लिखा है, हमें कोई भी गाना सुना दीजिए. और आपने हमें ओखला संगम विहार दिल्ली से मेल किया है. रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, इन सब का नाम शामिल किया है. रमेश कुमार जी का मेल हमारे पास है पटेल नगर मलोट से. डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू गुड्डू, इन सब का नाम शामिल किया है. शैलेश कुमार जी, आपकी फिर से मेल हमारे पास आ गई है, दैट्स रॉन्ग. और अगली जो पीएस नाहवकर जी का मेल हमारे पास है और पीएस नाहवकर जी ने मेल किया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से. और पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर महाराष्ट्र से, सोपान ताइडे, नारायण इंगले, इन सब का नाम शामिल किया है. अगली जो मेल हमारे पास है वो है मूसा शेख जी की और इन्होंने हमें सनावद से मेल किया है और बहुत बहुत शुक्रिया, किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है. मंगल जंगल, ओहो माफ़ कीजिएगा, सॉरी थोड़ा फनी हो गया पर माफ़ कीजिएगा. मंगल जनागल जी का मेल हमारे पास है और आपने गाने की फरमाइश की है. और चक 5MD पत्रोड़ा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से मेल किया है. रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील, इन सब का नाम शामिल किया है. और जो अगली मेल हमारे पास है वो है, फिर से किसकी मेल आ गई, ये ढेर सारी रिपीटेड मेल्स तो शामिल नहीं किए जाते हैं. तो अगली मेल जो हमारे पास है वो है सत्यनारायण कुरील जी की. इन्होंने प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे लिखा है. जिस तरह से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उससे लगता है स्वस्थ होंगे. हम बिल्कुल अच्छे हैं सत्यनारायण जी. और गाने की फरमाइश की है आपने और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मेल किया है. और इसके बाद हनुमंत शिंदे जी का मेल हमारे पास है. इन्होंने लिखा है शिरटे ज़िला

हंगली महाराष्ट्र से मेल किया है हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा जी का नाम शामिल किया है, गाने की फरमाइश की है। अगली मेल जो है वो शंभू दयाल जी की है। दीदी थोड़ा सांस ले लीजिए, एक नज़र हमारी ईमेल की तरफ भी घुमाइए। शंभू दयाल जी, आपकी मेल की बारी आ गई है। गांव जाखोद राजस्थान से आपने मेल किया है। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, योगेश, दीपक कुमारी, पूजा खटक, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए हमें। और जो अगली मेल है वो है पवन कटारिया जी की, करनपुर ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से। पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया और इन सब का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। अनूप कुमार जी, अनुपम कुमार जी की मेल हमारे पास है। और हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, योर प्रोग्राम इज़ वेरी गुड एंड योर एक्सेंट इज़ वेरी गुड मैडम, वी आर द मेम्बर्स ऑफ फैमिली लिसनिंग योर प्रोग्राम मैडम, प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग दैट नेम। अच्छा, गाने की आपने फरमाइश की है और डेडिकेटेड टू सुरभि करिश्मा तेजस्विनी अविनाश। ओके, थैंक यू सो मच अनुपम जी फॉर मेलिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। और उसके बाद जो अगला मेल हमारे पास है वो है प्रकाश बोरगांवकर जी का। आपने हमें सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से मेल किया है। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, स्वीट, अंशुमन, बेबी ओवी, इन सब का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है वो अगली मेल हमारे पास कुलदीप कुमार जी की है। और कुलदीप कुमार जी ने लिखा है NTPC गेट नंबर 2 ऊंचा हार से मेल किया है। प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम कागड़ा जी का मेल है एकता कॉलोनी रोहतक से। सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा जी का मेल नाम शामिल किया है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आप ही की पसंद का ये जो गाना है इसको प्ले करते हैं। और

0: 2:53 हो गए हैं और प्रोग्राम हॉट मेल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है और ढेर सारी मेल्स अभी भी हमारे पास है, लेकिन ज़्यादातर मेल्स जो हैं वो शामिल हो चुकी हैं। शब्बीर हुसैन जी का मेल हमारे पास है, लेकिन इन्होंने पुरानी मेल हमें, अच्छा इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ सब्ज़ी मंडी बुलडाणा से मेल किया है। शब्बीर हुसैन, शहजाद, मज़ू, आयज़ा, मुदस्सिर, इन सब का नाम शामिल किया है। और दिग्दर्शन गॉड जी की मेल शामिल हो चुकी है। अंशु गुप्ता का मेल हमारे पास है। पिंकू सोनी, राजेश सोनी, ब्रह्मेश कुमार, गिरिजा गुप्ता, अरविंद शर्मा, आर्या सोनी, हंस राज, शिवनाथ, नफीस, इन सब के नाम शामिल किए हैं। और इसके अलावा जो अगली ढेर सारी मेल्स हमारे पास आई है वो रिपीटेड मेल्स हैं और ज़्यादातर मेल्स हमने शामिल कर ली हैं। बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल हमारे पास है। इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, नन्हे मुने, अवंतिका, तनुश्री गुप्ता जी का नाम शामिल किया है। और इन्हीं सारी बातों के साथ प्रोग्राम हॉटमेल को वाइंड अप करने की इजाज़त दीजिए। और ये जो फरमाइश है आखिरी आज के प्रोग्राम की, उस गाने को आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, आप इसे सुनिए। और सुनने के बाद एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक होगा और न्यूज़ ब्रेक के उस पार अपना प्रोग्राम सतरंगी दुनिया होगा शुरू। फिर फिलहाल इस समय इस प्रोग्राम यानी कि हॉटमेल को वाइंड अप करने की दीजिए इजाज़त और इसके तुरंत बाद न्यूज़ ब्रेक के उस पार मिलते हैं।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले वर्ष अगस्त में टोक्यो यात्रा के बाद हो रही है, जहां उन्होंने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। आज 10वीं मुहर्रम है। इस दिन को आशूरा के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ करबला के मैदान में शहीद हुए थे। आज लोग ताजियों को विभिन्न करबला में ले जाकर के दफन कर रहे हैं। लखनऊ में आज पुराने लखनऊ की ताल कटोरा की करबला, महानगर की करबला, ऐशबाग, तेलीबाग और आलमबाग में विभिन्न मार्गों पर यातायात डायवर्जन किया गया है। यातायात का ये प्रतिबंध ताजिया जुलूस की समाप्ति तक लागू रहेगा। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन अधिनियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। मुहर्रम के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं फरुखाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला गया। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

3:04 हो गए हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है सतरंगी दुनिया। और सतरंगी दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ होता है सतरंगी। आज भी आपके लिए है इन्फॉर्मेशन का एक कैप्सूल छोटा सा। आज कुछ खास है आज के दिन, उस बारे में आज हमने बात करनी है। और उस खास दिन के बारे में बात जो करनी है, उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए आपको ट्यून इन करके रखना होगा थोड़ी देर 100.7 FM रेनबो। थोड़ी देर क्यों, FM रेनबो आपको सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कंप्लीट एंटरटेनमेंट का डोज देता है, तो इसे ट्यून इन करके रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपने ट्यून इन किया ही है, तो एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजा जाए और इसको सुनने के बाद तुरंत वापस आया जाएगा और तुरंत बात की जाएगी कि आज क्या है खास।

और जान लेने से याद आया कि आज एक बहुत ही ज़रूरी ख़ास दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता के लिए दिन को मनाया जाता है, और वो दिन ये है जान लेने वाला दिन, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। जी, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग हर साल 20 यानी कि 26 जून को मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है लोगों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करना और नशा मुक्त समाज बनाना है। देखिए, जान लेने वाली बात तो है ही, और हर साल नशे की गिरफ्त में कई सारे युवा आते हैं, और वही युवा नशे की गिरफ्त के साथ साथ ही बड़े होते हैं और फिर अपना जीवन वो इसी तरीके से बर्बाद करते हैं। और इस दिन को मनाने की जो शुरुआत की बात करें तो आज नहीं, बहुत पहले हो गई थी, 7 दिसंबर 1987 को हो गई थी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाने का फैसला किया था। इसका जो उद्देश्य है, दुनिया भर में अवैध जो इलीगल नशीली दवाएं होती हैं उनके इस्तेमाल को रोकना, समाज में युवाओं को नशे से बचाना है। आज के दिन सरकार, पुलिस, सामाजिक संस्थाएं, कई तरह के कार्यक्रम, रैलियां, सेमिनार मनाए जाते हैं, और भारत में भी आपने सुना है कि नशा मुक्ति भारत अभियान के जरिए बहुत बड़े बड़े इस दिशा में कदम उठाए जाते हैं। और भी ज़रूरी बातें और अपडेट्स हैं, आज के दिन क्या ख़ास है और कौन से दिन आज मनाए जाते हैं, किन व्यक्तियों का जन्म हुआ, ये अभी आज इस कैप्सूल में आपको सतरंगी दुनिया के सुनने को मिलेगा। और ट्यून इन करके रखिए खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

3:21 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है सतरंग की दुनिया। आपको पता है आज किसका जन्मदिन है और क्यों ये जन्मदिन बहुत इम्पोर्टेंट है? 26 जून को वैसे तो बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्मदिन आज ही है। और आज ही के दिन 1838 में इन्होंने जन्म लिया, यानी कि 26 जून को। और क्यों हम इन्हें याद करते हैं, क्या महत्व है इनका हमारे भारतीय इतिहास में? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार भी हैं, कवि हैं, गद्यकार हैं, पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम उनकी ही रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। और रविन्द्रनाथ ठाकुर के पूर्ववर्ती बांग्ला साहित्यकारों में उनका एक बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छी जगह है उनकी। तो भाई आज के इस दिन जो है हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को ट्रिब्यूट करते हैं और उनको भी हम सैल्यूट करते हैं उनकी रचनाओं के लिए, उनके योगदान के लिए भारत में।

इसके अलावा आज जो है ना वो अर्जुन कपूर का भी बर्थडे है. अर्जुन कपूर जी हाँ, बोनी कपूर के सुपुत्र जो है उनके, उनका भी आज जन्मदिन है. तो बर्थडे तो आज खास हैं कई लोगों के, लेकिन जो खास बर्थडे है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का. उन्हीं को हम ट्रिब्यूट करते हैं, लेकिन साथ में एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रखना है और एंटरटेनमेंट की करनी है बात. तो इसलिए रणबीर, ओ माय गॉड, रणबीर की कहाँ से याद आ गई. वैसे मैंने सोचा था कि रणबीर का एक गाना बजाया जाएगा, लेकिन अर्जुन कपूर का जो गाना है, इन पे फिल्माया हुआ जो ये गाना है, इसको प्ले करना बनता है.

3:29 हो गए हैं और प्रोग्राम सतरंगी दुनिया का ये जो सेगमेंट है यहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद अभी ठीक 3:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का एक एपिसोड, और उसके लिए आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो और ठीक 4 बजे तक इस एपिसोड को आप सुनेंगे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में

0: टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजो गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजो की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजो की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Happy birthday to you, Stephen.
4: How are you?
5: Happy birthday, Stephen. Thank you.
6: Congratulations.
5: Thomas. Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh,

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन

0: इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
1: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। '85 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
2: उन्होंने कुल 29

0: रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजन

0: यह जानकारी दी गई है।
1: चलो बच्चों आ जाओ, पहेली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहेली।
2: हाँ।
1: गुड़िया गौरव सब तैयार?
3: हाँ जी बाजी, हम तैयार
1: हैं। वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
1: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
2: सूरज।
1: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
3: बहुत आसान पूछते हो।
1: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
3: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
1: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
2: हाँ।
1: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
3: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
1: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
5: वो तारा होता है।
1: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
6: वो रात और दिन भी बनाता है।
1: एकदम सही एकदम सही।
7: वो हमें धूप भी देता है।
1: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
1: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
3: विटामिन डी।
1: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, बहुत अच्छे शाबाश, बहुत अच्छे।
7: और अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
1: हाँ बिल्कुल,
3: पेड़ों को खाना भी देता है।
1: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
3: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ। जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
3: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
3: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है
7: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कई
3: दूर होता है इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
3: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ
7: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
1: ओह ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
3: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
7: नहीं
1: है। सूरज आग का गोला लेकिन
2: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है।
2: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
2: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
2: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।

0: ये दिन रात बनाता है।
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।

0: चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी, आना।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
1: वो भी
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: और से
0: डर जाती
1: हूँ तो कोई मिला के
0: 70
1: हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, शाम के 4 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 468 करोड़ रुपए की लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 19 जून को अयोध्या दौरे पर कहा था कि अयोध्या हम सबकी आस्था का प्रतीक है। अयोध्या पर आपेक्ष मत करो, श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। श्री योगी ने कहा कि मैंने कहा था कि SIT की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। SIT की रिपोर्ट आ चुकी है और कार्रवाई भी आरंभ हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। ये कार्रवाई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के संबंधी धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। अम्बेडकर नगर में एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार अहिरौली थाना क्षेत्र के तिवारीपुर मोड़ के पास DCM और मोटरसाइकिल की टक्कर से ये हादसा हुआ। मृतक अयोध्या जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है रते आशिके जगा,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों नमस्कार, शाम के 4:04 हुए। वैसे शाम का माहौल लग तो नहीं रहा, बहुत तेज धूप है, पर है तो शाम ही। आपका दोस्त विनय लेकर हाजिर है यूथ वेव। जी हाँ, युवा सोच, युवा सपने और युवा संभावनाओं का कार्यक्रम है ये। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्षेत्र की जो न केवल समाज के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि यंगस्टर्स के लिए बड़े सारे रोजगार और करियर के बहुत सारे अवसर देने वाला है। और आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ और हाइजीन के क्षेत्र में कैसे यंगस्टर के लिए करियर मिले। फिलहाल मोहब्बतें लुटाने आ रहे हैं कौन? अभिजीत सावंत।

0: और अभिजीत सावंत का ये बेहतरीन गाना आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। आज विनय आपके साथ है और आप जानते हैं कि इस गाने इसमें बड़ा भाव जुड़ा हुआ है, बड़ी फीलिंग जुड़ी हुई है। किसमें कह रहा है ना, मोहब्बत लिटाऊंगा और आपको भूल नहीं पाऊंगा। हम भी आपको भूल नहीं सकते हैं। और आज देखिए इतनी कड़ी धूप में भी हम आपके लिए आए हैं और यूथ वेव प्रोग्राम चल रहा है। आप जानते हैं कि पिछले कई सारे सालों में जो हेल्थ और हाइजीन को लेकर ना बहुत बड़ा चेंज आया है। आज लोग केवल बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उसको किस तरह ट्रीटमेंट किया जाए बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग और यही कारण है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र यानी हेल्थ एंड हाइजीन का जो एरिया है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे यंगस्टर्स के लिए इसमें बहुत सारे रोज़गार के नए नए अवसर खुल गए हैं। और वो जो नए नए अवसर हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल एक और बहुत ही बेहतरीन सिंगर हुआ करते थे और अब थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गाना गाया है जिसमें आपको डांस करना ही पड़ेगा और वो ये है
1: अपनी ISP.com।
0: यह है कुणाल गांजावाला।

तो कुणाल गांजावाला की ये बेहतरीन आवाज है, एनर्जेटिक आवाज में आप ये गाना सुन रहे थे, और फिलहाल विनय की आवाज में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ वेव। और दोस्तों, एक समय था जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर का मतलब केवल डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट बनना ही रह गया था, लेकिन आज इस एरिया में क्षेत्र में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ कम्युनिकेटर, न्यूट्रिनिस्ट, डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर, क्या हो गया मुझे, फिजियोथेरेपिस्ट और हेल्थ डेटा एनालिस्ट, जैसे बहुत सारे अवसर हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने बायोलॉजी लिया और बस डॉक्टर, और अब वैसे नर्सिंग का भी जो है ना, वह क्रेज बढ़ रहा है, बीएससी नर्सिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, बहुत सालों से चली आ रही हैं, लेकिन अब ये जो नए नए मैंने सेक्टर्स बताए, इनमें बहुत ही ज़्यादा अवसर हैं। तो थोड़ा सोचिए, बायोलॉजी के बाद आप ये सब ले सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप थोड़ी देर में रोजगार समाचार सुनेंगे, फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, सुनते रहिए।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.niifti.india.com। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रधान निजी सचिव के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना चाहता है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। नियम, शर्तों, योग्यता, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट www.ncm.nic.in। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए मास्टर गजेटेड पीजीटी पदों की संख्या एक है, वांछनीय योग्यता है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में अध्यापन का 3 वर्ष का पूर्व अनुभव, एक पद स्कूल काउंसलर असिस्टेंट मास्टर का है जिसके लिए उम्मीदवार को होना चाहिए मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में दक्षता, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर न्यूनतम सहभागिता खेलों में भागीदारी और कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान भी उम्मीदवार को होना चाहिए। आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान की वेबसाइट और ईमेल कर सकते हैं इस पते पर principal@gmail.com। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1 और सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2। इन भर्तियों के लिए विभाग, विशेषज्ञताएं और पदों की संख्या की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। विभाग और विशेषज्ञताएं इस प्रकार हैं: सिविल इंजीनियरिंग, संरचनात्मक इंजीनियरिंग, भू तकनीकी इंजीनियरिंग और परिवहन इंजीनियरिंग। यांत्रिक इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और स्वचालन, उपकरणन और नियंत्रण तथा मैकाट्रॉनिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। विद्युत इंजीनियरिंग में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI तथा संचार और संकेत प्रसंस्करण। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में VLSI परीक्षण, वास्तुकला और चिप डिजाइन। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विज्ञान।

0: विज्ञापन और बिग डेटा, प्रणालियां और वास्तुकला, वित्तीय गणित तथा क्रिप्टोग्राफी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंग्रेजी भाषा शिक्षण, विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अध्ययन में मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त और संचालन तथा लॉजिस्टिक्स प्रबंधन. विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 20 जून 2026 से 26 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं recruitment.nits.ac.in. आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं. आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही. कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ वेव, 4:31 हुए हैं, विनय आपके साथ है और अदनान सामी की ये बेहतरीन आवाज फिलहाल आपके लिए।

की अदनान समी की आवाज़ कानों में घुल सी जाती है और ये गाना तो ऑल टाइम फेवरेट है। और वैसे फिलहाल हम यूथ वेव प्रोग्राम सुन रहे हैं और आज हम हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर में कैसे करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं उस पर बात कर रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने बताया था कि बड़े सारे नए ऑप्शन हैं और हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते उपयोग ने भी बहुत सारे नए अवसर पैदा कर दिए हैं, जैसे कि टेली मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स और हेल्थ ऐप्स के बहुत ज़्यादा बढ़ते यूज़ के कारण भी यंगस्टर्स की जो इस सेक्टर में मांग बढ़ती ही जा रही है। और दोस्तों, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता यानी कि हाइजीन का जो सेक्टर भी रोज़गार की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। आज सरकारी और बड़े सारे प्राइवेट संस्थाएं ऐसी हैं जो सैनिटेशन ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, वाटर एंड सैनिटेशन एक्सपर्ट और एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर, ऐसे सेक्टर और ऐसे पदों पर भी रोज़गार दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नए नए ऑप्शन आ नहीं रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बस हाँ थोड़ा सा समझने की बात है। और फिलहाल ये गाना समझिए, बहुत कुछ कह रहा है। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

आपके घर कोई चोर नहीं आया होगा, पूरा हमें भरोसा है। लेकिन गाने की जरा मीनिंग समझिए, बड़ी सारी डीप मीनिंग है, थोड़ा समझिए और समझ के हमें बताइएगा हमारी मेल आईडी पर। और आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो पर यूथ वेव। और आप जानते हैं कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हम हेल्थ एंड हाइजीन पर बात करते हैं। और दोस्तों आज का जो युवा है ना, यंगस्टर है, वो फिटनेस और वेलनेस के प्रति पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, हम सभी जानते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हर ओर योगा सेंटर खुल रहे हैं, जिम खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसकी ओर भाग रहे हैं। और यही कारण है कि फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत तेज़ी से रोज़गार के अवसर मिलते जा रहे हैं। जैसे मैंने जिम की बात की, जिम ट्रेनर, योगा प्रशिक्षक, वेलनेस कोच और स्पोर्ट्स न्यूट्रिनिस्ट जैसे बहुत सारे पेशे ऐसे हैं जो यंगस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं और वो उसमें अच्छा करियर भी बना रहे हैं। और हाँ, अगर किसी यंगस्टर को स्वास्थ्य और खेल दोनों में रुचि है तो वो इस एरिया में जा सकता है और बहुत ही बेहतर करियर भी बना सकता है। आप जानते हैं हर स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं हेल्थ के लोग हैं ही जो ख्याल रखते हैं। और एक और बेहतरीन ट्रैक आ रहा है आप सभी के लिए 100.7 एफएम रेनबो पर, जो है बहुत ही सुरीली आवाज़ फाल्गुनी पाठक जी की। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

और अपने समय का एक और फेवरेट और सुपरहिट गाना आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, और प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मीडिया और कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स के लिए भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। आज स्वास्थ्य संबंधी सही और बहुत ही विश्वसनीय जानकारी लोगों तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है, और ऐसे में हेल्थ जर्नलिस्ट, हेल्थ कंटेंट राइटर, हेल्थ कम्युनिकेशन और डिजिटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य विषयों पर शोध आधारित रिपोर्टिंग और जन जागरूकता कार्यक्रमों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुत सारे सरकारी योजनाएं भी स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े सारे युवाओं को अवसर प्रदान कर रहे हैं, बहुत से ट्रेंड युवाओं को अवसर प्रदान कर रहे हैं। आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे बहुत सारी योजनाएं रोजगार और प्रशिक्षण के बहुत सारे नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, और इन योजनाओं के थ्रू लाखों यंगस्टर को समाज के साथ जुड़कर काम करने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर लगातार मिलता जा रहा है। और आइए एक और बेहतरीन ट्रैक सुनते हैं, नेहा कक्कर किसी के साथ में गाना गा रही हैं। आप पहचानिएगा किसकी आवाज़ है, हमें बताइएगा। FM आकाशवाणी लखनऊ पे सुनते रहिए।

और हम दो नहीं बड़े सारे गल्ला कर रहे हैं आपसे बहुत देर से। और हमारा नाम तो सभी जानते हैं, हम हैं विनय। और आप जानते हैं कि आज फ्राइडे को हम हेल्थ एंड हाइजीन के सेक्टर में कैसे करियर ऑप्शन मिल सकते हैं उस पर हम बात कर रहे थे। और दोस्तों, हम जानते हैं कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे बड़ी उसकी खासियत ये है कि यहाँ करियर के साथ साथ समाज सेवा के अवसर भी मिल जाते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन की दिशा को प्रेरित करते हैं या किसी भी कम्युनिटी को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाते हैं, तो केवल अपना पेशा नहीं निभा रहे होते हैं आप, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी गीत के साथ अपने दोस्त विनय को इजाजत दीजिए। यूथ वेव से न्यूज ब्रेक के उस पार हाजिर होते हैं FM Top 10 लेकर। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, शाम के 5 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में पहली FIR दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज देवरिया में कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि SIT की रिपोर्ट आते ही तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। मैं आश्वस्त करता हूं और मैंने कहा भी था कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। जन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वो उसका भुक्त भोगी होगा। ये छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना PMSGY के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6.2 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा डायरेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत निर्धारित 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य में से 50% से अधिक उपलब्धि हासिल कर ली है। गौतम बुद्ध नगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रस्तावित दौरा को देखते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री यमुना सिटी में 2 यूनिटों का शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। दोनों कंपनियां करीब 6,750 करोड़ का निवेश करेंगी। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची शुल्क शेल्फ लाइफ से संबंधित है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

हेलो दोस्तों, शाम के 5:05 हुए हैं। आपका स्वागत है FM टॉप 10 में, जहां हर गीत के साथ जुड़ी है यादें, हर धुन में छुपे हैं जज्बात और हर सुर में हमें ले जाता है खूबसूरत दौर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय और आज हम लेकर आए हैं 1997 के सुपर हिट बॉलीवुड गीतों का काउंटडाउन। तो शुरुआत हो चुकी है गाना नंबर 10 से, हीरो नंबर 1 फिल्म का ये गाना। ये फिल्म 21 फरवरी 1997 को रिलीज हुई थी और गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी ने 90 के दशक में बहुत धूम मचाई थी। और हीरो नंबर का ये गाना आ रहा है सोना कितना सोना है, बड़ी सारी नोक झोंक है, पार्टी में खूब गाना बजाता है। तो आइए हम भी इंजॉय कर लेते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: Dhadkan Lucknow ki.
4: Ya doston, aap sun rahe hain Dhadkan Lucknow ki 100.7 FM Rainbow par. Aur ji, ek music aapne sun liya. Ye music hai film Yes Boss ka. और गाना नंबर 9 भी इसी फिल्म का है। ये फिल्म 18 जुलाई 1997 को रिलीज हुई थी। शाहरुख खान है इसमें और जूही चावला है और बहुत ही शानदार केमिस्ट्री वाला ये गाना है। और अगर आप ये गाना सुनते हैं बहुत मन से, दिल से, किसी खास को याद करते हैं, तो आपकी बात सीधे पहुंच जाएगी, एकदम तय है। फिर से सुनिए।

जी अलका यानी को और अभिजीत भट्टाचार्य की बेहतरीन आवाज में ये गाना यस बॉस से। और हम सभी जानते हैं कि अलका याग्निक जी को अभी अभी पद्म भूषण मिला है और हम सभी बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत सारे बेहतरीन गाने गाए हैं अलका जी ने, आप एक बार जरा लिस्ट देखिए तो बहुत सुपर डुपर हिट सॉन्ग भी हैं। ये म्यूजिक है जुड़वा फिल्म का और इस नंबर 8 पर जुड़वा फिल्म का ये गाना है। फिल्म रिलीज हुई 7 फरवरी 1997 को। स्टाइल ग्लैमर और करिश्मा कपूर की शानदार अदाओं से सजा ये गीत और 1997 में बहुत बहुत बहुत बड़ा ये डांस नंबर था। सब इस पे थिरकते रहे, आइए हम भी थिरकते हैं।

आती है क्या नसीबारा। जी हाँ, उस वक्त ये टन टन आटन टन सुपर डुपर हिट गाना 1997 का था और इसमें शुक्रवार की बात कही गई है और गर्मी की बात कही है, दोनों इस वक्त मौजूद है। आज शुक्रवार है और बहुत तेज गर्मी भी है। और अब आ गया है इश्क फिल्म का ये गाना, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम। इश्क फिल्म 28 नवंबर 1997 को रिलीज हुई थी। आमिर खान, अजय देवगन, काजोल, जूही चावला की धमाकेदार जोड़ी वाली ये फिल्म। इश्क का ये गाना बहुत ही बढ़िया है और इस गाने में एक अलग सी शरारत है, मुस्कुराहट है। तो आइए हम गाने नंबर 7 में एंजॉय करते हैं।

अगेन अलका याग्निक की बेहतरीन आवाज, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, उदित नारायण की बेहतरीन आवाज में ये गाना आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 में। 5:26 हुए हैं और आप हैं विनय के साथ। और अब जी हाँ दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मतलब आप समझे कि हमारे फीलिंग बन जाते हैं, और वही ये गाना है संदेश, ये आते हैं, एक ऐसा गाना जो हमारे सैनिकों, उनके परिवारों की फीलिंग्स को बड़ी खूबसूरती से बयां कर रहा था, और हमारे FM टॉप 10 में आज है ये छठे नंबर पे। फिल्म आप जानते हैं बॉर्डर है, 13 जून 1997 की रिलीज़ हुई थी।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna.

जय दोस्तों, पूरी दुनिया में दूसरा हिंदुस्तान कहीं नहीं है और गाना बहुत ही खूबसूरती से बयां कर रहा है। और ये हमारे काउंटडाउन का गाना नंबर 5 है, फिल्म परदेश से। आप जानते हैं, देशभक्ति गाने को सुन के तो गूज़बम्प आ जाते हैं। बेहतरीन गाना, ये सुनते हैं।

और दोस्तों शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म कोयला का ये गीत, आप जानते हैं ये फिल्म 18 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी और माधुरी शाहरुख पे फिल्माएगा ये गाना, बहुत ही बेहतरीन है और हमारे काउंटडाउन में ये है गाना नंबर 4।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों यश चोपड़ा की रोमांटिक दुनिया का ये गीत मासूमियत और प्यार का खूबसूरत सा आइडिया है लता मंगेशकर जी की और उदित नारायण की आवाज में बेहतरीन गाना है हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 पर दिल तो पागल है से जो 31 अक्टूबर 1997 में रिलीज हुई। बेहतरीन गाना ये सुनते हैं।

तो आप ये म्यूजिक समझ ही गए होंगे, गुप्त फिल्म का ये बेहतरीन म्यूजिक और गाना भी। जी 4 जुलाई 1997 को ये फिल्म रिलीज हुई, 97 की सबसे चर्चित थ्रिलर फिल्मों में से एक गुप्त। और ये रोमांटिक गाना लोगों को बहुत पसंद आया था, मेरे ख्वाबों में तू मेरे सांसों में तू। एंजॉय करते हैं।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: यह दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, और वक्त हो चला है नंबर एक गाने का। फिल्म का नाम आप समझ ही गए होंगे, फिल्म है विरासत। 30 मई 1997 के रिलीज हुई ये फिल्म भारतीय संस्कृति, रिश्तों और परंपराओं का खूबसूरत उत्सव थी। AR रहमान के शानदार संगीत से सजा ये गाना आज भी भारतीय शादियों की जान माना जाता है। इस गीत में लोक संगीत की मिठास, उत्सव और उल्लास और भारतीय संस्कृति की खूबसूरती एक साथ देखने को मिलती है, और यही वजह है कि ये है FM टॉप 10 1997 का स्पेशल में नंबर एक पर। और इसी गीत के साथ अब इजाजत दीजिए FM टॉप 10 से, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: नमस्कार, शाम के 6 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में पहली FIR दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज देवरिया में कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि SIT की रिपोर्ट आते ही तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। मैं आश्वस्त करता हूँ और मैंने कहा भी था कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। जन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वो उसका भुक्तभोगी होगा। ये छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परमाणु अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन इट्स टेम्पल टूर आरम्भ किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का प्रयोग होगा। इस 11 दिन के रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। ये यात्रा दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से आरंभ होगी और ये रेलगाड़ी वाराणसी, पुरी, कोणार्क, चिलिका, भुवनेश्वर, कोलकाता, गंगा सागर और बौद्धनाथ धाम जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। उन्नाव में मुहर्रम पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने अधिकारियों के साथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए ताजिया जुलूसों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तानें। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: जनाब अली,
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

क्या दोस्तों, शाम के 6:07 हुआ है। सूरज मध्यम तो नहीं हुआ क्योंकि गर्मियां हैं, सूरज अभी तेज होगा, लेकिन गाने के थ्रू वो फील करिए आप कि सूरज मध्यम हो गया। आपका दोस्त विनय आपके साथ है। शाम में अवध शुरू हो चुका है, आप सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है हमारे पास।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर, आज विनय के साथ शामी अवध, और 6:13 हो चुके हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे की ओर से शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन उधमपुर से खड़गपुर के बीच 26 जून को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जी हाँ, आज है 26 जून और आज से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन 27 जून को आलमनगर और उतरटिया रेलवे स्टेशन के रास्ते खड़गपुर के लिए रवाना होगी। और आपको बताते चलें कि इसके साथ ही साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि चारबाग स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स के निर्माण के कारण 28 जून से 10 जुलाई के बीच 25 ट्रेनें जो उनके मार्ग हैं वो बदले जाएंगे, और ये ट्रेनें चारबाग स्टेशन से नहीं जा पाएंगी। और बदले हुए मार्ग से चलाई जाने वाली ट्रेनों में गोरखपुर मुंबई, मुंबई गोरखपुर, सूरत मुजफ्फरपुर, हम सफ़र साबरमती सहित और बहुत सारी ट्रेन शामिल हैं। इन्हें चारबाग के बजाय मानक नगर, ऐशबाग, मल्हौर, उतरटिया स्टेशनों से चलाया जाएगा। और अगर आप यात्रा कर रहे हैं और चारबाग से जाने वाले थे तो आप शेड्यूल ज़रूर चेक करें, बदलाव हुए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टेशन पहुंचे और आपको पता चले कि वहां से तो गाड़ी चल ही नहीं रही है। और आपका ख्याल हम रखते हैं और इसीलिए हम ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर, जहां पर प्रोग्राम चल रहा है शामी अवध।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।

0: हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: धड़कन लखनऊ की पर आप सुन रहे हैं शाम अवध, 6:20 हो चला है। और आप अगर अभी रास्ते में हैं, वैसे तो छुट्टी का दिन है, अगर आप घूमने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा शाम ढलने दीजिए, थोड़ा सा शेड और बढ़े तब निकलिएगा, और क्योंकि अभी धूप है सही नहीं रहेगा। और हाँ, एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश काउंसलिंग अब शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हेल्प डेस्क अभिभावकों को काउंसलिंग प्रक्रिया और पाठ्यक्रम और फीस की बहुत सारी जानकारी दे रहा है। और आपको बताते चलें कि ये काउंसलिंग बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को अलॉट भी किए जा चुके हैं, तो पहले चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है और ये 30 जून तक चलने वाली है। और आप 2 जुलाई तक अपने डॉक्यूमेंट को चेक करवा सकते हैं। तो अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है राजकीय पॉलिटेक्निक्स में, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि अलर्ट रहेंगे तो आपका जो मिस नहीं होने वाला है, आपका एडमिशन मिस नहीं होगा। और देखिए, हमने आपका पूरा ख्याल रखा, अब हमारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जहाँ पर आप हैं विनय के साथ।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: और दोस्तों, लखनऊ की शाम और शाम अवध बड़ा ही मशहूर है। लखनऊ की शाम में पुराने लखनऊ या नए लखनऊ कहीं भी घूमने जाइए, उसका अलग ही मज़ा है, उसका अलग ही आनंद है। और शाम होती है तो लखनऊ में रौनक बढ़ जाती है। कई जगहों पर थिएटर हो रहे होते हैं, नाटक हो रहे होते हैं, कहीं पर आप बड़े सारे डिशेस को एंजॉय कर सकते हैं, और इमारतें और बहुत बेहतरीन हो जाती हैं, उनकी लाइटिंग बेहतरीन हो जाती है। और आज शाम को 7 बजे अगर आप लाइव थिएटर के शौकीन हैं तो शाम 7 बजे आप गोमती नगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान जा सकते हैं, जहां पर श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति और आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की ओर से एक नाटक का मंचन किया जा रहा है, और नाटक का नाम है द लेसन। तो अगर आप नाटक देखने के शौकीन हैं तो आप शाम को 7 बजे पहुँच जाइए और अपने एक शौक को ज़रूर जिए। क्योंकि वैसे मैं आपको सही बताऊं, मुझे भी बड़ा ही शौक है। आप जब लाइव ये शो देख रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल है। वहाँ पर लाइव लाइटिंग, म्यूज़िक चल रहा होता है, और रिएक्शन है ना, तुरंत मिल जाता है आर्टिस्ट को, अगर अच्छा है तब भी और बुरा है तब भी। आइए एक और गाना इन्जॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं शामी अवध आज विनय के साथ।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

107 FM रेनबो पर 6:37 हुए हैं। आप सुन रहे हैं शामे अवध, आज आप अपने दोस्त विनय के साथ। और आइए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन बता दें दोस्तों, जो भी एक इंटर्नशिप निकली है कि हैकाथॉन होने जा रहा है, उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। और ये कहीं और नहीं, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ये हैकाथॉन होने जा रही है, भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2026। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसके लिए वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ पीएचडी के भी रिसर्च स्कॉलर इसमें आवेदन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी लास्ट डेट के लिए बहुत कम समय बचा है, आज है 26 तारीख और 1 जुलाई आने में समय बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें लगता है बहुत समय है ना, वही छूट जाते हैं। तो 1 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसे मिस ना करें। अगर आप इस भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2026 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर, इसरो की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल से, तफसील से आप आराम से देखिए और फिर फॉर्म भरिए। और दिल्ली 6 का ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर या मोबाइल पर, या आप ऑनलाइन सुन रहे हैं कार में, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर। विनय है आपके साथ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
3: पुरानी जींस और गिटार,
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद।

0: शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
4: जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर शामेवध प्रोग्राम चल रहा है। और जो दोस्त बैंकिंग, डिजिटल व्यापार और डिटेल क्षेत्र में तेजी से रोजगार का अवसर बढ़ रहा है और संभावनाएं इसमें देख रहे हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने सेशन 2026-27 से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी AEDP के तहत 3 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। ये कोर्स पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए रोजगार की राह बहुत आसान कर देने वाले हैं। इनमें BCom बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा है BCom ई-कॉमर्स और तीसरा है BCom रिटेल मैनेजमेंट। और अगर आप इन तीनों कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट का ख्याल रखिए, बहुत कम समय बचा है, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। पूरी डिटेल जानने के लिए वेबसाइट जाइए, चेक करिए और करियर को बनाइए। फिलहाल आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर एक और बेहतरीन ट्रैक आप सभी के लिए।

क्या करूं? जी हाँ, इस दिल का क्या करूं? बहुत देर से बोल रहा है कि बस बात करते जाओ, लेकिन घड़ी हमें कह रही है कि अब शामे अवध से इजाजत लेना पड़ेगा। लेकिन दिल ये भी कह रहा है कि बड़े सारे दोस्त अभी से फोन मिलाना शुरू कर चुके हैं। हेलो एफएम लेकर हाजिर होंगे हम न्यूज ब्रेक के उस पार। सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो विनय के साथ।

नमस्कार, आप सुनिए प्रदेश के टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 456 करोड़ रुपए की लागत से 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में FIR दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 456 करोड़ रुपए की लागत से 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में FIR दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि SIT की रिपोर्ट आते ही तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उन्होंने कहा कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना PMSGY के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 16 रूफटॉप स्थापना में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यूपी नेडा डायरेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत निर्धारित 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य में से 50% से अधिक उपलब्धि हासिल कर ली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि चुनाव की समय सीमा बताते हुए विस्तृत हलफनामा पेश किया जाए। अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि के हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल प्रस्तावित दौरों को देखते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। आज 10वीं मुहर्रम है। आज ही के दिन इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ कर्बला के मैदान में शहीद हुए थे। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आज लोग ताजियों को विभिन्न कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। उन्नाव में मुहर्रम पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने अधिकारियों के साथ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए ताजिया जुलूसों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुहर्रम के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का जायजा लिया। फरुखाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का जुलूस निकला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और गोविंदा की स्टाइल का ये सुपर हिट सॉन्ग आपने सुनना शुरू कर चुके हैं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है हेलो एफएम। आज विनय आपके साथ है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे अपने पसंद के गाना सुनना चाहते हैं, तो हमें मिलाइए 0522 2238 852 और दूसरा नंबर है 0522 2238 845। मिलाइए हमसे, बातें करिए, हम कर रहे हैं आपका इंतजार।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: और दूल्हे राजा के इस बेहतरीन गाने के बाद हमारे एक पहले लिस्नर हैं जो हमसे जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। कौन साहब बात कर रहे हैं? हेलो हेलो
3: सर जी, राधे राधे।
2: राधे राधे, कौन साहब बोल रहे हैं?
3: सर जी, जिला हरदोई तहसील संडीला से ग्राम मुसलमान खुश पान खेड़ा से बोल रहे हैं।
2: जी आप संडीला से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
3: मेरा नाम सर राधेलाल जी है।
2: राधे लाल जी, तो संडीला में ऐसी भीषण गर्मी हो रही है?

0: अरे सर जी पूरा ऑल इंडिया में गर्मी हो रही है।
1: क्या बात है, वाह। तो मुझे ये बताइए कि गर्मी के मौसम में घूमने जाने को मिले तो कहाँ जाएंगे आप?
0: सर जी घूमने तो शिमला है, नैनीताल है।
1: अरे नहीं, बहुत हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कहाँ जाएंगे।
0: अरे सर जी हम तो कहीं नहीं जाते, हम तो खाना बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: और कहीं जा ही नहीं सर जी, तो क्या बताएंगे।
1: नहीं, खाना बनाते हैं मतलब क्या है, आप घर में खाना बनाते हैं?
0: जी खाना बनाते हैं, इनका काम करते हैं सर जी।
1: अच्छा, केटरिंग का काम करते हैं। ओहो, क्या बात है। तो आप की मतलब शादीशुदा हैं आप?
0: अरे सर शादी शुदा
1: आए, क्या बोले?
0: शादी नहीं हुई है सर।
1: अरे तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि अब देखिए, अगर आप केटरिंग का काम करते हैं, खाना बहुत बड़े बनाते हैं, तो आने वाली को आराम मिलेगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं, वो तो खुश होंगे भाई। जितने लोग सुन रहे हैं, अब तुरंत लाइन लगा लीजिए, राधे श्याम जी के वहाँ पहुंच जाइए, खुश रहने वाले। अच्छा, अब गाना बताइए कौन सुनना चाह रहे हैं?
0: गाना सर जी ये तो सच है कि भगवान है।
1: अच्छा, और किसे सुनाना चाह रहे हैं आप ये?
0: सर जी जितने पूरे जहाँ जहाँ आवाज जाती है, उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। और जितनी हमारी बहनी माताएं भाई परिवार जितना बड़े बुजुर्ग सबका।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और फोन किया और बेहतरीन गाना सुनना चाहे। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर।

0: और दोस्तों ये बात तो सही है कि हमारे घर में ही भगवान है, अगर हम उन्हें हर रोज पूज लें तो किसी भी भगवान को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बेहतरीन ट्रैक हम साथ साथ हैं फिल्म से हम सुन रहे थे, और हमारे एक और साथी हमारे साथ जुड़े हुए, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हैं?
1: हम श्री प्रकाश तिवारी भाई साहब उन्नाव से बोल रहे हैं, और आपके डेली सुनता है, हर प्रोग्राम में सुनते हैं।
0: जी तो आप रेगुलर सुन रहे हैं उन्नाव, आपने बताया ना हमें।
1: हाँ हाँ, सुबह

0: 4 बजे खोल देते हैं और भजन कीर्तन सब होता है, फिर उसके बाद फिल्मी गाने आते हैं 8 बजे 7 से 8। और मतलब इतने टाइम ये आपका हाल एफएम सुनना है।
1: क्या बात है, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें रेगुलर सुन रहे हैं।
0: हाँ, और रात में रजनीगंधा भी सुनते हैं पुराने।
1: क्या बात है, तो आज भी सुनना मत भूलिएगा, हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत मेहनत से प्रोग्राम लाते हैं।
0: तभी भाई साहब पुराना गाना पेइंग गेस्ट का सुन रहे हैं।
1: हाँ जी, पेइंग गेस्ट का गाना आपने कहा है, आप किसे सुनाना चाह रहे हैं गाना?
0: गाना सबसे पहले भाई साहब आपको, आपकी टीम को,
1: थैंक यू,
0: और फिर बाबू अंसारी, प्रवीण अंसारी, संतोष, ओंकार, रिंकी, पिंकी, सत्यम भाई है, हरिकेश भाई है, और सभी भाइयों को।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने समय निकाल के हमें फोन किया। आइए हम सब,
0: धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू
1: सो मच। दोस्तों अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद का गाना तो हमें फोन मिलाइए 0522 2238 852, और दूसरा नंबर है 0522 2238 845।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए।

0: झील। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्यवाही शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार

0: जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
1: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ के तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर PAC पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफ्रामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: Spot in Group F with a 3-1 win.

0: और दोस्तों शाम के 7:33 हुए हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर हेलो FM। आज विनय आपके साथ है और हमारी एक लिसनर है, रेगुलर लिसनर है, बहुत देर से इंतजार कर रही है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो सर, क्या नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है
1: सर? रिंकी पिंकी बात कर रहे हैं, जगदीशपुर सेवगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से। सर कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: सर हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए, क्योंकि सर काफी अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है।
0: आप मुझे बताइए कि ये दोनों बहनें साथ में गर्मियों की छुट्टी में कहीं घूमने गई?
1: नहीं सर, हम लोग घर पे ही, अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो सर आपका कार्यक्रम कैसे सुनेंगे?
0: अरे हमारा कार्यक्रम मोबाइल पे सुनेंगे, अब तो न्यूज ऑन न्यूज ऑन एयर
1: नहीं चलाते ना सर, बिना फोन के ही रहते हैं, रेडियो पे आपका कार्यक्रम।
0: क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि अगर मौका मिल जाए घूमने का और मोबाइल लेकर रेडियो लेकर साथ जाने का मौका मिल जाए तो कहाँ जाएंगी दोनों बहनें?
1: सर मेरे दो सपने हैं, एक तो मुझे दिल्ली घूमना है, दूसरा आपका स्टूडियो, और सर बहुत जल्दी हम आपके स्टूडियो भी आना चाहेंगे।
0: हाँ दोनों ही सपने बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे से हैं, आराम से पूरे हो जाएंगे। आप कभी भी लखनऊ आइए, लखनऊ में स्टूडियो हमारा विजिट कर सकते हैं, और दिल्ली भी दूर नहीं, कहते ना दिल्ली दूर नहीं है।
1: सर हम मतलब सर बहुत बहुत दिल की तमन्ना है अपने फेवरेट अनाउंसरों से मिलने, बस थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि सर हमने सुना है कि एंट्री आसानी से नहीं मिलती, तो सर इसलिए हम लोग डरते हैं।
0: नहीं रायबरेली बहुत दूर नहीं है, अगर आप वर्किंग डेज में आ रहे हैं तो बाकायदा एंट्री आपको परमिशन मिल जाएगी, आप एक बार रिक्वेस्ट करेंगे तो मिल जाएगी।
1: बहुत जल्दी आने की कोशिश करेंगे।
0: चलिए आपने कौन सा गाना सुनना चाहा बताइए।
1: जी सर क्रांतिकारी मूवी है और कुमार सानू अलका याग्निक ने गाया है, और गीत के बोल हैं, जब से हम तेरे आशिक बने आशिकी का मजा आ गया।
0: क्या बात है,
1: गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे।
0: जी जी जी,
1: आपको और हमारे भाई है दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही, तिवारी अंकल, समा परवीन, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, महक अंसारी, ममता दीदी, सुषमा दीदी और संजू भैया, विनीत भैया, वकील अहमद, जावेद अख्तर, बाकी समस्त श्रोता सुनने वाले और मोहम्मद भाई।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।

0: और दोस्तों इस बेहतरीन ट्रैक को रिंकी पिंकी ने डेडिकेशन में लिया था, बेहतरीन गाना है। और हमारी एक और लिस्टर है, रेगुलर लिस्टर है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और वेट कर रही है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग सर, आपको और सभी श्रोताओं को।
0: जी गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मेरा नाम है रोशन रावत, ग्रामा पोस्ट बमना, तहसील सतीपुर, जिला उन्नाव, और अभी चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ।
0: अच्छा, संडीला से प्रोग्राम सुन रही है आप मुझे?
1: चंडीगढ़ से
0: जी।
1: चंडीगढ़ से सर।
0: चंडीगढ़, ओ हाँ, चंडीगढ़ से भी दो लोग सुनते हैं प्रोग्राम, करेक्ट। बड़ी दूर से सुन रहे हैं आप?
1: सर रहने वाले तो उन्नाव के हैं ना हम।
0: अच्छा, तो रोशनी जी बताइए कि अभी जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो मैंने सुना चंडीगढ़ के आसपास पहाड़ियां हैं थोड़ी सी।
1: जी सर बहुत है।
0: हाँ तो घूमने गए आप?
1: सर हम तो बहुत जगह गए हैं, इतनी जगह गए हैं कि शायद भी अभी भी हमारा प्लान बन चुका है, 2 महीने बाद फिर हम जा रहे हैं रामेश्वरम, और अभी जुलाई के लास्ट में जाएंगे कामले में हरिद्वार।
0: क्या बात है, यानी कि आपके पैरों में घुमक्कड़ी है।
1: जी सर मैं बहुत ही घुमक्कड़ हूँ, आपको घुमक्कड़।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। आपको पता है कि एक शेर कहा गया है कि सैर कर दुनिया के गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो जवानी फिर कहाँ। तो
1: जी सर बिल्कुल।

0: आप बस घूम लीजिए मौका मिले, और जब तक जवानी है घूम लीजिए, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले घुटने जवाब दे दे।
1: जी सर बिल्कुल
0: जी। आप गाना कौन सुनना चाह रहे हैं बताइए।
1: सर सुना दीजिए दिल है तुम्हारा का ओ साहिबा करके, और सर मैं कुछ लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सर, सबसे पहले आपको
0: थैंक यू,
1: और अभी सर या मैम जो 8 बजे से आएंगे उनके लिए भी है।
0: अनामिका जी आ गई है।
1: ओके अनामिका दीदी को भी रहेगा डेडिकेट, और हमारी बबीता राव जी है, बुलस्ता दीदी है, नीलू दीदी है, महेंद्र भैया है, यासिर भैया है, ताली भैया है, और साहिबा है, ताजिया है, और हमारे आशी भैया तेलंगाना से सुन रहे हैं।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं।
1: सब सुन रहे हैं, सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है रते आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड।

0: बग्गा
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: ये दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर हेलो FM, आज विनय आपके साथ है और हमारे एक और लिस्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
3: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
2: इंद्रभान सिंह
3: जी सर, और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग वाला कार्यक्रम में। और सबसे पहले गीत फिल्म का नाम है मेरे महबूब, और गीत की बोल है थम के बरस अब तो मुझे अपने साजन के पास जाना, गायिका अलका यारी।
2: अरे बरस ही कहाँ रहा है, आप क्यों छत्तीसगढ़ में बरस रहे हैं क्या?
3: जी बरस गया सर, कल से बरस चालू हो गया,
2: तो बस अब आप दुआएं करिए कि वो लखनऊ आए।
3: आ जाएगा सर, उधार में हम भेज देते हैं सर।
2: जरूर भेजिए। और किसे सुनाना चाह रहे हैं गाना, क्योंकि देखिए आपने ऐसा गाना चुना ना कि मुझे लगा आप तो बरस जाए, बस अब छत्तीसगढ़ में बरस गया है तो ऐसा हम महसूस करने लगे।
3: लखनऊ में भी आएगा सर, आजकल में आएगा, आ जाएगा, तो आज गाना तो सुन लीजिएगा, तो हो सकता है आज कल आ जाएगा।
2: क्या बात है, तो किसे सुनाना चाह रहे हैं गाना?
3: सबसे पहले गीत आपको सुनाना चाहूंगा सर,
2: और
3: आकाशवाणी लखनऊ रेनबो में सभी श्रोता भाई बहन को, दूसरों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, और उसके बाद हालो एक्टर रेडी श्रोता को पहुंचाने की धन्यवाद, और इसी गीत को जरूर सुनाएगा, पूरा सुनाइएगा, धन्यवाद।
2: चलिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।

0: बरसने के बाद आई थिंक अब सभी को ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि हम तो नहीं कहेंगे कि थम के बरस, हम कहेंगे जरा बहुत जोरों से बरस। हमारे साथ एक और हमारे दोस्त जुड़े हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से कौन साथी बात कर रहे हैं? हेलो
1: सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, ग्राम सुनौरा से बोल रहा
0: हूँ जी। तो लखीमपुर खीरी में बादल पहुँच गए हैं क्या?
1: नहीं सर जी, यहाँ गर्मी का बहुत बेहाल समय चल रहा है।
0: नहीं तो बस ऐसे गाने बरसात वाले सुनिए तो थोड़ा सही लगेगा।
1: वो तो बात सही है सर जी, पहली बार कॉल भी लगी है आपसे, बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे लिसनर हमसे जुड़ते हैं और अपना समय निकाल के हमसे बात करते हैं अच्छा लगता है। गाना कौन सा सुनना चाह रहे हैं आप?
1: सर जी निगाहें फिल्म का बताया था
0: जी, निगाहें फिल्म का आपने कहा था, कोई भी गाना सुना दिए है ना
1: जी, जी, जी।
0: तो हमने सावन के झूलों में गाना है, आई होप आपने सुना होगा। और जी, क्योंकि जी, अब गर्मी के बाद आएगी बरसात और फिर सावन है ना
1: जी।
0: तो आइए हम गाना सुनते हैं, आप किसे सुनाना चाह रहे हैं गाना?
1: आप सभी को और हमारे श्रोता को सुन रहे हैं।
0: तो चलिए जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन मिलाया उसके लिए।
1: ओके, धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।

और दोस्तों आप घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, फिर किसी रोज आपसे मुलाकात जरूर होगी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा आज की आवश्यकता है। वर्ष 2017 के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा के गुणवत्तापूर्ण विस्तार के जरिए सरकार ने प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदली है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बेतिया हाता में एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज प्रयागराज के सर्किट हाउस में ऊर्जा, नगर विकास एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि बिजली से संबंधित किसी भी समस्या का तत्काल निस्तारण किया जाए और निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें आगामी माघ मेले से पहले पूरा कराया जाए। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 19 जून तक कुल 2,80,000 से अधिक व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र

विद्युत परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें आगामी माघ मेले से पहले पूरा कराया जाए। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 19 जून तक कुल 2,80,000 से अधिक व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन ATS का मुख्य उद्देश्य वाहन फिटनेस जांच प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए मशीनों एवं सेंसर आधारित परीक्षण प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। इससे वाहन मालिकों को आधुनिक तकनीक की सहायता से तेज सटीक फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का प्राथमिक विद्यालयों के साथ कोलोकेशन और वैज्ञानिक मैपिंग अभियान मिशन मोड में शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बुनियादी शिक्षा को नया आधार देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत लाभ सुनिश्चित होने से बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के सीखने के परिणामों को नई मजबूती मिलेगी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दान राशि की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाया गया है, क्योंकि आरोपियों में कुछ ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें लोक सेवक की श्रेणी में माना गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है।

0: हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
3: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

ना उदास हो ना मलाल कर, किसी बात का ना ख्याल कर, अरसे बाद मिले हैं हम, तेरे नाम आज की ये शाम है। जी, ये ढलती हुई खूबसूरत सी शाम और आपका हमारा साथ और आपकी हमारी यादों का ये आबशार। और वो कहते हैं ना कि पसंदीदा शख्स आपके सामने हो ना हो, लेकिन उनकी यादों भर से, उनकी यादों की महक भर से ऐसा लगता है कि आसपास का ये समा महक उठता है, ये जहनो दिल महक उठता है, तो उनकी यादों को और भी तरोताजा करते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम आबशार में, आपकी अपनी पसंदीदा गजलों के साथ, जहां आज आपके साथ हूं मैं अनामिका, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

बशीर बद्र साहब का एक बहुत ही फेमस शेर है, बहुत विख्यात शेर है कि दिल का सुकून ढूंढने जाए बशर कहाँ, कि दिल का सुकून ढूंढने जाए बशर कहाँ, ऐसा मगर है कौन, कौन सा ऐसा दर कहाँ। सुकून, ये एक ऐसा शब्द है ना, छोटा सा शब्द है लेकिन पूरी दुनिया एक वक्त के बाद सिर्फ और सिर्फ सुकून के पीछे भागा करती है। पता है, जिंदगी में कुछ वक्त के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ सुकून की ही जरूरत होती है, क्योंकि एक उम्र बीतने के बाद हम सभी को इस बात का एहसास हो जाता है कि जिस खुशी के पीछे, जिस हैप्पीनेस के पीछे हम रोज भागा करते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का एक ख्याल भर होता है। ये खुशी वक्त से, हालात से, लोगों से बदलती रहती है, लेकिन ये जो सुकून है ना, ये रूह की बात है, अंतरात्मा से जुड़ी हुई बात है। और जब आप खुशी की तलाश के बदले सुकून की तलाश कर रहे होते हैं, समझ लीजिए कि बस वही आपकी सच्ची तलाश होती है।

साहब ने गमे मोहब्बत पे लिखा था कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जी, आपको पता है हर शख्स के मन की डायरी में जिंदगी के अप्स और डाउन्स को लेके, उतार चढ़ाव को लेके, जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए हों उन्हें लेके किस्मत से और खुद से बहुत सारे सवाल होते हैं। और सवालों वाली डायरी में एक अहम सवाल ये जरूर होता है कि जिनसे किस्मत नहीं मिलती उनसे दिल क्यों मिल जाया करते हैं।

जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। तुझसे क्या कहते, तेरे पास जो आते गुजरी। दिन जो गुजरा तो किसी की याद की रौ में गुजरा, शाम आई तो कोई ख्वाब दिखाते गुजरी। अच्छे वक्तों की तमन्ना में रही उम्रे रवां, वक्त ऐसा था कि बस नाज उठाते गुजरी। जी हां, क्या जिंदगी के अच्छे वक्त को, जिंदगी का ये जो अच्छे वक्त का पन्ना हमारे दिल में होता है, इस पन्ने को दिल से फाड़ के निकाल पाना इतना आसान होता है।

मंजिलें छीन ली, अनजान सा रास्ता देकर हमको जन्नत से निकाला गया दुनिया देकर। जाने वाले का जनाजा था जनाजा मेरा, खुद को दफना दिया मैंने उसको कांधा देकर। मैंने अफवास की नींदों में खलल डाला है, अपनी शमशीर को मैदान में बोसा देकर। अब ये बदलाव के नखरे भी उठा पाओगे? घर तो ले आए हो से इश्क का झांसा देकर। आज वो लोग मेरे सर पे खड़े हैं जिन्हें पाला था मैंने कभी धूप में साया बनकर।

8:43 और फिलहाल घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही हैं कि आपकी रात के हम सफर अनामिका का आपके पसंदीदा प्रोग्राम आप शहर से जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के न्यूज ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम पॉप टाइम को लेके। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और

0: और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10,00,000 रुपए और घायलों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26

0: किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
1: शहर आपका धुन आपकी

तुम्हें हवंदो सका तुम्हें हो। जी हाँ, मैं आपको इश्क भले ही ना सिखा पाऊँ लेकिन आप डांस करना तो पक्का सीख जाओगे क्योंकि प्रोग्राम है बहुत खास और साथ हैं आप। जी हाँ, आपके फेवरेट सेगमेंट यानी आपके फेवरेट प्रोग्राम पॉप टाइम में फिलहाल अनामिका है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पे धड़कन लखनऊ की।

और इससे पहले कि हम बोलते, उससे पहले ही आप लोगों ने अपनी ये जो मोहब्बत की बारिश है ना, बारिश लखनऊ शहर में फिलहाल हो या ना हो अभी, लेकिन ये जो आपकी मोहब्बतों की बारिश है, ये आपके खतों के तरीके से खत, अब ठीक है आप हैंड रिटन नहीं लिखते, अब जमाना टेक्निकल हो चुका है, आप हमें लिखते हैं मेल्स के थ्रू, लेकिन खुशी वही दिल से आती है, दिल से निकलती है ये खुशी। तो फिलहाल प्रोग्राम में है आप हैं प्रोग्राम पॉप टाइम में अनामिका के साथ 100.7 एफएम पे। और हाँ, लिखनी हो कोई अपनी दिल की बात, करनी हो कोई दिल की बात, तो लिखेंगे कहाँ आप, एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। जब तक तो भाई बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं, बहुत सारी मोहब्बत आ चुकी है हमें देश के कोने कोने से, लखनऊ से, और ये देखे दिल क्या ही खुशनुमा हो जाता है, दिल की हालत क्या खुशनुमा होती है, क्या ही कहना, आप तो अच्छे से समझते हैं जनाब। तो भाई बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, और एक बार आपको फिर से बताते चलते हैं कि कहनी हो अगर कोई बात, कोई दिल की बात, कोई खास बात, तो लिख सकते हैं आप एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com के थ्रू। जी हाँ, आप हमें मेल करेंगे, इधर हम पढ़ेंगे आपका मेल, और बिल्कुल ढिनचक गाने चलेंगे 9 से 10, और करते रहिए बिल्कुल ढेर सारा डांस, डांस तो आप सीख ही जाएंगे, इश्क भले ही सीख पाए या ना सीख पाए। तो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM, रेनबो धड़कन लखनऊ की।

हाँ, 9:06 और प्रोग्राम चल रहा है बहुत खास क्योंकि साथ में है आप। जी हाँ, प्रोग्राम है पॉप टाइम, जहाँ आज आपके साथ हूँ मैं अनामिका, आपकी रात की हम सफर, कहाँ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर, जो बन चुका है धड़कन लखनऊ की। और हाँ जी, तो माइक के इस पार है हम और माइक के इस पार है आप, लेकिन तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो।

हाँ जी, दिल्ली मुंबई की कुड़ियों की बात तो कर ली, लेकिन अब बात करते हैं लखनऊ की कुड़ियों की, जो उतरती है फ्लोर पे तो भाई फ्लोर भी बिल्कुल उस डांस से टूट जाया करते हैं। तो फिर आइए एंजॉय द सॉन्ग।

देखा आपको बोला था कि भाई हमारी लड़कियों, हमारी लखनऊ की लड़कियों की बात ही कुछ और है, तो ये गाना स्पेशल लखनऊ की लड़कियों के लिए, लखनऊ की प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए। तो 9:14 हो चुके हैं और इस प्रोग्राम में टाइम कैसे, मतलब कैसे बोल के दिखाऊं बिल्कुल स्टार्ट से निकलता है, पता ही नहीं चलता क्यों लगता है ना आपको भी। और हर बार की तरह ये बात फिर से कहूंगी कि एक ऐसी बिल्कुल रस्सी जरूर होनी चाहिए पास में जो समय को बांध सके, क्या कहते हैं आपके फेवरेट टाइम, बिल्कुल एक कदम आगे ना बढ़े। तो भाई अब जैसा कि हमने मेल आईडी बताई, लेकिन हमारे बताने से पहले ही आप सबने इतनी सारी मोहब्बत दी और इतने सारे मेल्स ऑलरेडी आ चुके हैं कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेल आईडी बताने के बाद फटाफट जल्दी जल्दी सारे मेल्स पढ़ लूँ, क्योंकि मेल्स जब छूटते हैं ना तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मतलब मुझे खुद हृदय तल से दुख होता है जितना दुख आपको होता है। और हाँ, बुरा नहीं मानने का, क्योंकि तुम ही हो बंधु, सगा तुम ही हो, किसी भी बात का मेल छूट जाता है या मेल शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि मेल्स बहुत सारे आते हैं, इतनी सारी मोहब्बत आती है, तो भाई हम शॉर्ट में ही पढ़े, लेकिन सबका मेल पढ़ना चाहिए ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेल्स की। और सबसे पहला मेल यानी आबशार में ही हमारी प्यारी एमन ने मेल कर दिया था, और एमन हमें लिखती है सन्नीला से और लिखते हैं, हेलो रॉकिंग अनामिका, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। एमन आप कैसी हैं? पिछली दफ़ा आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आपने बताया था, आई होप कि अब आप बहुत अच्छी होंगी। और एमन कहती हैं कि भाई जब भी ये पॉप टाइम सुनती हैं अनामिका को बहुत मिस करती है, तो थैंक यू सो मच एमन इतनी सारी मोहब्बत के लिए, और मुझे भी आपकी याद आती रहती है, कल भी मुझे आपका ख्याल आया था, और कभी सोचती हूँ जिनकी सिर्फ आवाज़ सुनी उनसे इतना गहरा रिश्ता कैसे बन जाता है, बस ऐसे ही जैसे हमारा आपका है। और कहती हैं कि भाई आपका इंतजार कर रही थी अनामिका, आप आए बहुत खुशी मिली, आई लव यू टू। एमन हमें लिखते हैं संडीला से, ध्यान रखिए अपना एमन और ऐसे ही खूब खुश रहिए। इसके साथ ही मयंक शुक्ला जी हमें लिखते हैं कहाँ से, शिवगढ़ रायबरेली से, लेकिन मयंक जी ने एक गाने की फरमाइश की और इतने सारे प्लीज लिखे, इतने सारे प्लीज कि मैं प्लीज हो गई। तो मयंक जी प्लीज होने के साथ आपको एक और बात बताते चलते हैं कि फिलहाल ये वक्त नहीं है फरमाइशी गानों का, और आपने ये जो गाना हमें बताया है ना प्ले करने के लिए, भाई क्या चाहते हैं, ये इतना खतरनाक गाना आप कैसे पसंद करते हैं? तो मयंक जी हमारी पसंद पे भरोसा रख के बिल्कुल डांस मोड में रहिए और खुश रहिए। अंसारी अश्नूर जी हमें कहती हैं कि रेनबो कैफे नहीं, पॉप टाइम ये चल रहा है, पॉप टाइम, और पॉप टाइम पेश करने वालों को हमारा अदब। तो साहब पहले तो आपकी जानकारी के लिए हम बताते चलते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है पॉप टाइम, रेनबो कैफे नहीं चल रहा है, और आप कहते हैं प्रोग्राम रोज़ सुनते हैं और

अब इस प्रोग्राम के सारे गाने आपको बहुत पसंद है। आप हमें लिखते हैं बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, थैंक यू। रामराज जी हमें लिखते हैं गणेश भगवान के नाम के साथ, इन्होंने शुरू किया है अपना मेल और कहते हैं पॉप टाइम। आप हमें लिखते हैं जरा राय बरेली गांव पहाड़ीपुर से और लिखते हैं कि भाई आपको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार और थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और बोलते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है आपको और गाना सुन के तो आपको बहुत मजा आता है, तो थैंक यू सो मच। और कहते हैं फरमाइश है ना, नहीं नहीं रामराज जी आपको पता है कि बात है कि हम पक्के हैं, लेकिन फिलहाल गाना तो भाई हम जो बताएंगे आप तो बिल्कुल उस पर थिरक ही जाएंगे, तो बिल्कुल हमारी पसंद पे भरोसा करिए। और फिलहाल आपको अगर करनी हो कोई खास बात उन लोगों को जिन्हें हमारे मेल आईडी नहीं मालूम, तो फटाफट से नोट करिए fmakashwanilakhnow@gmail.com, कह डालिए अपने दिल की बात। और फिलहाल बात वही कि पैकिंग नई और स्वाद वही, अब बस ये हिंट दिया है कुछ ऐसे ही गाना आपके सामने पेश करने वाली हूँ, तो आपको आएगा बहुत मजा। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए प्रोग्राम पॉप टाइम अनामिका के साथ।

हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि कभी कभी ये दिल निकम्मा कर देता है, लेकिन चलना है बहुत सोच समझ के। और फिलहाल बिना सोचे समझे आप सुनिए प्रोग्राम पॉप टाइम अनामिका के साथ। आज आप हैं और कहां, सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम पे। फिलहाल ये वक्त है थिरकने का, ना कि सोचने का। और अगर दिल में कोई बात चल रही हो भाई, निकम्मा निकम्मा छोड़ दीजिए, है ना, आप ठीक है, गाना बीता भूल जाइए और फिलहाल आइए हमारे साथ, बैठिए माइक उस पर, आप माइक इस पर हम, और कह डालिए अपने दिल की सारी बात। कहाँ, सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पे। हमारी मेल आईडी के थ्रू जो है fmakashwani@gmail.com। और फिलहाल हम तो भाई, मतलब आपकी जो मोहब्बत है ना, इसे देख के बिल्कुल हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। तो चलिए इस दिल के बाग में से निकालते हैं एक खूबसूरत सा खत, और लेते हैं विजय जी का मेल जो हमें लिखते हैं खीरी से। और विजय जी, थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत देने के लिए प्रोग्राम को। और कहते हैं विजय जी कि आपको, विजय जी नमस्ते और गुड इवनिंग। कहते हैं सफ़र में कोई हमसफ़र होता तो मुश्किल रास्ता भी बहुत आसान होता है अकेले। रोने से कोई गम नहीं पड़ता, यस, पर कोई साथ हो तो आंसू भी मुस्कान होता है। क्या बात है विजय जी, बहुत बढ़िया। और कहते हैं प्रोग्राम आप शान, इनको बहुत अच्छा लगा, पॉप टाइम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शिकायत बस वही है जो आप काफ़ी दिन के बाद आई हो। क्या करें विजय जी, ज़िंदगी ये फ़लसफे ना कहीं हमें उलझा ही देते हैं। बहरहाल फिलहाल हम पढ़ रहे हैं आपका मेल और बहुत अच्छा लग रहा है आपका मेल पढ़ के। और कहते हैं कि इस समय हमारे फ्रेंड दोस्त इंद्रपाल मिश्रा जी प्रोग्राम में मेल नहीं कर रहे हैं, कौन से काम में व्यस्त हैं, तो बताइए भाई इंद्रपाल जी कौन से काम में व्यस्त हैं आप, विजयपाल जी पूछते हैं और आप हमें लिखते हैं जिला खीरी से। थैंक यू विजय जी। और इसी के साथ ही कमल पांडे जी हमें मैसेज करते हैं सीतापुर से, और कहते हैं कि पॉप टाइम अपने दोस्तों के साथ, यानी ओम प्रकाश भार्गव, रमाकांत विश्वकर्मा, बिल्डिंग वाले सुरेश जायसवाल, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ गया हूँ और प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू इतना पसंद करने के लिए। और कह रहे हैं कि गाने बहुत पसंद आ रहे हैं और कहते हैं कि हम सब इस प्रोग्राम के गाने सुन के बहुत झूम रहे हैं। बिल्कुल झूमते रहिए, डांस करते रहिए, थिरकते रहिए। और थैंक यू आपको भी, थैंक यू सो मच मनीष गुप्ता जी, हमें कहते हैं गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग सर जी। मनीष गुप्ता जी गुसाईगंज से हमें लिखते हैं और कहते हैं आपका प्रोग्राम शिमला से सुन रहे हैं।

क्या बात है। अब देखिए, हमने कहा था कि देश के कोने कोने से आप हमें सुनते हैं और इतने खूबसूरत से मेल्स लिखते हैं। हम तो इन्हें बिल्कुल मोहब्बत में बसे हुए खत मानते हैं, मोहब्बत से भरे हुए खत मानते हैं और कहते हैं क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला है और गाने एक से बढ़ के एक सुपर हिट। बिल्कुल अब भाई, प्रोग्राम में आपका साथ है तो हम आपको थिरकाने से कैसे पीछे रहेंगे मनीष जी। और इसी के साथ ही विनीत जी हमें कहते हैं सीतापुर से और कहते हैं आपको गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग और कहते हैं क्या बात है, आपकी बोली हमें बड़ी मीठी लगती है। हाँ, और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, सुपर हिट है चल रहा है। और भाई, आज तो भोजपुरी गाना नहीं बच पाएगा विनीत जी, क्योंकि आज चल रहा है पॉप टाइम और आप हमें लिखते हैं सीतापुर से किसके साथ, ओमकार जी के साथ, सुरभि जी के साथ, शमा परवीन अंसारी, सीमा रावत, संतोष मौर्य हरदोई से, संजय अतरौली हरदोई से, वीरपाल पट्टी अतरौली, रिंकी पिंकी रायबरेली से, मोहिनी हरदोई से, रोहिणी हरदोई से, क्या बात है, इतने सारे दोस्त हैं आपके। देखिए, दोस्त जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ अगर जीने में हर एक पल का मज़ा लिया तो मतलब सब कुछ यादगार होता है। तो बिल्कुल, और इसी के साथ ही साथ एजुकेशन प्रेप्स, ये इनके मेल आईडी का नाम है, इनका नाम नहीं है, बिल्कुल भरम में ना रहिएगा। तो भाई, आप हमें लिखते हैं सौरभ जी, सौरभ जी हमें लिखते हैं अमेठी, अमेठी से, और कहते हैं गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग कहते हैं। आप शर बहुत अच्छा लगा, आप अपने उन लफ्ज़ों में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें सुनते सुनते कुछ मिनट्स के लिए हम खुद को भूल के उन मतलब शब्दों में खो जाते हैं। और कहते हैं कुल मिला जुला के जस्ट ये है आपके मैसेजेस का कि भाई प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, लिखा तो आपने बड़ा ही खूबसूरत है, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और थैंक यू सो मच आपको भी। चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, नहीं बोलेंगे, अरे बोलती रहती तो देखिए गली गली से कौन आ रहा है।

9:34:55 और देख रहे हैं प्रोग्राम जो फेवरेट होता है तो क्या मतलब सटासट अपना टाइम बढ़ता जाता है लेकिन हम टाइम को नहीं पकड़ सकते तो क्या हुआ 10 बजे तक हम साथ में थिरक तो सकते हैं क्या कहते हैं बंधु जी हाँ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टॉप टाइम अनामिका के साथ जो है आज रात आपकी हम सफर कहाँ सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पे जो बन चुका है धड़कन लखनऊ की। चलिए और वो कह रहे थे कि ब्याह करवा दो जी तो बताइए क्या हर बात का सलूशन ब्याह करवाना है ना ना पढ़िए लिखिए नाम कमाइए ब्याह तो होता रहता है क्या कहते हैं वरुण साहब। और अब चलिए बढ़ चलते हैं अपने प्यारे प्यारे से मेल्स की तरफ वरना हमारे जो लिसनर्स है ना वो कहेंगे बोलती बहुत है ना मेल्स बहुत कम पड़ती है तो मेल्स तो हम नहीं छूटने देंगे जनाब तो आप बिल्कुल बेचैन ना होइए एकदम तसल्ली से रहिए आप सबके मेल्स पढ़े जाएंगे हम भले ही छोटा कर देंगे लेकिन मेल्स तो सबके लेंगे क्योंकि आप सब हमें एक जैसे प्यारे हैं। तो चलिए चलते हैं इंद्रपाल मिश्रा जी के मेल की तरफ और आप कहते हैं कि आपके आने से प्रोग्राम की लोकप्रियता 1000 गुना बढ़ जाती है आपकी मीठी आवाज़ के कारण प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है हम सब एक साथ मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद भाई इंद्रपाल जी आपने हमें सीतापुर से मेल किया इतने प्यार के साथ इंद्रपाल मिश्रा जी और अवनीश जी विनीश जी अक्षत गरिमा जी के साथ थैंक यू सो मच इंद्रपाल जी और इसी के साथ ही साथ रोशनी रावत हमारी प्यारी रोशनी ये हमारी रेगुलर लिसनर है और हमारे हर प्रोग्राम में अपने प्यारे प्यारे मेल्स देती हैं तो भाई रोशनी जी बहुत कलरफुल लिखती हैं और मुझे ये ना बहुत अच्छा लगता है इनके लिखने का तरीका तो रोशनी हमें कहती कि नमस्ते अनामिका दीदी आप कैसी हैं मैं बिल्कुल बढ़िया रोशनी उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छी होंगी और आप

समाचार आपको बहुत अच्छा लगा। पॉप टाइम में कहती है बिल्कुल गर्दा उड़ गया, तो बिल्कुल उस गर्दे की धूल पड़ने ना दीजिएगा अपने मुंह पे और आप बिल्कुल थिरकते रहिएगा। और कहती है हम तो डांस कर रहे हैं, बिल्कुल हम इसीलिए यहाँ हैं और पूरा साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मेरा नाम रोशनी रावत और आप हमें लिखते हैं जिला उन्नाव से, और कहती है प्रोग्राम सुन रही है चंडीगढ़ से। ये देखें ये जो मोहब्बत है, और कहती है अर्ज किया है करियर्स इरशाद इरशाद, किसी का इंतजार करना फिर उसको याद करना उसकी यादों में डूब जाना, शायद यही मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। इसी के साथ इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के नाम भी लिए हैं, बबीता जी, बबीता राव जी, नीलू शर्मा, गुलफशा, समा अंसारी, साहिबा अंसारी, साजे अंसारी, और कहते हैं हम सब एक साथ मिलके सुन रहे हैं, सबको दूर से सलाम भेजा है। बिल्कुल इस प्रोग्राम के थ्रू आपका सलाम उन तक जरूर पहुंच गया होगा। थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत से मेल के लिए। और इसी के साथ ही सुधांशु में लिखते हैं बख्शी का तालाब लखनऊ से, और कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा है, सॉरी, देखिए प्रेम में बह जाता है इंसान, लेकिन हम नहीं बहेंगे, बहते बहते वापस आ गए और आपके मेल पर वापस आ गए। और आप हमें कहते हैं सुधांशु जी कि भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत दिन के बाद आई, हाँ ये बात तो है, प्रोग्राम में गाने बहुत अच्छे हैं और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, क्या बात है सुधांशु जी, थैंक यू सो मच। देखिए अब आपका ये, आप लोगों का ये जो मेल है ना, ये मोटिवेशन बढ़ा देता है कि आपके एंटरटेनमेंट में 1% कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ नंदन जी हमें लिखते हैं माया नगरी मुंबई से, और जैसा कि हमने कहा था कि भाई देश के कोने कोने से हमें मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो नंदन जी ने हमें मुंबई से लिखा है, हाँ अनामिका, आफ्टर अ बिग गैप आई फील गुड टू हियर यू स्वीट वॉइस, प्लीज यू ट्राई टू कम द प्रोग्राम एटलीस्ट वंस अ वीक। आई क्या बात है नंदन जी, अरे बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे, आप हमें लिखते हैं मुंबई से, थैंक यू नंदन जी। जावेद अख्तर साहब हमें कहते हैं, जावेद अख्तर साहब जी मेल आपका कहाँ चला गया, चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से हमें मेल कर दीजिएगा, हम मेल लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ वादे पे भी कायम रहना है, और करनी हो आपको कहीं कोई दिल की बात, कहीं नहीं यहीं FM रेनबो पे, तो आप हमें लिख सकते हैं FM आकाशवाणी @लखनऊ। नहीं नहीं नहीं, देखो अभी प्रेम में क्या होता है ना, ये जो प्यार है ना ये बुलवा देता है आपको, तो भाई नोट कर लीजिए हमारी मेल ID FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। जी हाँ, अब जब रवा होता है इंसान, रवानी में होता है बातों की और मोहब्बत की, तो भूल जाया करता है। तो फिलहाल आप सुनिए, इंजॉय करिए गाना, और करते रहिए, ठिरकते रहिए।

9:45 अब क्या करें, ये वक्त हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भाई प्रोग्राम में मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आपके मेल्स देख के ये बात तो समझ में आ गई कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, और थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत मेल्स के लिए। लेकिन चलते चलते, यानी चलते चलते नहीं, अब घबराना नहीं है, अभी नहीं जा रहे हैं, अभी टाइम है 15 मिनट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल लास्ट में मेल करते हैं और उनके मेल जब छोड़ने पड़ते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर करनी हो आपको अपने दिल की कोई बात तो प्लीज़ हमें लिख डालिए, कहाँ, fmakashwani@gmail.com के थ्रू हम पढ़ेंगे आपके दिल की बात। और गाने तो प्ले हो रहे हैं भाई, ये तो समझ में आ गया कि आपको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, थिरक रहे हैं आप, थिरकते रहिए, कैलोरी वैलोरी थोड़ा लॉस होनी चाहिए ना। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले मेल की तरफ। अगला मेल है, अगला मेल हम इंडिया की बात करें, इंडिया के बाहर से आया भाई, हमें अगला मेल आया नेपाल से, और रामकृष्ण डकाल साहब हमें लिखते हैं, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और आप हमारे हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत बहुत पसंद है ना हमारे

हमारे चैनल के, तो थैंक यू सो मच इतनी दूर से हमें इतना पसंद करने के लिए, हमें सुनने के लिए और इतनी मोहब्बत देने के लिए. और कहते हैं नमस्कार, शुभ संध, गुड इवनिंग. रेनबो एफएम का पॉप टाइम, आप रेगुलर हमारे लिसनर हैं और भाई हमारी तो आप बहुत तारीफ करते हैं, थैंक यू सो मच. और कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए डेली सुनते हैं. प्रोग्राम की प्रोग्राम के सक्सेस होने की ये करते हैं कामना. और लिखते हैं हमें रामकृष्ण ढकाल साहब नेपाल से, तो देख रहे हैं आप ये मोहब्बत है जो आप हमें इतनी दूर दूर से मेल्स और मैसेजेस करते हैं. इसी के साथ ही साथ आनंद तिवारी जी हमें लिखते हैं, आनंद तिवारी जी हमें हरदोई से लिख तो रहे हैं और कहते भी हैं कि जबरदस्त प्रोग्राम आग के साथ, वो उसमें आग वाली इमोजी भी है और डांस वाली इमोजी भी है. तो थैंक यू सो मच, आपको इतना पसंद आ रहा है. इन्होंने चार लाइन भी लिखी, लेकिन भाई ये जो लाइन है ना, ये दर्द वाली लाइन है, इसमें आप थिरकते रहिए कहाँ. आनंद जी बिल्कुल खुश रहिए. और इसी के साथ ही वकील अहमद हमें कहते हैं, नमस्ते, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, प्रोग्राम पॉप टाइम बहुत अच्छा लगता है, गाने बहुत ज़बरदस्त बज रहे हैं और मुहर्रम है आपके यहाँ, आप बताते हैं. और कहते हैं ताजी अब भनवपुर जाती है, भनवापुर में अब आप भनवा लिखें, उधर भनवा इधर मनवा, अब मैं क्या मानूँ, मेरा मनवा क्या माने. और कहते हैं भनवापुर में मेला होता है, अब तो घर आ गए, हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है. कहते हैं वकील अहमद मंसूर कटका, अच्छा ज़िला सीतापुर से. और इसी के साथ ही आप दो तीन नाम भी लिखते हैं, साहिबा अंसारी का, साजिद अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ्जा सिद्दीकी और एमन का, हमारी प्यारी एमन का. और इसी के साथ ही साथ एमन ने हमें फिर से मैसेज किया और बताया है कि भाई मैं ठीक हूँ, अनामिका ऊँचा लंबा कद अच्छा. और इसी के साथ ही एम के राज, मनोज कुमार राज हमें लिखते हैं खीरी से. और अच्छा, मेल आईडी जब थोड़ी डिफरेंट होती है ना, तो मतलब एक बार को सोचना पड़ता है यही नाम है, नहीं यही नाम कैसे हो सकता है, ये तो मेल आईडी का नाम है. नीचे नाम पढ़ने के बाद, लेकिन मेल आईडी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इस बात को बुरा नहीं मानने का, हम दोस्त हैं, आप बुरा कैसे मान सकते हैं. तो वही कहते हैं प्रोग्राम बहुत बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, क्या बात है, रिदम बना दिया आपने. और कहते हैं प्रोग्राम पॉप टाइम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल खुशियों से भर गया है, थिरक रहे हैं आप और इस मतलब एंटरटेनमेंट से भरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, थिरक रहे हैं, तो बस थिरकते रहिए हमारे साथ 10 बजे तक. और इसी के साथ ही श्यामू चौहान जी हमें लिखते हैं कहाँ से बाराबंकी से. आप हमें चार पांच लाइन लिखते हैं, लेकिन अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना मेल श्यामू जी. और आपको हम बताते हैं कि कुल मिला जुला के जस्ट ये है कि आपने बड़ी प्यारी सी एक बात लिखी है, बाराबंकी से श्याम राजकरण, हरिओम, सुनील आकर, संदीप और बहुत सारे लिसनर्स के साथ जो आपके दोस्त हैं. और कह रहे हैं प्रोग्राम ना बहुत अच्छा लग रहा है. और कहते हैं बस ऐसे ही मुस्कुराती रहिए, आप भी मुस्कुराते रहिए और सबको प्रेरित करते रहिए. और सबसे खास बात कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तमिलनाडु से, तो थैंक यू सो मच श्यामू जी. और मेल्स हम लेते रहेंगे, अभी तो टाइम है बंधु, अभी 10 मिनट है, लेकिन देखिए कौन आ रहे हैं इस 10 मिनट से पहले. आपका बड़ा ही पसंदीदा गाना

9:53 और इस प्रोग्राम में टाइम कैसे निकल जाता है, बिल्कुल फुर हो जाता है टाइम, पता नहीं चलता है ना। मैं तो खुद भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी रस्सी होती, कोई ऐसा बंधन होता कि इस वक्त के गले में बांध सकते और रुक जाते। लेकिन फिलहाल वो तो कह रही थी कि उनके पिया घर आए, और राम जी और भी बहुत सारे गाने लाइन अप कर रखे हैं मैंने ताकि आपके एंटरटेनमेंट में कोई कोर कसर बाकी ना रहे। लेकिन फिलहाल जिन्होंने हमें किया है इतनी मोहब्बत के साथ इतना सारा खूबसूरत सा मेल, भाई वो मेल्स भी हम पढ़ लेते हैं, वरना हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से दुखी हो बिल्कुल भी। तो एकदम चल रही है, मेल्स सबके पढ़ूंगी, भले ही थोड़े से छोटे हो जाएंगे, लेकिन बंधु हम है दोस्त तो बुरा नहीं मानने का। तो अशोक कुमार जी हमें लिखते हैं लखीमपुर खीरी से कि मैडम गुड इवनिंग, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, अजय राज प्रदीप राज आशीष राज जी के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, झक्कास लग रहा है इनको प्रोग्राम, थैंक यू अशोक जी। और इसी के साथ ही संदीप जी हमें लिखते हैं भोलेनाथ की नगरी काशी से, हर हर महादेव, और कहते हैं मेरा नाम संदीप है, मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, 4 दिन पहले ट्रांसफर होके बनारस आया हूँ, बहुत ही अच्छा शहर है, वाकई बहुत अच्छा शहर है, पौराणिक नगरी है, आपका प्रोग्राम चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है संदीप यादव। और आप हमें लिखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, इन्होंने लास्ट में लिखा है भाई, लिखते हैं हमें बनारस से। और इसी के साथ ही जावेद अख्तर साहब जी ने हमें फिर से मैसेज किया है, लेकिन जावेद साहब अनामिका जी हाँ आप की बार आई है, आपका मेल पूरा पूरा आया और आपने लिखा है कि प्रोग्राम की शुरुआत क्या धमाकेदार, बहुत दिन के बाद आपकी आवाज सुनाई दी, थैंक यू सो मच इतना याद करने के लिए। और कहते हैं कि प्रोग्राम में जब भी सुनते हैं तो इनका मन हल्का हो जाता है, बिल्कुल दिन भर की थकान वकान सब छू मंतर हो जाती है। और आप हमें लिखते हैं आजमगढ़ से शमशूल कमर राही बेगम रुखसार और शमा परवीन अंसारी जी के साथ। और इसी के साथ ही डॉक्टर सुमित कुमार जी हमें लिखते हैं उत्तराखंड, जसपुर उत्तराखंड से, देखा मतलब सीमा क्रॉस हो गई, बिल्कुल फिर से यूपी के। और कहते हैं कभी कभी गर्मी तो कभी सर्दी तो कभी कुदरत के नज़ारे, प्यास तो उनको भी लगती है जो दरिया किनारे हैं, मैं प्रोग्राम आपका हमेशा सुनता हूँ आपका और यहाँ के हैप्पी हो जाता हूँ, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। और कुल मिला जुला कि ये है कि आपने डिहाइड्रेट रखने के, मतलब आपने गर्मी से बचने के, बॉडी को बिल्कुल कूल रखने के कुछ तरीके सुझाए हैं, और इसी के साथ ही कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और कहते हैं कि भाई बिल्कुल मज़ा आ गया प्रोग्राम सुन के, तो थैंक यू सो मच। जय साहब हमें लिखते हैं उत्तम नगर चौक दिल्ली से, और कह रहे हैं क्या बात है प्रोग्राम बिल्कुल झकास है, और कहते हैं प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ ही प्रिंसी जी हमें लगती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, गुड नाइट। भाई कैसे गुड नाइट, अभी तो यादों का सफ़र बाकी। और इसी के साथ ही हम के राजयानी, अच्छा आप हमें दोबारा मेन करें, मुनेश कुमार राज जी लखीमपुर खीरी से, और कहते हैं बिल्कुल आप लोग थिरक रहे हैं, बस इससे मेरा भी दिल खुशियों से भर गया है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही साथ शैलेश जी हमें कहते हैं टाइगर पूर्णिमा की ओर से सभी वालों को और आपको भी नमस्कार। ये क्या है शैलेश जी, क्या है मतलब, या तो एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ तो मामला जरूर है शैलेश जी, आज मुहर्रम

है, क्या लिखा है आपने? टाइगर पूर्णिमा क्या होता है भाई, क्या होता है? आप इतना तिरके, आप भूल गए लिखना। चलिए कोई बात नहीं, शैलेश जी आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। विजेश सिंह जी हमें बहराई से लिखते हैं कि बहुत टाइम के बाद आपको सुनने को मिला, बहुत दिल बाग बाग हो गया, जैसे कि मेरा बाग बाग हो गया। और थैंक यू सो मच ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अमीन हमें लिखते हैं गंगागंज से, लखनऊ से, और कहते हैं क्या झक्कास प्रोग्राम। तो थैंक यू सो मच आप सबके मेल्स के लिए। और हमने कहा था आपसे मेल्स मैं सारे के सारे लूँगी, भले ही मैं थोड़े छोटे करूँगी लेकिन मेल्स मैं सारे लूँगी। अगर किसी का मेल छूट जा रहा हो तो उसके लिए मैं मतलब तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और भाई उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास वो वाली रस्सी नहीं है जिससे ये वक्त रुक जाए। तो मन था बिल्कुल अंदर से कि आपको एक बार फिर से चुंदरी चुंदरी सुना के एक बार फिर से कायदे से थिरका दिया जाए। तो थिरकते रहिए ना सदा प्रोग्राम पॉप टाइम में अनामिका के साथ, और जल्दी ही यानी 10 बजे मिलेंगे आपकी यादों के गुलदस्ते को साथ लेके, यानी आपका फेवरेट प्रोग्राम रजनीकांत लेके। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दो दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं जय प्रकाश राव और विशाल गुप्ता के घर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी व्यापारी नेता और भाजपा कार्यकर्ता रहे विशाल गुप्ता के कूड़ा घाट स्थित घर पर पहुंचे। विशाल का विगत दिनों निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विशाल गुप्ता के परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद वो आवास विकास कॉलोनी स्थित जयप्रकाश राव के आवास गए। भाजपा मालवीय नगर मंडल के उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश राव का विगत दिनों निधन हो गया था। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज प्रयागराज भ्रमण के दौरान सर्किट हाउस सभागार में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए

अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए पूरी शक्ति से जुट जाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सामूहिक प्रयासों, संगठन की ताकत और जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड विजय प्राप्त करेगी। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिसे बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही

के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिसे बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM Rainbow।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
3: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें
4: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई
3: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

इस खूबसूरत सी रात में चलिए एक बार फिर से लौट चलते हैं उस खूबसूरत दौर में जब प्यार करना भी एक अदब था और जुदाई में एक नजाकत हुआ करती थी। ये रात उन सब एहसासों के नाम है जो कभी मीठे थे तो कभी खट्टे मगर हमेशा सच्चे थे। वो लम्हा, वो समा जब मोहब्बत को लफ्जों की नहीं एहसासों की जरूरत थी, जब खामोशियां भी बात किया करती थी और हर धड़कन में एक इंतजार हुआ करता था।

नमस्कार, आदाब। मैं आपकी रात की हमसफर अनामिका एक बार फिर आपका इस्तकबाल करती हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा में, सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 एफएम पे। रजनीगंधा, उस खुशबू का नाम जो रात के पर्दे में खिलती है। ये वही सुस्ताती हुई घड़ी है जब ना कोई सवाल होता है, ना कोई जवाब, ना शोर। होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी यादें और कुछ सुनहरे नगमे। आज की

बशीर बद्र साहब की एक शायरी है मोहब्बत पे, कि तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, कि तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। जी हां, कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा वही चीज दे सकता है जिस चीज की कमी उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस की होती है। आपको अक्सर बेइंतहा बिना किसी शर्त के मोहब्बत करने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने खुद में कभी भी प्यार महसूस नहीं किया होगा या जिन्हें कभी प्यार मिला ही नहीं होगा। ये अक्सर वही लोग होते हैं जो दूसरों को बेतहाशा मोहब्बत देते हैं, दूसरे की जिंदगी में रोशनी लेकर आते हैं। वो हमेशा उदासियों से ही घिरे हुए होते हैं और दिल में उतर जाने के बाद आप अपनी जिंदगी में बसे, अपने दिल में बसे उस इंसान के लिए ये गाना डेडिकेट कर सकते हैं, नगमा डेडिकेट कर सकते हैं। इस गाने को सुन के आप अपनी जिंदगी के उस खास शख्स को याद कर सकते हैं।

ये गाना, ये नगमा उस खास इंसान के लिए जिसने जिंदगी में बिना किसी स्वार्थ के आपको बेतहाशा प्यार दिया, बेतहाशा मोहब्बत दी,

0: चले।
1: हुजूर ये गीत है या कवाली?
2: प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले,

मिर्ज़ा ग़ालिब ने कहा है कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। जी हाँ, ऐसा अमूमन सबके साथ होता है। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करने होते हैं, किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी यादों में ना तो दिन का पता होता है, ना ही रात की खबर। और इसी मोहब्बत में न जाने कितने सिंपल से, कितने साधारण से लोग शायर हो गए, कवि हो गए। तो अगर आपको अपने महबूब के लिए कुछ चंद लाइनों में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? शायद कुछ इस तरह कि तुम्हें कभी पूरा लिखूं, फिर कभी अधूरा, मैं रातों में बैठकर तुम्हें सवेरा लिखूं, मैं जब भी लिखूं बस इतना लिखूं, खुद को तेरा और तुझको मेरा लिखूं।

जानते हैं, कभी कभी एक अजनबी आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। हम लाइफ में सब कुछ प्लान करके चलते हैं, लेकिन उसे खास इंसान से बिना किसी प्लानिंग के आप लाइफ में कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। ना उससे मिलने की कोई प्लानिंग थी, ना प्यार करने का कोई इरादा, लेकिन उसकी आदत ऐसी लगती है कि हमारी खुद की जिंदगी, हमारी खुद की जिंदगी की हर खुशी हर गम उनसे जुड़ जाता है। हालत ये होती है कि दिन अच्छा हो या बुरा, सबसे पहले उनका ही ख्याल आता है, उनकी आवाज, उनकी हंसी, और उनका सिर्फ अपना ख्याल रखना, सिर्फ इतना सा ही कह देना दिल को सुकून दे जाता है। और फिर धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि मोहब्बत सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो वो है जब आप किसी की जिंदगी, जब आप किसी के साथ पूरी जिंदगी, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इमेजिन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, जहां दिल ये नहीं सोचता कि कब तक साथ रहेगा, बल्कि ये सोचता है कि काश हर जन्म में बस यही इंसान मिले। क्योंकि कुछ लोगों से सिर्फ मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि उनके बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दूं बस समझ जाओ।

कहते हैं कि शिकायत और दुआ में जब एक ही शख्स हो तो समझ लीजिए कि आपको उनसे बेइंतहा मोहब्बत है। जी हाँ, आखिर शिकायत क्यों ना हो अपने उस अजीज से। अगर कुछ है दो लोगों के बीच, दो दिलों के बीच कुछ है, नजदीकियां हैं, आप इमोशनली कनेक्ट हैं, मोहब्बत है, तो फर्क ना पड़े इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये अजीब सी बात है ना कि हम लड़ते भी उसी से हैं जिसे खोने का सबसे ज्यादा डर होता है। छोटी छोटी बातों पे चुप हो जाना, गुस्सा दिखाना, लेकिन अंदर से बस उन्हीं का इंतजार होता है। हम बोलते तो हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच पूछिए तो सबसे ज्यादा फर्क उनसे रूठ जाने पर ही पड़ता है। ये लड़ाई झगड़ा नफरत नहीं होती, बल्कि डर होता है कि कहीं वो सच में दूर ना चले जाएं। और सच ये है कि दिन के आखिर में दिल सिर्फ और सिर्फ उनको ही ढूंढा करता है।

0: मुस्कुराइए
1: कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: नमस्कार, रात्रि के 11 बज रहे हैं और आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कौशल विकास से आत्मनिर्भरता, इस विजन को धरातल पर उतारते हुए राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI और एक प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र अलीगंज लखनऊ में अत्याधुनिक कोर्सेज के संचालन को हरी झंडी दे दी है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों की परिचयात्मक बैठक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ पूरी ऊर्जा और समर्पण से कार्य करना होगा। मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा द्वारा गोरखपुर में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास, राजकीय महिला शरणालय गोरखपुर के नवीन भवन एवं राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर न्याय बोर्ड के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। राजकीय महिला शरणालय गोरखपुर के नवीन भवन का निर्माण 80% हो चुका है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह के दौरान 963 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 672 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये वृद्धि मुख्य रूप से सोने के भंडार में वृद्धि होने से आई है। भारत में सोने का भंडार 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

रात के 11:05 हो रहे हैं और आप हैं अपनी यादों के खूबसूरत से सफर पे, अपनी रात की हम सफर अनामिका के साथ, यानी अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा में, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। पता है, अपने इस कीमती वक्त को कभी भी ये सोचने में जाया ना करिए कि कौन बदला, कब बदला और क्यों बदला। जिंदगी का सच यही है कि हर इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ हमें जिंदगी के अहम सबक देने के लिए आते हैं। आजकल हम इतना ओवरथिंक करते हैं कि हर चीज का दोष हम खुद को देने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप गलत बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि आप लर्निंग फेज में हैं। जो चला गया वो आपका लॉस नहीं था, बल्कि एक लेसन था। और जो लेसन समझ में आ जाए उसके बाद दर्द तो वैसे भी कम हो जाता है। इसीलिए शांत रहिए, स्थिर रहिए। जिंदगी का हर अनुभव आपको और समझदार बना रहा है। इसीलिए खुद पर कभी बोझ मत डालिए, क्योंकि ये जिंदगी तभी आसान होती है जब हम अपने खट्टे मीठे अनुभवों से सीखकर छोड़ना या भूल जाना सीख जाते हैं।

हर इंसान की लाइफ में शायद प्यार की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो शब्दों से कम और एहसासों में ज्यादा समझा जा सके, जो आपकी खामोशी में भी आपकी हर बात सुन सके, हर ख्याल जान सके, हर इमोशन समझ सके और आपके हर दर्द हर तकलीफ में आपका सहारा बने, जो आपको बदलने की कोशिश ना करे बल्कि आप जो हो जैसे हो बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करे। जी हाँ, प्यार वो नहीं जो सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ हो, बल्कि प्यार तो वो है जो मुश्किलों में भी आपका साथ कभी ना छोड़े, जहां भरोसा हो, सम्मान हो और एक दूसरे में सुकून हो। क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही है जो दिल को शांति दे और जिंदगी को खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बना दे।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते हैं, वो बस आते हैं हमारी कहानी में अपना एक छोटा सा किरदार निभाने के लिए, थोड़े से वक्त के लिए। लेकिन उस थोड़े से वक्त में वो हमें वो सारी खुशियां दे जाते हैं जो शायद वो लोग भी नहीं दे पाते जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमें हमेशा के लिए जीना सिखा जाते हैं, और ये सिखा जाते हैं कि जिंदगी को हर पल खुशियों के साथ कैसे जीना है, कैसे मुस्कुराना है। और एक सबसे अहम बात, वो हमें जिंदगी को देखने का सबसे नया, सबसे खूबसूरत नजरिया दे जाते हैं। और फिर एक दिन वो हमारी जिंदगी से यूं ही चले जाते हैं, और हम रह जाते हैं उनकी दी हुई खूबसूरत सी महकती यादों के साथ।

इश्क है था या रहा नहीं। वो कहते हैं ना कि दिल में जो कुछ भी हो सलीके से जता देना। इश्क है था या रहा नहीं, साफ साफ बता देना। किसी को उम्मीदों के अंधे कुएं में क्यों रखना। घर रास्ता बदलना हो तो उसका हाथ झटका देना। ये जो खामोशी की चादर है अपने दरमियाब, ये जो खामोशी की चादर है अपने दरमियाब, बोझ अगर लगे तो इसे एक झटके में हटा देना। मैं तुम्हारी नजरों में अब कोई अजनबी हूं शायद, जो ऐसा है तो खुद को इस अजाब से कर फना देना। वो जो वादे थे वो वफा की रस्म थी महज, वो हो चुके हैं अगर गुमराह तो उन्हें भी कहीं दफना देना। मुसाफिर हूं मुझे मंजिल का पता तो हो मालूम, वो मुकम्मल था अधूरा था, वो जो था मेरा हिस्सा मुझे जरूर सुना देना। इश्क है था या अब नहीं रहा, सलीके से जता देना।

मेरे साथ चलने की शर्त पे कई लोग चल तो पड़े मगर मेरे साथ चलने की शर्त पे कई लोग चल तो पड़े मगर कोई रास्ते में बदल गया तो कोई रास्ता ही बदल गया। और वैसे भी जिनका मिलना किस्मत में तय नहीं होता, कहते हैं ना कि उनसे मोहब्बत बहुत कमाल की होती है, फिर ये आखिरी मुलाकात की सबसे बड़ी गलती होती है कि ये ना बिना किसी वार्निंग के बिना बताए आ जाती है। अगर कोई बता दे कि ये उनसे आखिरी मुलाकात है तो शायद हम भी किस्मत की ये लकीरें मिटा देते, मगर यही तो इस कायनात का गुरूर है कि जो किस्मत में नहीं है उनसे वो मिला देता जरूर है।

11:55 और 33 सेकेंड, और फिलहाल आप हैं अपनी यादों के खूबसूरत से सफर में, यानी अपने फेवरेट प्रोग्राम रजनीगंधा को सुन रहे हैं आप अपनी रात के हम सफर अनामिका के साथ, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। वक्त की सुइयां इशारा कर रही हैं कि रजनीगंधा की इस महकती हुई महफिल को यहीं विराम दिया जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यादें सोती नहीं है कभी, बस रात के अंधेरे में जागने का इंतजार किया करती हैं। अपनी यादों के इन चरागों को हमेशा रोशन रखिएगा, फिर किसी वक्त किसी दिन FM रेनबो 100.7 FM पे आपसे मुलाकात होगी, कुछ और नगीनों के साथ, कुछ और खूबसूरत नगमों के साथ, बहुत सारी दिल की बातों के साथ। तब तक के लिए अपने इस रात के हम सफर अनामिका को इजाजत दीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहूंगी कि कोशिश करिएगा कि किसी की जिंदगी का उजाला बन जाइए। अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नमस्कार, रात्रि के 12 बज रहे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने आखिरी बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी आज की आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत वर्ष 2017 के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा के गुणवत्तापूर्ण विस्तार के जरिए सरकार ने प्रदेश के प्रति लोगों के परसेप्शन को बदला है। पूर्व की सरकारों और वर्तमान सरकार के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि पहले की सरकार ने हर एक जिले में माफिया पैदा किया और वर्तमान सरकार हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा दे रही है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर आरंभ किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन का प्रयोग होगा। इस 11 दिन के रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:15 और सूर्यास्त 7:03 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।